103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी एफएम शिमला से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: 103.7 MHz पर यह है FM शिमला। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी, फिर 6:05 पर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में

0: विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शब्द जहां थक जाते हैं वहां से भक्ति की यात्रा शुरू होती है। मन की वो अवस्था जहां मैं मिट जाए और केवल वो रह जाए, इसी पावन भावना को शब्दों और सुरीले भजनों से व्यक्त करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम हिमांजलि।

भक्ति रस का आनंद ही निराला है। ये हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो उस ईश्वर का ही उपहार है। आइए अगले भजन के माध्यम से उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करते हैं।

माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी ने कितनी सरलता से हमें ये समझाया है कि असली भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन की शुद्धता में है।

भारती के संग मिलकर किया आज हिमांजलि में ये पावन वंदन। दिन हमारा मंगलमय हो और खुशियों से महके जीवन का आंगन, इसी कामना के साथ कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं।

हिमांजलि भक्ति रसिया कार्यक्रम एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे राम के चरित्र का पवित्र मानसरोवर मानस गान। आइए अब सुनते हैं।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये

था नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीकृत मानस गान। गायक कलाकार लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर, संगीतकार सतीश भाटिया। FM शिमला 103.7 MHz पर अब आप सुनेंगे देशभक्ति गीत।

0: देशगान अभी आप सुन रहे थे FM शिमला 103.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आरडीजी सहित हिमाचल के हितों के मुद्दे उठाए। उन्होंने प्रदेश के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज और कल शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। ईरान के हॉर्मुज जलडमरू में एक भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में हमीरपुर जिला के गलौड के रहने वाले नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। सोलन जिला में जनगणना के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर है। जनगणना निदेशक दीपशिखा की अध्यक्षता में कल सोलन में कर्मचारियों को जनगणना का प्रशिक्षण दिया गया और इस कार्यक्रम की बारीकियों से अवगत करवाया गया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधारीकरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री कल शिमला में अटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में रोगी कल्याण समिति के 2026-27 की अनुमानित आय और व्यय के अनुमानों को मंजूरी दी गई। न्यूज़ हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला।
1: ये एफएम शिमला है, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

0: अपर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM शिमला आपने ट्यून इन किया है 103.7 MHz पर। 7:05 हुए हैं, ये वक्त है चिंतन का।

अपना भगवत भाव बढ़ाने के लिए, भगवत भाव को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हमारे अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का जो महत्व अंकित है, उनमें हमारी जो ममता आसक्ति है, उसको मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना, पुष्पमाला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, आरती उतारना, भोग लगाना आदि बहुत आवश्यक है। तात्पर्य है कि मूर्ति पूजा करने से हमें दो तरह से लाभ होता है, भगवत भाव जागृत होता है और बढ़ता है, तथा सांसारिक वस्तुओं में ममता आसक्ति का त्याग होता है। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक जगह ऐसी होनी ही चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके। वो जगह चाहे भगवान हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार्य हो, कारण कि इससे मनुष्य की भौतिक भावना कम होती है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावना बढ़ती है। एक बार कुछ तीर्थयात्री काशी की परिक्रमा कर रहे थे। वहां का एक पंडा उन यात्रियों को मंदिरों का परिचय देता, शिवलिंग को प्रणाम करवाता और उसका पूजन करवाता। उन यात्रियों में कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़के थे। उनको जगह जगह प्रणाम आदि करना अच्छा नहीं लगा। अतः वे पंडा से बोले, पंडा जी, जगह जगह पत्थरों में माथा रगड़ने से क्या लाभ। वहां एक संत खड़े थे, वे उन लड़कों से बोले, भैया,

जैसे इस हाड़मांस के शरीर में तुम हो, ऐसे ही मूर्ति में भगवान हैं। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े वर्षों की है, पर ये शिवलिंग बहुत वर्षों के हैं। अतः आयु की दृष्टि से शिवलिंग तुम्हारे से बड़े हैं। शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो हाड़मांस अशुद्ध होते हैं और पत्थर शुद्ध होता है। मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो हड्डी से पत्थर मजबूत होता है। अगर परीक्षा करनी हो तो अपना सिर मूर्ति से भिड़ाकर देख लो कि सिर फूटता है या मूर्ति। तुम्हारे में कई दुर्गुण दुराचार हैं, पर मूर्ति में कोई दुर्गुण या दुराचार नहीं है। तात्पर्य है कि मूर्ति सब दृष्टियों से श्रेष्ठ है, अतः मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से अपनी निंदा और नाम की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा मानते हो, शरीर के अनादर से अपना अनादर और शरीर के आदर से अपना आदर मानते हो, तो क्या मूर्ति में भगवान का पूजन स्तुति प्रार्थना आदि करने से उसको भगवान अपना पूजन स्तुति प्रार्थना नहीं मानेंगे? अरे भाई, लोग तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हैं वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फिर भी तुम राजी होते हो। भगवान का स्वरूप तो सर्वत्र व्यापक है, अतः इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है वो भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। आप कहोगे कैसे? वो वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उसके अनुसार चलता है, तो ये मूर्ति पूजा ही है, क्योंकि वेद तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है। वेद आदि का आदर करना मूर्ति पूजा ही है। ऐसे ही मनुष्य गुरु का, माता पिता का, अतिथि का आदर सत्कार करता है, अन्न जल वस्त्र आदि से उनकी सेवा करता है, तो ये सब मूर्ति पूजा ही है। कारण कि गुरु माता पिता आदि के शरीर तो जड़ हैं, पर शरीर का आदर करने से उनका भी आदर होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी जिस किसी रूप में आदर सत्कार करता है वो सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है तो वो भगवान का ही पूजन होता है।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकुम शर्मा की थी। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। आज शुक्रवार है, तो लीजिए अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आप सुनेंगे चौथे भाग का 30वां अध्याय। शीर्षक है अक्षर ज्ञान।

पिछले दिनों में शारीरिक शिक्षा और उसके सिलसिले में थोड़ी दस्तकारी सिखाने का काम टॉल्स्टॉय आश्रम में किस प्रकार शुरू किया गया था, इसे हम कुछ हद तक जान चुके हैं। यद्यपि ये काम मैं ऐसे तो कर ही न सका जिससे मुझे संतोष हो, फिर भी उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली थी। पर अक्षर ज्ञान देना कठिन मालूम हुआ, मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री ना थी। दिन भर शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की ज़रूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। अतएव मैं ताज़ा रहने के बदले ज़बरदस्ती से जागृत रह पाता था। सुबह का समय खेती में और घर काम में जाता था, इसलिए दोपहर को भोजन के बाद तुरंत ही शाला का काम शुरू होता था। इसके सिवा दूसरा कोई भी समय अनुकूल ना था। अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। कक्षा में हिंदी, तमिल, गुजराती और उर्दू भाषाएं सिखाई जाती थी। प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा देने का

आग्रह था। अंग्रेजी भी सबको सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को थोड़ा हिंदी का परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंकगणित सभी को सिखाना था। यही पाठ्यक्रम था। तमिल और उर्दू सिखाने का काम मेरे जिम्मे था। तमिल का ज्ञान मैंने स्टीमरों में और जेल में प्राप्त किया था। इसमें भी पोपकृत उत्तम तमिल स्वयं शिक्षक से आगे मैं बढ़ नहीं सका था। उर्दू लिपि का ज्ञान भी उतना ही था जितना स्टीमर में हो पाया था, और फारसी अरबी के खास शब्दों का ज्ञान उतना ही था जितना मुसलमान मित्रों के परिचय से प्राप्त कर सका था। संस्कृत जितनी हाई स्कूल सीखा था उतनी ही जानता था। गुजराती का ज्ञान भी उतना ही था जितना शाला में मिला था। इतनी पूंजी से मुझे अपना काम चलाना था, और इसमें मेरे जो सहायक थे वे मुझसे भी कम जानने वाले थे। परंतु देशी भाषाओं के प्रति मेरे प्रेम ने, शिक्षण शक्ति के विषय में मेरी श्रद्धा ने, विद्यार्थियों के अज्ञान ने और उससे भी अधिक उनकी उदारता ने इस काम में मेरी सहायता की। तमिल विद्यार्थियों का जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, इसलिए वे तमिल बहुत कम जानते थे। लिपि तो उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए मैं उन्हें लिपि तथा व्याकरण के मूल तत्व सिखाता था। ये सरल काम था। विद्यार्थी जानते थे कि तमिल बातचीत में तो वे मुझे आसानी से हरा सकते थे, और जब केवल तमिल जानने वाले ही मुझसे मिलने आते तब वे मेरे दुभाषी का काम करते थे। मेरी गाड़ी चली क्योंकि मैंने विद्यार्थियों के सामने अपने अज्ञान को छिपाने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। पाठ्य पुस्तकों की जो पुकार जब तब सुनाई पड़ती है उसकी आवश्यकता मुझे कभी मालूम नहीं हुई। मुझे याद नहीं पड़ता कि जो पुस्तकें हमारे पास थीं उनका भी बहुत उपयोग किया गया हो। हर एक बालक को बहुत सी पुस्तकें दिलाने की मैंने जरूरत नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि शिक्षक ही विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक है। मेरे शिक्षकों ने पुस्तकों की मदद से मुझे जो सिखाया था वो मुझे बहुत कम याद रहा है, पर उन्होंने अपने मुंह से जो सिखाया था उसका स्मरण आज भी बना हुआ है। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को वे थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं बालकों को एक भी पुस्तक पूरी पढ़ा पाया था, पर अनेकानेक पुस्तकों में से जितना कुछ मैं पचा पाया था उसे मैंने अपनी भाषा में उनके सामने रखा था। मैं मानता हूं कि वो उन्हें आज भी याद होगा। पढ़ाया हुआ याद रखने में उन्हें कष्ट तो होता था, जबकि मेरी कही हुई बात को वे उसी समय मुझे फिर सुना देते थे। पढ़ने में उनका जी उबता था। जब मैं थकावट के कारण या अन्य किसी कारण से मंद और नीरस ना होता तब वे मेरी बात रसपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनते थे। उनके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे उनकी ग्रहण शक्ति का अंदाजा हो जाता था। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आपने सुना चौथे भाग का 30वां अध्याय, शीर्षक था अक्षर ज्ञान। और आइए अब सुनते हैं गांधी जी का प्रिय राम भजन।

प्रत्येक शुक्रवार प्रसारित होने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा आप सुन रहे थे। डॉक्टर हुकुम शर्मा की प्रस्तुति। FM शिमला 103.7 MHz पर आप हमें सुन रहे हैं। लीजिए अब पेश है दैनिक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में हमारे सभी लिसनर्स का स्वागत है। आप सभी को यह खूबसूरत सुबह मुबारक हो। गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ, जो हम प्ले कर रहे हैं खास आपके लिए।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा।

वैसे दोस्तों, सुबह सुबह उठना भी एक आर्ट है। कुछ लोग अलार्म बजते ही उठ जाते हैं और कुछ लोग अलार्म को 5-6 बार स्नूज करते करते बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और करते करते कब 50 मिनट तक हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। खैर, आप चाहे जैसे भी उठे हों, आपका होना ही इस नई सुबह को खास बनाता है। इसी बात पर एक छोटी सी कहानी

0: मुझे याद आती है। एक बार बड़ा ही कंजूस और हमेशा परेशान रहने वाला इंसान एक साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज जीवन में बड़ी अशांति है, खुश रहने का कोई राज बताइए। साधु मुस्कुराए और उन्होंने उस आदमी को कहा कि ये चम्मच है, एक चम्मच में 3 बूंद तेल डालकर दिया और कहा, इस महल के चक्कर काट कर आओ, लेकिन शर्त यह है कि चम्मच से तेल की 1 भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी पूरा ध्यान चम्मच पर रखकर महल का चक्कर लगाकर घूम कर आया, तेल बिल्कुल नहीं गिरा। साधु ने पूछा, तुमने महल के खूबसूरत बागीचे, फव्वारे और पेंटिंग्स देखी, कैसी लगी? आदमी बोला, महाराज मेरा पूरा ध्यान चम्मच पर था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कहीं और। साधु ने कहा, यही तुम्हारी परेशानी है, तुम जिंदगी में सिर्फ अपनी छोटी छोटी चिंताओं को बचाने में लगे रहते हो, जैसे चम्मच का तेल। और भगवान ने जो इतनी खूबसूरत दुनिया और खुशियाँ दी हैं, उन्हें देखना ही भूल गए। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात यह है कि हमारी रोज़मर्रा की टेंशन, काम का प्रेशर, ये सब चम्मच का तेल है। इन्हें संभालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके चक्कर में जीवन की खूबसूरती को देखना और मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिए। खुश रहना कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला, आज भारती के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। ये नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए, पर एक संदेश के बाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं, यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं।

0: सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सूरज की नई किरण एक नई गवाही लाती है। हर तारीख अपने दामन में कोई कहानी छुपाती है। रोक नहीं सकता कोई समय की इस रफ्तार को, मगर इतिहास की यादें हमेशा जिंदा रह जाती हैं। तो अब गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज के इतिहास की। आज ही के दिन सन 1942 में एक 13 साल की ज्यूइश गर्ल एन फ्रैंक को उनके जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट में मिली थी। इसके ठीक एक महीने बाद वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नाजी से बचने के लिए उनके पूरे परिवार को एक गुप्त ठिकाने पर छिपना पड़ा। एन ने 2 साल छिपकर इस डायरी में अपने डर और उम्मीदों को लिखा। आज ये डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे जीवंत और मार्मिक दस्तावेज मानी जाती है। आज ही के दिन 1964 में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और गोरी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला और उनके साथ साथियों पर सरकार का तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप था। आज ही के दिन 1990 में रूसी संघ द्वारा प्रभुता की घोषणा की गई। इसका मतलब था कि अब रूस के अपने कानून सोवियत संघ के कानूनों से ऊपर होंगे। आज इस दिन को रूस में उनके राष्ट्रीय दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये था आज का इतिहास। FM शिमला 103.7 MHz पर गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे जिन श्रोताओं का आज जन्मदिन है या सालगिरह है, उन्हें आकाशवाणी FM शिमला की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: बारह जून को हर साल दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज से बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म करना है। इस दिवस की शुरुआत साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा की गई थी। दुनिया भर में करोड़ों बच्चे शिक्षा और खेलकूद छोड़कर खतरनाक काम धंधों में लग जाते हैं। इन्हें बचाने के लिए एक वैश्विक मंच की जरूरत थी। इस साल इस दिवस का थीम है बाल श्रम को रेड कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। बच्चों के हाथों में औजार या बर्तन नहीं, बल्कि किताबें और खिलौने सौंपे। आपके आसपास किसी भी दुकान, होटल या घर में बाल मजदूरी देखें तो तुरंत आवाज उठाएं। वयस्कों को काम और बच्चों को नाम, पहचान और शिक्षा देकर ही हम सामाजिक अभिशाप को मिटा सकते हैं। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला।

0: इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल 2026 आज ये कारवां अपने आखिरी पड़ाव पर है। 12 जून है आज, आज है इस ग्रैंड फेस्ट का लास्ट डे। अगर पिछले 4 दिनों में आप रिज नहीं जा पाए हैं तो आखिरी मौका है, मिस मत कीजिएगा। वीकेंड है तो दिन में अगर आप शॉपिंग या स्वाद महोत्सव का लजीज खाना ना भी चख पाएं तो भी शाम को स्टार नाइट तो इन्जॉय कर ही सकते हैं। आज कौन से पंजाबी सिंगर्स स्टार नाइट में सुरों का जादू बिखेरेंगे ये देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम भी गुड मॉर्निंग शिमला इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, सुनते हैं ये लास्ट ट्रैक।
1: इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ

0: गुड मॉर्निंग शिमला, ये प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, दिन भर ये मस्ती, म्यूजिक, इंफरटेनमेंट का कारवां यूं ही चलता रहेगा। सुबह 10 बजे युगल स्वर कार्यक्रम संगम आप सुनेंगे। एक बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम द वॉइस ऑफ द यूथ युववाणी 3:30 पर आप सुन सकते हैं। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। लीजिए अब पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज और कल शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत सरकार गांव

0: के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को घर द्वार पर उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। जगत सिंह नेगी कल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया है। हर्षवर्धन चौहान ने कल शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को आरजेडी के रूप में 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से हिमाचल को सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के हिस्से के तौर पर ही पैसा मिल रहा है और राज्य को किसी प्रकार की विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिली है। विनय कुमार ने कल शिमला में कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल को आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता नीरज भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों से सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कल शिमला में कहा कि नीरज भारती के आरोपों से साबित कर दिया है कि सरकार में लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। न्यूज़ हेडलाइंस में अभी इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: ये है एफएम शिमला 8 बजने को हैं। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचारों के लिए।
2: गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
5: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम

0: पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
2: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
4: We signed this year a free trade agreement with Europe.
5: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
6: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264

0: लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों

0: की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
4: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 8:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
2: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति हैं। वे कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने देश का प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क शुरू किया है। वे बिलासपुर ज़िला से संबंध रखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कल चंबा ज़िला के तीसा उपमंडी में का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि इस उपमंडी के शुरू हो जाने से क्षेत्र के किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अब घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष दिलदार अली भट्ट ने इस मौके पर जिला के सभी किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने और सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन मूल्य का लाभ उठाने की अपील की है। कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत रामपुर जल विद्युत परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा UAV संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की उदासीनता और सुस्त कार्यशैली के कारण ऊना के हरोली में बन रही बल्क ड्रग पार्क परियोजना तय गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस कारण प्रदेश को आर्थिक और औद्योगिक स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के

0: अनुसार आज और कल प्रदेश के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। भाषा एवं संस्कृति विभाग और द गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी शिमला के सहयोग से कल से 19 जून तक शिमला पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। ये पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों, छात्रों और परिवारों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ समकालीन बेस्ट सेलर्स से लेकर कालजयी क्लासिक्स तक पुस्तकों का एक बेहतरीन संग्रह उपलब्ध रहेगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी व निजी संस्कृत कॉलेजों में शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। इसको लेकर सूचना कॉलेज प्रबंधनों को भी भेज दी गई है। ईरान के हॉर्मुज में जलडमरू में एक भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमरीकी हमले में हमीरपुर ज़िला के गलौड़ में रहने वाले नाविक आदित्य शर्मा की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज व कल शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। न्यूज हेडलाइंस में इतना ही। नमस्कार।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं। अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और मिट्टी की खुशबू लिए ये लोक संगीत आइए सुनते हैं।

नेकी राम और रीना धीमान की आवाज़ों में आप आनंद ले रहे थे लोक संगीत का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला पर।

सुबह के 8:45 हो चुके हैं, आइए अब रुक करते हैं फिल्मी तरानों का। लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इस फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं ये सॉन्ग शिल्पा राव की आवाज में, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, सलीम सुलेमान ने इस गीत को कंपोज किया।

एक था टाइगर, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। बोल लिखे नीलेश मिश्रा ने और संगीत सोहेल जैन का। आकाशवाणी FM शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। जब तक है जान, इस फिल्म से अब आपको हम अगला गीत सुनवा रहे हैं नीति मोहन की आवाज में। गुलजार ने लिखा है, कंपोज किया है AR रहमान ने। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला पर यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

के कुणाल और प्रवीण मानी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये सॉन्ग फिल्म साथिया से, जिसे लिखा गुलजार ने और कंपोज किया एआर रहमान ने। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं और गीत संगीत मनोरंजन का ये सिलसिला यूं ही जारी है। अगला गीत आपके लिए, बचना ए हसीनो, इस फिल्म से हम सुनवा रहे हैं। लकी अली और श्रेया घोषाल ने इस गीत में अपनी आवाजें दी हैं, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और संगीत आरजी बर्मन का।

0: ये बॉलीवुड सॉन्ग्स आपके लिए हम प्ले कर रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि आज आप आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर किस वक्त पर कौन सा विशेष कार्यक्रम सुन सकते हैं। आज शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे। रात 8 बजे प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष पर लोक कलाकार कमर सिंह से सपना ठाकुर की भेंट वार्ता जरूर सुनिएगा। अब से थोड़ी ही देर बाद 9:31 पर सुरबेला कार्यक्रम में आज सुनिएगा राजेश कुमार से तबले पर ताल तीन ताल। 10 बजे आप सुनेंगे रिमझिम। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसका समय रहता है 11:30 का। महिला सम्मेलन कार्यक्रम 12:20 पर, 1:10 पर कार्यक्रम सैनिकों के लिए और 2 बजे सुनहरी किरणें। 2:30 पर आज आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम। शाम 4:20 पर सिरमौरी कार्यक्रम, 4:50 पर महास्वी, 5:20 पर किनौरी, 6:06 पर बिलासपुरी और 6:35 पर कुल्लवी कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं। सुगम संगीत सोमेश कुमार से 8:30 पर रात को आप सुनेंगे। गजलें सुनिएगा गुलदस्ता में 9:15 पर, करंट अफेयर 9:30 पर, 10 बजे मनभावन और 10:30 पर कार्यक्रम सुरबहार। तो ये विशेष कार्यक्रम आज आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर। FM शिमला भी आप सुन रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल।

0: प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला में मोदी सरकार के 12 साल विश्वास विकास और जनकल्याण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की अंतिम संध्या में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि होंगे उपस्थित। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र किए जारी। 13 व 14 जून को आयोजित होंगी परीक्षाएं। आकांक्षी जिला चंबा में जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर। 1400 अधिकारी व कर्मचारी देंगे अपनी सेवाएं। और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा आज शिमला में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इस संगोष्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। संगोष्ठी का विषय मोदी सरकार के 12 साल विश्वास विकास और जनकल्याण के रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। संगोष्ठी में आयुष्मान भारत, जन औषधि, उज्ज्वला, पीएम आवास जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास में आए बदलावों पर मंथन किया जाएगा। संगोष्ठी के माध्यम से भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों और विजन को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 में आज समर फेस्टिवल के तहत हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉय राइड के लिए पंजीकरण लिंक शिमला के उपायुक्त की फेसबुक पेज पर जारी होगा। इस जॉय राइड का पिकअप और ड्रॉप पॉइंट ऑकलैंड टनल को रखा गया है। यह जॉय राइड 8 से 10 मिनट की होगी, जिसमें शिमला की सेवन हिल्स का नज़ारा दिखाया जाएगा। ग्रीष्मोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज पंजाबी गायक जस्सी गिल और बबल राय की जोड़ी रोमांचक प्रस्तुति देगी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। यह सेवा बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। आकांक्षी जिला चंबा में इन दिनों जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में 16 जून से भवन सूचीकरण एवं आवास गणना आरंभ होगी, जो 15 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएगी। इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला चंबा को 22 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: जिला चंबा में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला में लगभग 1400 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत प्रगणन अधिकारी

0: एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 32 फील्ड प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण बैचों के लगभग 200 प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं जनगणना के दूसरे चरण में 11 से 30 सितंबर 2026 के बीच जिला के शीतकालीन एवं दुर्गम क्षेत्रों भरमौर, पांगी, होली सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनगणना का कार्य सम्पन्न किया जाएगा। इस दौरान लगभग 1050 गाँवों को कवर किया जाएगा। इसके पश्चात जिला के शेष क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक अनधिकृत पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क शुरू करते हैं और वे पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, JBT और TGT संस्कृत विषयों को परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई है। मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सिरमौर जिला के नाहन की ऐतिहासिक विला राउंड सहरगाह को जल्द ही पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए विकसित किया जाएगा। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि सहरगाह के सौंदर्यीकरण के लिए नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने अधिकारियों के साथ सैरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि ऐतिहासिक सैरगाह बिलाराउंड का सौंदर्यकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ताकि यहां स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि बिलाराउंड में जल्द ही ओपन जिम स्थापित की जाएगी जिससे युवाओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूरी सैरगाह में बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी जिससे शाम के समय सैरगाह में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
1: प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी व तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा।
3: 13 और 14 जून को भी संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बारिश का दौर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर है और सोलन, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। फिर 13 जून के उपरांत 13 और 14 जून को जो एक्टिविटी है बारिश और थंडरस्टॉर्म की, ये हमारे स्पेशली मध्यवर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पे क्लाउडिंग के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते जो तापमान स्पेशली पूरे प्रदेश में ही जिसमें मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो हाई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे दिन के तापमान में देखिए 3 से 6 डिग्री गिरावट औसतन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी।

0: कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत रामपुर जल विद्युत परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा यूएवी संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग शर्मा ने कहा कि पावर हाउस, स्विचयार्ड, सुरंगों, ट्रांसमिशन सुविधाओं और अन्य संबद्ध प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन का अनाधिकृत संचालन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परियोजना की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पीएम मोदी से बोले सुक्खू, आरडीजी की भरपाई के लिए पहाड़ी राज्यों को 50,000 करोड़ दे केंद्र। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सुक्खू ने हिमाचल के लिए मांगी 50,000 करोड़ रुपए की मदद। दैनिक भास्कर लिखता है, नीति आयोग की बैठक में उठे आरडीजी और हिमाचल हितों के प्रमुख मुद्दे। प्रदेश के सरकारी भवनों का होगा नियमित सुरक्षा ऑडिट, शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है। स्कूलों, अस्पतालों समेत सभी महत्वपूर्ण भवनों की होगी जांच। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज शिमला में मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जनगणना कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की अंतिम संध्या में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि होंगे उपस्थित। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र किए जारी। 13 व 14 जून को आयोजित होंगी परीक्षाएं। आकांक्षी जिला चंबा में जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर, 1,400 अधिकारी व कर्मचारी देंगे अपनी सेवाएं। और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कुदरत किरण। जी हाँ, अब ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जागिए कि पहाड़ों की पलकें खुल चुकी हैं और सूरज की किरणों ने देवदार के पत्तों पर ओस की बूंदों को चूमा है। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कुदरत के रंग। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती। दोस्तों, रोज की इस भागदौड़ में क्या कभी आपका दिल नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां वक्त भी थम कर सांस लेता हो, जहां हवाओं में कोई जल्दबाजी ना हो और जहां खामोशी भी कोई मीठी धुन सुनाती हो। आज कुदरत के रंग में हम आपको एक ऐसी अनछुई जगह पर लेकर चलेंगे जिसका नाम है शांगढ़। कुल्लू के खूबसूरत सैंज घाटी में बसा एक ऐसा गांव जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ने फुर्सत के लम्हों में इस जमीन पर हरी मखमली चादर बिछा दी हो। एक नगमे के बाद चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं।

दोस्तों, अभी हम जिक्र कर रहे थे शांघड़ का। जब आप इस घाटी में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको नजर आते हैं शांघड़ के मैदान। इन्हें सिर्फ मैदान कहना तो गुस्ताखी होगी, ये तो हरी मखमल की वो समंदर हैं जिन पर चलते हुए आपकी रूह मुस्कुरा उठेगी। कहते हैं कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पर थे तो अपने कुछ दिन यहाँ बिताए थे। इन मैदानों के ठीक बीचों बीच देवदार की लकड़ी से बना एक प्राचीन खूबसूरत मंदिर है शंखचूल महादेव का। यहाँ पर कोई भी चमड़े की चीज ले जाना, जोर से बोलना, शोर मचाना बिल्कुल मना है। तो आप भी यहाँ की पवित्रता को समझते हुए इस बात का मान रखिएगा। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग।

कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। शांघड़ के मैदानों से जैसे ही आप देवदार के घने रहस्यमय जंगलों की तरफ बढ़ते हैं, दूर से एक सुरीली आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी साज की नहीं बल्कि पत्थरों से टकराकर बहते बरशांघड़ झरने की है। यहाँ पानी इतना पारदर्शी है कि आप इसमें अपना अक्स देख सकते हैं। और यहाँ से थोड़े आगे चल के देवहारी गांव के पास छिपी है पुंडरिक ऋषि झील। इस झील के ऊपर हरी घास और दुर्लभ जड़ी बूटियों की एक ऐसी घनी चादर है कि पहली नज़र में आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पानी भी है।

शांघड़ के मैदानों से जैसे ही आप देवदार के घने रहस्यमयी जंगलों की तरफ बढ़ते हैं, दूर से एक सुरीली आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी साज की नहीं, बल्कि पत्थरों से टकराकर बहते बरशांघड़ झरने की है। यहाँ पानी इतना पारदर्शी है कि आप इसमें अपना अक्स देख सकते हैं। और यहाँ से थोड़े आगे चल के देवहारी गांव के पास छिपी है पुंडरिक ऋषि झील। इस झील के ऊपर हरी घास और दुर्लभ जड़ी बूटियों की एक ऐसी घनी चादर है कि पहली नज़र में आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पानी भी है।

कुल्लू की सैंज घाटी में बसे शंघड़ की आज बात हम कर रहे हैं। इस जगह पर पहुंचने की अगर बात करें तो दिल्ली या चंडीगढ़ से मनाली की बस लीजिए और ऑड टनल से ठीक पहले उतर जाइए। वहां से लोकल बस या टैक्सी द्वारा सैंज घाटी होते हुए शंघड़। अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ मंडी हाईवे होते हुए ओट से रास्ता कटता है सैंज के लिए। वहां से आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको बड़े बड़े होटलों का शोर नहीं बल्कि मिट्टी और लकड़ी से बने खूबसूरत मड हाउस और होम स्टे मिल जाएंगे। यहां नेटवर्क आपके नखरे दिखा सकता है, आपको आपसे अटखेली कर सकता है, तो घर वालों को पहले ही ये बात बता दीजिए और अपने पास कैश जरूर रखिएगा।

ये वक्त की रेत बड़ी जालिम होती है दोस्तों, कब फिसल जाती है पता ही नहीं चलता। कुदरत के रंग में आज हमने शांघड़ की वादियों को जिया, वहां की खामोशियों को सुना और इसकी खूबसूरती को महसूस किया। कल इसी वक्त पर इसी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, किसी नए सफर पर चलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: कुदरत की रंग। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे थे हमारे साथ FM शिमला 103.7 MHz पर। लीजिए अब पेश है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक अनाधिकृत पहचान पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। देश में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है, जो किसानों के मोबाइल फ़ोन पर सीधे जानकारी पहुंचाती है। ये सेवा बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। कृषि और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारत का कोई भी तिलहन किसान व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क, विश्वसनीय और तत्काल फसल संबंधी सलाह प्राप्त कर सकता है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, JBT और TGT संस्कृत विषयों की परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। सिरमौर जिला के नाहन में ऐतिहासिक विला राउंड सैरगाह को जल्द ही पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए विकसित किया जाएगा। विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि सैरगाह के सौंदर्यीकरण के लिए नई कार्य योजना तैयार की जा

0: रही है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई हैं। कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टिगत रामपुर जल विद्युत परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा UAV के संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग शर्मा ने कहा कि पावर हाउस, स्विचयार्ड, सुरंगों, ट्रांसमिशन सुविधाओं और अन्य संबद्ध प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन का अनाधिकृत संचालन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परियोजना की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा, तेज आंधी व तूफान का समाचार है। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, FM शिमला।

लिसनर्स, आपको बता दें कि रात 9:30 पर ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन में आप अपने ईमेल्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कार्यक्रम सुनिएगा जरूर। आकाशवाणी FM शिमला पर आप बने हुए हैं हमारे साथ, और अब वक्त है कार्यक्रम संगम का।

संगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है हिंदी सिनेमा के युगल गीतों के लिए। अगले एक घंटे तक ये डू इट सॉन्ग्स का सिलसिला चलेगा, जहां दो बेहतरीन आवाजें मिलकर बेहतरीन एहसास और सुरों का जादू बिखेरेंगी। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला म्यूजिक ट्रैक।

के इस कार्यक्रम संगम में अभी आप सुन रहे थे ये दो गाना फिल्म फिजा से। उदित नारायण और अलका याग्निक ने गीत को अपनी आवाज़ दी थी, इनका साथ दिया इनके साथियों ने। गुलजार ने ये गीत लिखा, संगीतकार अनु मलिक। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर और बोल लिखे हैं फैज़ अनवर ने। हिमेश रेशमिया ने इस गीत को संगीत दिया। आप बने हुए हैं हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर।

0: आर्यन, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। ये गीत लिखा और संगीत दिया आनंद राज आनंद ने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: दो अलग आवाजें जब एक सुर में ढलती है तभी तो संगम की महफिल खास बनती है। 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम संगम। खाकी इस फिल्म से आइए सुनते हैं अगला नगमा। सोनू निगम, श्रेया घोषाल ने गीत को अपनी आवाजें दी हैं। समीर ने लिखा और कंपोज किया राम संपत ने।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

तेरे नाम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, जिसे लिखा था समीर ने और सुरों से सजाया हिमेश रेशमिया ने। सुर से जब सुर मिलता है तो दिल का चमन खिलता है। युगल गीतों का ये कार्यक्रम संगम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। ढाई अक्षर प्रेम के इस फिल्म से अब आप सुनेंगे हमारा अगला सॉन्ग बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। भैरव अरुण ने ये गीत लिखा है और कंपोज किया जतिन ललित ने।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश

0: के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तुलसी कुमार और राहत फतेह अली खां को अभी आपने सुना था रेडी फिल्म के गीत में, जिसे लिखा था कुमार ने और कंपोज किया प्रीतम ने।

सुरों का कारवां थमता नहीं, बस मोड़ लेता है। ये संगम आज भी हर दिल को हर दिल से जोड़ देता है। युगल गीतों का कार्यक्रम संगम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। चोरी चोरी चुपके चुपके, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाएंगे। अलका

सुरों का कारवां थमता नहीं, बस मोड़ लेता है। ये संगम आज भी हर दिल को हर दिल से जोड़ देता है। युगल गीतों का कार्यक्रम संगम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। चोरी चोरी चुपके चुपके, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाएंगे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, जिसे लिखा समीर ने, सुरों से सजाया अन्नू मलिक ने।

लव आजकल, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और नीरज श्रीधर की आवाज़ों में। इरशाद कामिल ने जिसे लिखा और कंपोज किया प्रीतम ने। 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगम। जुदा होकर भी दोनों एक ही धुन में धड़कते हैं, ये वो संगम है जहां दो सुर मुकम्मल गीत बनते हैं। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल, संगीतकार अनु मलिक। ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपके लिए।

0: ये FM शिमला है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगम। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और यह अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश भाजपा आज शिमला में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इस संगोष्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। संगोष्ठी का विषय मोदी सरकार के 12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण के रखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। संगोष्ठी में आयुष्मान भारत, जन औषधि, उज्ज्वला, पीएम आवास जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास में आए बदलावों पर मंथन किया जाएगा। संगोष्ठी के माध्यम से भाजपा केंद्र सरकार की नीतियों और विजन को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 में आज जॉयराइड का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉयराइड का पिकअप और ड्रॉप पॉइंट ऑकलैंड टनल है। यह जॉयराइड 8 से 10 मिनट की होगी, जिसमें शिमला की सेवन हिल्स का नज़ारा दिखाया जाएगा। वहीं ग्रीष्मोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय की जोड़ी रोमांचक प्रस्तुति देगी। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आकांक्षी जिला चंबा में इन दिनों जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर है। इस कड़ी में 16 जून से भवन सूचीकरण एवं आवास गणना आरंभ होगी, जो 15 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएगी। इस कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला चंबा को 22 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: जिला चंबा में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला में लगभग 1400 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 32 फील्ड प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण बैचों के लगभग 200 प्रगणन अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं जनगणना के दूसरे चरण में 11 से 30 सितंबर 2026 के बीच जिला के शीतकालीन एवं दुर्गम क्षेत्रों भरमौर, पांगी, होली सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनगणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। इस दौरान लगभग 1050 गांवों को कवर किया जाएगा। इसके पश्चात जिला के शेष क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
2: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, JBT और TGT संस्कृत विषयों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच गई है। इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि भारत धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला

0: इजाफा देखने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, जिससे बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी व तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 PM। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा FM शिमला पर भी प्रसारित किए गए।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर लिसनर्स। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। वक्त हुआ है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का, तो प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूँ अनुराधा ठाकुर। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ बातें भूली बिसरी, कुछ यादें पुरानी है, ये खूबसूरत नगमे किसी की मीठी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप आनंद लेते हैं पुराने गीतों का जो आज भी संगीत की दुनिया में चमक रहे हैं। तो दोस्तों अपने कामकाज को दीजिए थोड़ा सा विराम और हो जाइए तैयार एक सुहाने सफर पर चलने के लिए, जहाँ गूंजेंगे आपके पसंदीदा पुराने दौर के वो सदाबहार गीत। तो लीजिए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं काला पानी फिल्म के इस गीत के साथ, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने, संगीत दिया है ST वर्मन ने।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

दोस्तों, क्या कमाल का ये गीत था। ये वो आवाज़ें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, दिल को छू जाती है। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। ये गीत 1970 और 80 के दशक की उस सुनहरी याद को ताज़ा करता है जब लता जी की आवाज़ हर दिल पर राज करती थी। तो लीजिए, पेश है अनामिका फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत की बोल लिखी है मजरू ने, संगीत दिया है एस डी वर्मन ने।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कभी कभी खामोशियाँ भी बहुत कुछ कह जाती है, और जब इन खामोशियों में सुरों का साथ मिल जाए तो ज़ख्म भी दवा बन जाते हैं। जी हाँ, क्या दौर था वो जब आवाज़ ही काफ़ी थी दिल को छू लेने के लिए। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस सादगी और सच्चा संगीत। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत अपना देश फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना राहुल देव वर्मन की।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जिंदा हो जाता है इन नगमों के साथ। जी हाँ, तो इसी गीत के साथ अब पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम समाप्त होता है। आप यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए FM शिमला के साथ।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला, 11:30 हुए हैं। वक्त हुआ है कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। तो लीजिए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं विकेश शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का आनंद इस वक्त आप ले रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं भुवनेश कुमार की आवाज़ में।

0: तो दोस्तों, इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12 बजने को है। हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार,

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 12:10 हुए हैं। वक्त हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, तो लीजिए आंदोलन फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन महिला सम्मेलन। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम FM शिमला पर भी सुना जा सकता है।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लीजिए बहनों, एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। आज के इस सफर में हम रहेंगे आपके साथ कल्पना ठाकुर
1: और मैं सुषमा वर्मा।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: बहनों, कहते हैं बात आज के खास दिन की, तो बात करते हैं आज के खास दिन की, 12 जून। और ये दिन हर वर्ष जो है पूरी दुनिया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: जी, बचपन तो है अनमोल, इसे खिलखिलाने दो, शिक्षा की रोशनी में इन्हें भी उड़ जाने दो, मत झोंको इन मासूमों को मेहनत की भट्टी में, मत झोंको इन मासूमों को मेहनत की भट्टी में, इनके सपनों को भी एक नया आसमां पाने दो।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहनों, इसको मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो 14 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं ना, उनसे यानी कि श्रम यानी कि काम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना, इस जो बाल श्रम निषेध दिवस है उसका ये मुख्य उद्देश्य होता है।
0: जी, और बहनों, इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। बच्चों को श्रम ना करवाना और उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है ताकि वे अपने सपनों और अपने बचपन को ना खोएं।
1: जी,
0: इस दिन पूरी दुनिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है बहनों। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य बाल श्रम पर रोक लगाना भी है, और हर वर्ष यही कोशिश रहती है कि 12 जून को बाल श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर किया जाए, और इस दिन सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों तथा नागरिक समाज के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को जागरूक किया जाता है और उनकी मदद के लिए कई तरह के कैंपेन भी आयोजित किए जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और देखिए बहनों, आपने भी देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना बचपन खो देते हैं।
0: जी,
1: 5 से 17 वर्ष के बच्चे ऐसे काम में लगे हुए हैं जो उन्हें सामान्य बचपन से वंचित करते हैं और शिक्षा व स्वास्थ्य से दूर करते हैं।
0: जी, और देखिए बहनों, किसी भी दिवस को मनाने के पीछे ना एक थीम रखी जाती है, एक उद्देश्य, एक गोल निश्चित किया जाता है, और
1: जी,
0: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने के लिए इस वर्ष जो थीम रखी गई है वो है, आइए प्रकृति अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करे, बाल श्रम का अंत करे।
1: जी बहनों, बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई को और अधिक मजबूती देने के लिए इस वर्ष के अभियान का मुख्य नारा है, बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम रखा गया है।
0: जी, और इस दिन के मुख्य बिंदु है बहनों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाना।
1: जी,
0: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्याप्त आजीविका को उपलब्ध निश्चित करना। तो बहनों, ये दिन तभी सफल होगा जब हम और आप भी जागरूक होंगे, हम और आप भी बाल श्रम को पूरी तरह से जो है खत्म करने में कोई ना कोई कदम उठाएंगे, सहभागिता उठाएंगे।
1: जी बिल्कुल, और देखिए बहनों, अगर आपके आसपास किसी बच्चे को जो 14 वर्ष से कम का है श्रम करते देखे तो उसे ना करने दें, बल्कि उसकी मदद करें कि वो भी स्कूल जा सके ताकि उसका जो बचपन है कहीं खो ना जाए और उसे भरपूर जी सके, यानी कि वो अपने बचपन को भरपूर जी सके, अपने बचपन के होता ही है कल्पना, हर बच्चे का एक सपना होता है, हर बच्चे की अपनी एक इच्छाएं होती है, तो अगर उन छोटे छोटे मासूमों को अगर बचपन में ही आप काम में लगा देंगे तो उनका बचपन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा सुषमा आपने, और देखिए आजकल तो बच्चों के पीछे क्या है, उनको मजदूरी कराने का क्या कारण है, ये सबसे पहले जानना आवश्यक है।
1: जी बिल्कुल,
0: कई बार तो मजबूरी भी

0: होती है कि बच्चों से श्रम करवाया जाता है, उनके पास कोई करने वाला नहीं होता है, लेकिन इन सब समस्याओं का निदान निकाला जा सकता है। हमें
1: जी
0: पहले ये पता करना होगा कि कोई भी बच्चा बाल श्रम क्यों कर रहा है, क्यों इस अवस्था में कार्य कर रहा है। जब हम उसके कारण को जानेंगे तो उसके उपाय को भी ज़रूर जान सकेंगे। तो बहनों, आपने खुद जागरूक होना है, दूसरों को जागरूक करना है कि बाल श्रम को बिल्कुल भी जो है अवॉइड करे, रोके।
1: जी बिल्कुल।

0: नशा छीन लेता है जीवन की हर मुस्कान, तोड़ देता है सपनों का सुंदर आसमान। आओ मिलकर ये संकल्प आज उठाएं, नशा मुक्त समाज का दीप हर घर में जलाएं।
1: जी, बहुत ही खूब कहा आपने। और देखिए, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है। उनके सपनों, उनकी ऊर्जा और उनके उत्साह से ही देश का भविष्य तय होता है। लेकिन बहनों, आज एक ऐसी समस्या बड़ी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है जो हमारे युवाओं और बच्चों को, उनके भविष्य को खतरे में डाल रही है, और ये समस्या है नशे की बढ़ती प्रवृत्ति।
0: जी बिल्कुल। देखिए बहनों, नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे देश को प्रभावित करता है। आज कई युवा और बच्चे इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, जिससे जो है गंभीर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो बहनों, आइए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करते हैं कि नशा युवाओं और बच्चों के जीवन में क्या असर डाल रहा है और इसे हम कैसे बचें, क्या हम इसके लिए कदम उठा सकते हैं।
0: जी बहनों, नशा आज समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है और इसका सबसे अधिक जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो है युवाओं और बच्चों पर। कम उम्र में नशे की लत लगने से उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है।
1: बिल्कुल। और नशा करने वाले बच्चों और युवाओं की पढ़ाई पर भी बहनों बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है।
0: जी,
1: उनका ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट जाता है, उनकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर होने लगती है, और साथ ही साथ परीक्षा में भी देखिए उनका जो प्रदर्शन है वो, उसका स्तर गिरने लग जाता है। कई बार तो क्या होता है बहनों कि इस नशे की वजह से वे बच्चे जो है ना स्कूल और कॉलेज छोड़ने तक की स्थिति तक पहुँच जाते हैं।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, पढ़ाई के साथ साथ जो है इसका स्वास्थ्य पर भी कल्पना बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: जी,
0: और नशे के कारण जो है शरीर कमज़ोर होने लगता है, फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में नशा करने से मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है।
1: जी। और देखिए बहनों, नशा युवाओं को जो है गलत संगत में पड़ने और अपराध करने जैसी स्थिति में भी डाल देता है।
0: जी बिल्कुल।
1: नशे की आदत पूरी करने के लिए कई बार वो झूठ भी बोलते हैं।
0: जी हाँ।
1: और चोरी करने भी लग जाते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे तरह के गलत कार्य होते हैं ना, वो सभी जो है इस नशे की वजह से करने लगते हैं। क्योंकि अब नशे की जब लत पड़ जाती है ना बहनों, तो उसको पाने के लिए पहले तो वो पैसे अपने ले लेते हैं, लेकिन जब कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं तो इस तरह की आदतों में, इस तरह के अपराधों में वो जो है तल्लीन हो जाते हैं, और इससे परिवार और समाज में उनका जो सम्मान है ना वो भी कम हो जाता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। क्योंकि देखिए, एक जो टॉपर बच्चा होता है ना,
1: जी
0: उसका एक अलग ही रुतवा होता है।
1: जी
0: पर अगर वो नशे में पड़ जाता है तो स्कूल कॉलेज से तो बाहर निकालना ही जाता है, साथ में जो उसका समाज में एक रेपुटेशन होती है, एक सम्मान होता है, इस नशे की वजह से वो भी उसे खो देता है। और सबसे दुखद बात तो ये है बहनों कि नशा युवाओं के सपनों और उनके जो भविष्य है ना उसको बर्बाद कर देता है। जो युवा देश और समाज की शक्ति बन सकते हैं वे अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को नशे की भेंट चढ़ा रहे
1: देते हैं। जी बिल्कुल। और इस समस्या से बचने के लिए परिवार, स्कूल और समाज, हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा बहनों, क्योंकि ये किसी एक की समस्या नहीं है। किसी एक का बच्चा नशा नहीं करेगा, उसमें लत में नहीं पड़ेगा, लेकिन सभी को जो है सार्वजनिक तौर पर एक साथ मिलकर इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो उठाना ही होगा, ताकि हम अपने बच्चों को इस समस्या से बचा सके, इस नशे की लत से बचा सके। और देखिए बहनों, बच्चों को इस लत से दूर करने के लिए उन्हें, हमें उनका जो ध्यान है ना इस नशे से, वो दूसरी तरफ को मोड़ना होगा। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, उनको खेल कूद की तरफ जो है उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, शिक्षा की तरफ और अन्य जो एक्टिविटी होती है जैसे कि योग हो गया, कोई सांस्कृतिक गतिविधियां है, और उनका जो विचार है उसे सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना होगा, ताकि बच्चे जो है अपना ध्यान नशे से हटाकर खुद को स्वस्थ रखने में और इन एक्टिविटीज़ में भाग लेने में, इन गतिविधियों में भाग लेने में व्यतीत कर सके। अगर हम बच्चों को इन चीज़ों की तरफ ले जाएंगे ना बहनों, तो बच्चे नशे की ओर कम जाने लगेंगे।
0: जी तो देखिए बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी समस्या है जो युवाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रिश्तों और भविष्य को गहराई में प्रभावित करती है। और देखिए, कल

0: ना आपने अभी कहा कि बच्चों को अगर हम एक्टिविटी की तरफ ले
1: जी
0: जाएंगे तो उनका ध्यान जो है इस तरफ से नशे से हटकर अपने दूसरे जीवन की ओर चला जाएगा।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही। और देखिए, हमें ये समझना होगा कि नशे से मिलने वाला जो क्षण भर का सुख है ना,
0: जी
1: पल भर का सुख, वो जीवन भर का दुख भी बन सकता है। इसलिए बच्चों और युवाओं को सही मार्गदर्शन, अच्छे संस्कार और सकारात्मक वातावरण देना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा घर जो है नशा मुक्त होगा, तभी समाज का भी जो है विकास होगा और साथ ही साथ देश के विकास में भी ये काफ़ी जो है हमें फ़ायदा देगा।
0: जी बिल्कुल। तो हम अपने बच्चों को नशे से दूर रखने का प्रयास करें, क्योंकि एक स्वस्थ युवा ही एक मजबूत परिवार, सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की नींव हो सकता है। और बहनों, हम आशा करते हैं कि आप सभी बहनें जो है नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
1: जी बिल्कुल। तो बहनों, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी चर्चा नशे के खिलाफ जो हमने की है, नशे के बारे में जो हमने की है, ज़रूर आपको पसंद आई होगी। और सिर्फ पसंद नहीं बहनों, इस पर आपको अमल करना होगा, तभी ये जो नशा है, तभी जो ये समस्या है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है।
0: जी तो देखिए कल्पना, बातें तो हम बहुत कर रहे हैं, क्यों
1: जी
0: ना अब अपनी बहनों को एक गीत भी सुना दिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए सुषमा, आपने ये महसूस किया होगा कि आजकल जो है ना गर्मी के इस मौसम में हमारी त्वचा बिल्कुल रूखी सी हो गई है, बिल्कुल बेजान, डल, और हमारा जो चेहरा है ना वो फीका सा हो जाता
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: और धूप से हमारी त्वचा क्योंकि झुलस जाती है और नमी हम खो देते हैं।
1: जी हाँ
0: तो गर्मियों में त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने के लिए उसे ज़्यादा पसीने, टैनिंग और तेल से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। देखिए बहनों, हम ये जानते हैं कि कैसे हम अपनी त्वचा का ख्याल इस मौसम में रख सकते हैं।
0: जी
1: आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में जिससे हम अपनी त्वचा की जो चमक होती है ना उसको वापस ला सकें। बहनों, सबसे पहले खुद को हाइड्रेट करना जो है बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है और हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: और दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिए और खुद को हाइड्रेट रखें। इससे शरीर से जो हमारे टॉक्सिन होते हैं ना वो बाहर निकलते हैं और त्वचा में प्राकृतिक चमक जो है आती है।
0: जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमें पानी से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन भी करना चाहिए।
1: जी
0: इनमें आप तरबूज, खीरा, संतरा, मौसमी, लीची और मूली भी शामिल कर सकती हैं,
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: आपकी त्वचा को अंदर से नमी देते हैं। इसलिए बहनों, आजकल तो वैसे ही फलों का सेवन करना चाहिए,
1: जी
0: और
1: हाँ
0: फलों के सेवन से हमारी त्वचा भी जो है चमकदार बनती है, और साथ ही साथ हमारे शरीर में पानी की कमी को भी ये पूरा करते हैं। और साथ ही कोशिश करें कि गर्मियों में दिन में 2 बार जो है अपना चेहरा धोए, क्योंकि क्या होता है बहनों कि पसीना और धूल मिट्टी के जो कण होते हैं ना
1: जी
0: वो
1: हाँ
0: हमारी त्वचा के छिद्रों को बंद कर देते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: जिससे हमारी त्वचा बेजान और रूखी नजर आती है। इसलिए कोशिश करें कि दिन में अपने चेहरे को 2 बार धोए,
1: जी हाँ बिल्कुल
0: और धूप में निकलने से पहले एक अच्छी सी सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाए बहनों, जो आपको सूर्य से निकलने वाली जो ये किरणें होती
1: किरने,
0: हैं
1: जी हाँ
0: उससे
1: बिल्कुल
0: आपको बचाती है।
1: जी बिल्कुल। और देखिए बहनों, गर्मी में त्वचा को ठंडक और पोषण देने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल त्वचा को शांत और हाइड्रेट करने के लिए कर सकती है।
0: जी
1: ताज़ा एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। इससे आपकी जो टैनिंग है वो कम करने में मदद मिलती है।
0: जी और साथ ही बहनों, खीरे की अगर हम बात करें तो खीरे के रस की को क्या कर सकते हैं आप, इसको स्लाइस बना सकते हैं, उसको अपने चेहरे पर लगा सकते हैं और इसके स्लाइस बनाकर आंखों पर भी रख सकते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: अगर आपकी आंखों में डार्क सर्कल हो गए हैं, काले घेरे हो गए हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक जो है राहत देगा, और इसके अलावा त्वचा में एक ताजगी आती है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है, जिससे हमारी जो त्वचा है ना वो फिर से जीने लगती है, उसके लिए ऑक्सीजन मिलता है।
1: जी बिल्कुल। और देखिए बहनों, अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक भी बनाकर चेहरे पर लगा सकती है।
0: जी
1: जिसकी त्वचा रूखी है वो इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और दही भी इस्तेमाल कर सकती है। इससे त्वचा में जो है निखार भी आता है, यानी कि जिन बहनों की त्वचा ऑयली है उनके लिए भी ये फायदेमंद है, और जिनकी त्वचा जो रूखी है उसमें कोकोनट ऑयल और दही मिलाकर उनके लिए भी ये फायदा देता है।
0: जी और साथ ही साथ बहनों, चावल के आटे में गुलाब जल, शहद, दही और एलोवेरा जल, साथ ही नींबू के रस की

0: बूंदी और इसका एक आप पेस्ट तैयार कर लें और उसे 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें। और हो आप अगर गर्दन में भी लगाती हैं तो इससे फ़ायदा होता है। इसके बाद आपको नॉर्मल पानी, जो हमारा सामान्य पानी होता है आजकल, उसे जो है ये धो लेना है और इससे भी त्वचा की जो मृत कोशिकाएँ हैं वो निकल जाती है और चेहरे पर एक अलग ही निखार आ जाता है।
1: जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ बहनों अपनी जीवन शैली में भी सुधार लाएँ, जैसे रासायनिक पदार्थों से अपनी त्वचा को बचा कर रखें, बाहर के खाने से परहेज करें क्योंकि उससे चेहरे और त्वचा पर अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है जो हमारी सेहत के लिहाज से भी ठीक नहीं होती। यानी कि आपको बहनों लगाना ही लगाना नहीं है बल्कि आपको खाने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितना हमारी त्वचा पर लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता है उतना हमारे खाने से पड़ता है। अगर आप अपना खाना पीना ठीक रखेंगी तो हो सकता है कल्पना कि हमारी बहनों को चेहरे पर लगाने की कुछ ज़रूरत ही ना पड़े।
0: जी बिल्कुल। और अंदर से निखार पाने के तो देखिए हमें अपने खान पान पर विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। खासकर अगर मीठे की बात करें ना, तो मीठा तो वैसे भी हमारी त्वचा को जो है वो

0: फर्क नहीं पड़ता है, उतना हमारे खाने से पड़ता है। अगर आप अपना खाना पीना ठीक रखेंगी तो हो सकता है कल्पना के हमारी बहनों को चेहरे पर लगाने की कुछ ज़रूरत ही ना पड़े।
1: जी बिल्कुल। और अंदर से निखार पाने के लिए तो देखिए हमें अपने खान पान पर विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: खासकर अगर मीठे की बात करें ना, तो मीठा तो वैसे भी हमारी त्वचा को जो है वो एक तरह से बहुत नुकसान पहुंचाता
0: जी
1: है,
0: हाँ
1: इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि मीठा हम कम से कम खाएं। एक तो हम शुगर से जो है बचे रहेंगे, दूसरे हमारी त्वचा के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होगा। इससे हमारी त्वचा जो है जवां बनी रहती है, चेहरे पर झुर्रियाँ कम पड़ती है और हमारा जो शुगर लेवल है वो भी सामान्य रहता है।
0: यानी कि आपने त्वचा के जवान रखने के साथ साथ अपना जो शारीरिक अपना जो स्वास्थ्य है उसकी बात भी
1: जी
0: इसके साथ ही
1: बिल्कुल,
0: कर डाली
1: जी
0: कि
1: बिल्कुल,
0: हमारी बहनें जो है अच्छी तो दिखे ही दिखे पर उनका जो स्वास्थ्य है वो भी उनका
1: सही
0: बिल्कुल सही
1: रहे।
0: बना रहे।
1: जी बिल्कुल,
0: तो देखिए बहनों, बहुत भारी जो मेकअप है उससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसमें मिले जो रासायनिक तत्व होते हैं ना, हमारी त्वचा को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। और किसी की त्वचा तो इतनी डेलिकेट होती है ना बहनों, आपने आप में से भी किसी की होगी कि थोड़ा सा कुछ लगाने से जो है हमारे चेहरे का मतलब सब कुछ ही बदल जाता है।
1: जी एक तरह से एलर्जी भी हो जाती है
0: जी
1: कई बार
0: बिल्कुल
1: सुषमा। देखिए जब
0: बिल्कुल
1: हम ये इस तरह का जो मेकअप करते हैं, बहुत हैवी मेकअप, और खासकर आजकल गर्मी के मौसम में करते हैं, तो उससे चेहरे को नुकसान ही
0: जी
1: पहुंचता है।
0: बिल्कुल
1: इसलिए कोशिश करें प्राकृतिक चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा जाएं और जो ये रासायनिक केमिकल वाले पदार्थ हैं इनका यूज़ कम करें। और बहनों ध्यान रखें कि हमें अपने गंदे हाथों से जो है बार बार अपने चेहरे को नहीं छूना है, क्योंकि गंदे हाथों से हमारे चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल हो सकते हैं,
0: जी
1: क्योंकि उसमें कई तरह के कीटाणु होते हैं जो सीधे हमारे चेहरे में लग जाते हैं और उससे पिंपल हो जाता है।
0: जी
1: और
0: हाँ
1: हो सके तो चेहरे पर आप बर्फ़ से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज भी कर सकती है। ये तो बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा नुस्खा है।
0: अच्छा भी है, और देखिए बहनों गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल। और इसके बाद आपको क्या करना है कि दही, शहद और बेसन का एक फेस पैक बना देना है। जब आप बर्फ़ के टुकड़े से मसाज करने के बाद इस पैक को अपने चेहरे पर लगा देना है, और इससे क्या होगा कि आपके चेहरे की टैनिंग ख़त्म हो जाएगी, दाग धब्बे फीके पड़ जाएंगे और आपके चेहरे पर एक अलग ही निखार आएगा। और सबसे ज़रूरी बात है बहनों कि आप चाहे जैसे भी है, सुंदर आप तब दिखते हैं आप जब सादगी से पेश आते हैं और आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती है
0: जी
1: और एक
0: बिल्कुल
1: हंसता हुआ चेहरा देखी सभी को आकर्षित करता है। इसलिए अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखिए और खुद को प्रकृति के करीब रखिए, तो आप निश्चित तौर पर खुद को सुंदर ही पाएगी।
0: जी हाँ।

0: तो देखिए बहनों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और आज हम चलते चलते में बात करेंगे अपने बहनों के लिए उपयोगी टिप्स की।
1: जी
0: क्योंकि देखिए कल्पना, हम हमेशा बात करते हैं सौंदर्य से संबंधित जानकारी की, रसोई घर से और पता नहीं ऐसी ऐसी कुछ बातों के बारे में, परंतु आज हम अपनी बहनों की ही बात कर लेते हैं।
1: जी बिल्कुल सुषमा, देखिए कहते हैं कि एक घर की असली पहचान ना उसकी दीवारों से नहीं बल्कि उसे संभालने वाली महिलाओं से होती है।
0: जी
1: एक महिला अपने प्यार, मेहनत और समझदारी से घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बनाती बल्कि खुशियों का आशियाना बना देती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम महिलाएं जो होती है अक्सर अपनी सेहत, अपने सपनों और अपनी ज़रूरतों को जो है पीछे छोड़ देती है।
1: जी
0: इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान और उपयोगी बातों की जो हमारी बहनों के जीवन को और बेहतर, आसान और खुशहाल बना सकती है।
1: जी बहनों, तो बात करते हैं ऐसे ही कुछ टिप्स की जिससे हमारी बहनें खुद को जिम्मेदार बनाने के साथ साथ खुद की खुशियों को भी जो है जिएंगी, महसूस करेगी।
0: जी
1: बहनों, दिन भर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कम से कम आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट अपने लिए, सिर्फ अपने लिए निकालने हैं जिसमें आप अपनी पसंद की चीज़ें करेंगी। थोड़ा सा आप टहलिए, किताबें पढ़ें, अपनी जो पसंद का कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हॉबी जो आप ना पूरी कर पाए हैं लेकिन उसकी शौक आपको थी, उसके लिए आप ज़रूर समय निकालें।
0: और ये तभी हो सकता है बहनों अगर आप हर खर्च का हिसाब लिखने की आदत डालेंगे। इससे जो बचत बढ़ती है और अनावश्यक जो चीज़ें होती है ना वो कम होती है और आपकी इन जो ये चीज़ों में टाइम लगता है ना, वेस्ट होता है, वो फिर आप अपने लिए टाइम निकाल सकती है।
1: जी, और इसी के साथ हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचा करके रखिए क्योंकि बहनों ये जो रकम आप बचा करके रखती है ये बुरे समय में आप ही के काम आती है और ज़रूरत के समय यही छोटी सी बचत एक बड़ा सहारा बन जाती है।
0: और इसी के साथ सिलाई, बुनाई, ब्यूटी केयर, टिफ़िन सर्विस, ऑनलाइन काम या कोई भी नया जो कौशल है वो आप सीख सकती है। क्योंकि देखिए बहनों, ये आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाता है बल्कि आपके आय का साधन भी बनता है।
1: जी बिल्कुल, और अपनी सेहत को सबसे ज़रूरी, सबसे प्राथमिकता दे, समय पर

भोजन किया करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित स्वास्थ्य जांच भी अपनी करवाती रहे, क्योंकि बहनों स्वस्थ महिला ही एक परिवार को अच्छी तरह से संभालने का जो है हुनर रखती है, उसको संभाल सकती है। इसके अलावा खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दें, हर दिन कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करें, यही जीवन जीने की सबसे महत्वपूर्ण कला है। जी बिल्कुल।

0: महिला सम्मेलन, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक आयोजन। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने वाला है हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा

0: की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, The NDA government has worked to further women-led

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
0: FM

अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माई डियर लिसनर्स. 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला. और वक्त हुआ है प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती का. तो प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूँ अनुराधा ठाकुर. और एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. तो लीजिए दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं फिल्म झूम बराबर झूम. इस फिल्म के गीत के साथ आवाज़ें हैं के सुखविंदर सिंह और महालक्ष्मी की. गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने. तो आप यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए FM शिमला के साथ.

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जानें।

जी हाँ दोस्तों, तो आप भी एकदम बराबर FM शिमला के साथ झूमते रहिए, क्योंकि हम एक से बढ़कर एक म्यूज़िकल नंबर आपके लिए लेकर आए हैं। बस आपने यूं ही सुनते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। फिलहाल प्रोग्राम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जीत फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में।

0: म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज

तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुना रहे हैं ओमकारा फिल्म से रेखा भारद्वाज की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का आनंद इस वक्त आप ले रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म आई लव न्यू ईयर से शान और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं मयूर पुरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

एक्शन रिप्लेस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत की बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने, संगीत से सजाया था प्रीतम ने।

लीजिए पेश है अजनबी फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। शब्द रचना है समीर की और संगीत रचना अनु मलिक की।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ म्यूज़िक मस्ती प्रोग्राम अब समाप्त होता है। आप यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए FM शिमला के साथ।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम सबरंग का। तो लीजिए, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं गुलाम अली की आवाज में इस बेहद खूबसूरत गजल के साथ।

0: जी अब आपको सुनवा रहे हैं दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू की आवाज़ों में सूरमा फिल्म का ये गीत।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ सबरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 2:15 होने को हैं। दोपहर हिंदी समाचारों के लिए आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार

0: ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना

0: आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार

0: पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी शिमला है।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत

0: करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी शिमला से लीजिए अब प्रस्तुत है स्पीति कार्यक्रम।

ता इलुन्यंपो के गाबला थरिंग की लेरिम निपा दे तेने स्वच्छ भारत अभियान के कोलेशे नाहीन तेने स्वच्छ भारत अभियान अक्टूबर की तरी नी नितोंग चुपशी लतन गलखप की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खाने लो तेने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी विके दुशा को जुकन दुसिया चिलसना महात्मा गांधी चांगदल मीना थो नाम त्यासिया स्वच्छ भारत अभियान की म्यूल सोवो दे तेने गलखप ग्याकल लतने सांगमो चुना छे तेने छेपसांग फितर तांग दो ना गेल न्यू दुजुना यिनसिया तेने ई अभियान की ग्यू ने लो तेने गेलसा चुकुन छे छेनमुन्य हारू तेने छासे गेमना छे खिमस चुकस छे तेने चांगदा के कोल लोन पना यिनसिया ngan la tene gel khap wi yul mang che ru tene khamba ge ru chaksa se yong ma sia tene wati pile tene mi ge chep sang rang odi ge peter dang du ra sia tene ine lu tene nasa mang bu phel na che ngem bu la ani pomo ge le peter chep sang dang du do na la kha wo rang odi ge yong a sia Swachh Bharat abhiyan ki gyune lo sarkar karol mang bu shi mi gi pile tene chaksa ge ko yin du sia wati pile tene gel khap wi yul mang che ru tene peter ru chep sang dang du do na de nyung du pu che Totanina Yapucha che, Nyambola Migi Misewa, Nusia Gurpudagasia. E Abian, Chasachipuj Gimna Mandala, Nyambola Tene, Kimsa Timna Givicola, Tonantiasia. Kimsa Timzona, then a Kimsa Camboche, Lanting and a Sosuchugusia. Chilesena Kimsa Cam Lantinello, then a Louis Chandrasia, then a Kimsa Cambola, Yandubara, Punar Chakaranzona de Gasia. Tene I abhiyan la tene kyongje de chipli indu basana tene chilesana gyakar gelkab jenma kyomo yokon yang Afrika zogse che Ghana rang ote gyasana bawa maa duksia tene wati pili tene I abhiyan la gochukan yindu siya. I abhiyan ki miyul sogo de tene sangdala yerge tangna hin siya. Pitaru chepsang tangdu dona gila nyungdu tangna che tene gelsa chukun gewi migi wi misela yerge tangna che. Gyakar ki tene SDG ki miyul thukpa de la tharakhel chungna che. Sangra che nasa ge kor lamna che tene mimang ge wi tene phila tene chaksa gemna che tene kimsa ge kor lamna yinsia I abyan jagani ru le ochosia gelsa chukun che je tene gelsa chemunya le ochosia gelsa chukun du zoin le tene SBM gramin sia tene gelsa che ru zoin le SBM sheheri sia sia tene SBM gramin ki tene tana pona ge suta pasne tene jal shakti mantralay ge tasya tene SBM shahari ki tana pona ge suta pasne tene ila awasan evum shahari karya mantralay ge tasya tene ikinyam bola tene yang gramin vikas mantralay che rajya sarkar ki gyunelo tene chaksa gemna ki lewa ge che tene ikinyam delwa yokon lewa ge khombo ge pekasya tene uttar purvi rajya ge ru tene kendra sarkar ki khanelo गेचा गुपचु छे तने राज्य सरकार के खाने लो गेचा चु की तने डोसों तंग आसिया जन्मा राज्य गेरु तने केंद्र सरकार के खाने लो गेचा दुंजु तेंगा छे तने राज्य सरकार के खाने लो गेचा जुसांगा वी डोसों तंग आसिया तने ई गेसा चुकुन गेरु तने यांग रंग छंगस गेवन योने तने खोंबो गेले तने तोंग चुंगी के तने रोकलम बा थप कासिया न्यामबोले ई नांग दु तने चुसांगना की फिले सुविधा गे बा थप कासिया तने यांग ई तने गेसा चुकुन की यांग मी मेपो गे छे मिक्योमो गी फिले इंदुसिया संगड वा गी ठोटेन कि न्यबो देलो सुक्षे मोजो पासिया तने वा गे तने ओजे गी खोरयुक ल सांगम परसे मिना मते खाछम यो वासी यांग वा गे ओजे गी खोरयुक ल सांगम परसोन वा गी चिसो के नांदो ना सारा ओदे गी न्यो यो वासिया इने ल न्युंगदी गरि इने तासा त मि मांबो यो कोन सो ल तने डेंगू र मलेरिया तो पन्ना स मांबो यो आमि दबा तने ओते गे व न्यो यो वासिया तने इबि फिर तने गेल खप तो खोर तो योंगन तने मि गेला तने गेल खप सांग म छि छि तने डेमो थों वासिया तने स्वच्छ भारत अभियान दे तन सरकार चुपो की लेंगे मंदल नियम बोला चिसो के नाम दुद्याकन मित्तोले तन लेंगे शुक्षे मुझे किंदुसिया वागे विले वे इंदुसिया की उजिरे खंबा छे स्कूल छे

0: स्पीति कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा था। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 387.6 मीटर FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12 सालों में उस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है।
2: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25

0: साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये 12 वर्ष जहाँ हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
1: नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जनविश्वास को मजबूत किया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजन न केवल लोगों को मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुलदीप सिंह आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की सिंहुता पंचायत में छिंज मेले के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की ज़रूरत है और खेलों के माध्यम से युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने इस अवसर पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की कुश्ती प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत खरगट निवासी नवीश कुमार को स्वर्ण पदक जीतने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व विधायक विनोद कुमार ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे समाप्त करने के अभियान पर चल रही है। विनोद कुमार ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक 2000 से अधिक शैक्षणिक व अन्य जनहित संस्थाओं को बंद कर प्रदेश के विकास की रफ्तार को रोक दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए छात्र संख्या का बहाना बनाकर स्कूलों को बंद कर रही है, जो सरासर गलत है। भाजपा नेता ने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थाओं को बंद कर प्रदेश का भविष्य नहीं बना सकती। उन्होंने स्कूल बंद करने के निर्णय को जन विरोधी करार दिया और कहा कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस लें। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 13 व 14 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, जेबीटी और टीजीटी संस्कृत विषयों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें धर्मशाला पहुँच गई हैं। मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि धर्मशाला के मैदान पर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। बीती रात राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज आंधी और तूफान के साथ वर्षा हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज कुल्लू, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों में ओलावृष्टि, वर्षा, आसमानी बिजली, कड़कने और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा।
2: 12 जून तक लगभग प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 13 और 14 जून को भी संभावना है कि जो स्पेशली जो मध्यवर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश का दौर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जारी रहेगा। हालांकि
1: इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है फाइबर अर्थव्यवस्था, भारत का अगला वैश्विक अवसर। वाचक हैं राकेश शर्मा।
1: फाइबर के साथ भारत का 5000 वर्ष पुराना सभ्यतागत संबंध है, जो हमारे गांवों, परंपराओं और सामूहिक पहचान में गहराई से गुंथा है। बुनी हुई हवा कहलाने वाली मोहन जोदड़ो की प्रसिद्ध मलमल से लेकर समस्त महाद्वीपों तक फैली भारतीय कारीगरी तक फाइबर हमेशा से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा रहा है। आज जब दुनिया वैश्विक स्थिरता की क्रांति की कगार पर खड़ी है, तब यही प्राचीन ज्ञान हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है। दशकों तक केले के पेड़ के तने को बेकार अपशिष्ट मानकर फेंक दिया जाता था, आज वही बायोमास प्रीमियम फाइबर बनकर निर्यात बाजारों की मांग पूरी कर रहा है, ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त बना रहा है और इस कृषि अवशेष को राष्ट्रीय आय में बदल रहा है। अपशिष्ट

0: समृद्धि तक, स्थानीय प्रचुरता से वैश्विक अवसर तक, यही भारत की न्यू एज फाइबर मुहिम का सार है, जो हरित सामग्रियों और भविष्य के लिए तैयार वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है। न्यू एज फाइबर ऐसे टिकाऊ और पौधों आधारित पदार्थ है जो भारत के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ते हैं। बांस, भांग, केला, PLF, फ्लेक्स, रेमी सीसल, मिल्कवीड और कपोक जैसे फाइबर सदियों से मौजूद रहे हैं, लेकिन अब इन्हें वस्त्र उद्योग, रक्षा, बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स और प्रीमियम उत्पादों में उच्च मूल्य उपयोगों के लिए नए सिरे से खोजा जा रहा है। ये हरित भविष्य के लिए नए भारत के प्राकृतिक फाइबर भंडार का विस्तार कर रहे हैं। बढ़ती आयें, वैश्विक स्थिरता संबंधी अनिवार्यताएँ और ट्रेसबल सोर्सिंग की आवश्यकताएँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तरह बदल रही हैं और एक नई फाइबर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। उपभोक्ता अब अपने पहले कपड़े के आराम, पसीना सोखने की क्षमता या ब्रीदेबिलिटी और टिकाऊपन चाहते हैं। यही महत्वपूर्ण बदलाव भारत में फाइबर की खपत को आज के 15 MMT से बढ़ाकर 2030 तक 23 MMT तक ले जाने वाला है। दुनिया अब तेजी से वही तलाश रही है जिसे भारत प्रदान कर सकता है, नैतिक, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाले प्राकृतिक फाइबर जो सदियों के अनुभव पर आधारित हैं। इस विजन को एक स्पष्ट संस्थागत एवं नीतिगत ढांचे का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2026 से 31 तक के लिए 5,664 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाले मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत न्यू एज फाइबर्स के लिए 300 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है। इस प्रयास को और सशक्त बनाते हुए केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित राष्ट्रीय फाइबर मिशन एक व्यापक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है जो 4 प्रमुख स्तंभों कृषि, सूत्र, खेती और कच्चे माल के विकास के लिए, इन्फिनिटी अनुसंधान और नवाचार के लिए, ग्राम सेतु अवसंरचना और उद्यम सृजन के लिए तथा GMPS ब्रांडिंग और बाजार विकास के लिए आधारित है। इस नीतिगत ढांचे की शक्ति दशकों से जारी वैज्ञानिक अनुसंधान में निहित है, जिसके ठोस परिणाम पहले से ही सामने आ चुके हैं। इस सेमिनार ने मानकों, प्रसंस्करण, अवरचना और संस्थागत वित्तपोषण में मौजूद खामियों को भी स्पष्ट रूप से पहचान की, जो एक ऐसे मिशन को दर्शाता है जो केवल नीति नहीं बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन पर केंद्रित है। इसके लाभ पूरी मूल्य श्रृंखला में फैलते हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर आराम और कार्यक्षमता मिलती है, निर्माताओं को प्रीमियम और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने का अवसर मिलता है और किसानों को विविध प्रकार की मांग और अधिक मजबूत आय प्राप्त होती है। इसके साथ ही ये सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जा रही थी। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

0: नजरें मिली तो धड़कनें भी कुछ यूं थम गई। नजरें मिली तो धड़कनें भी कुछ यूं थम गई। वो पुराने नगमे आज भी यादों में जिंदा है यहीं। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं एफएम शिमला पर, और वक्त हुआ है प्रोग्राम फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स का। जी हाँ, इन पुराने नगमों के साथ आपको भी एक सफर पर ले चलते हैं। तो सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको बॉबी फिल्म से लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके,

गुजरते हुए लम्हों की एक मीठी सी याद और पुराने सुनहरे दौर की वो खूबसूरत आवाज़ें जो दिल को छू जाती है। और दोस्तों, वादा है हमारा कि कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन ये आवाज़ें आपको आपके बीते हुए कल में ज़रूर ले जाएगी। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हस्ती जख्म फिल्म से मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में। गीत की बोल लिखी हैं कैफी आज़मी ने।

तो दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत की बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ₹103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 3:30 हुए हैं, वक्त हुआ है युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

आज़ादी तो हमें मिल गई थी पर हम आज़ाद नहीं हो पाए। हाँ, आज़ादी तो हमें मिल गई थी पर हम आज़ाद नहीं हो पाए। हो भी तो कैसे हो भला, हम अपनी आदतों को कहाँ छोड़ पाए। सभी सुनने वालों को पूनम ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। 103.7 MHz पर आकाशवाणी शिमला के साथ आप सुन रहे हैं युववाणी, युवाओं के लिए की जाने वाली कुछ खास बातें। आज हम दो लोगों से बात करेंगे, एक वो जो उम्र से युवा है और एक वो जो दिलो जान से युवा है। हमारा आज का विषय केवल एक आयु वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो जीवन में कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है।

है और असल मायने में जीवन को जीना चाहता है। अब किताबों और रेडियो से ज़रा कम ही रिश्ता है। अब किताबों और रेडियो से ज़रा कम ही रिश्ता है। मोबाइल फ़ोन के आगे अब टेलीविज़न भी कहाँ टिकता है। अब तो जो दिखता है वही बिकता है, और आजकल तो हर पल, आम हो या खास, मोबाइल स्क्रीन पर ही बिकता है। जी हाँ, मोबाइल स्क्रीन पर ही बिकता है।

टॉक्सिन्स कहते हैं तो हमें ज़रूरत रहती है शरीर को डिटॉक्स करने की। अब ये टॉक्सिक चीज़ें सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से भी हमारे अंदर चले जाती है। आजकल के समय में हमारा डिजिटल इनटेक इतना बढ़ चुका है कि हमें कई बार समझ ही नहीं आता कि खुद को डिटॉक्स कैसे करें। मोबाइल तथा अन्य उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अब ज़रा सोचिए और बताइए, क्या आप कुछ घंटों के लिए इस डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं? जब तक आप कल्पना करते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक मधुर गीत।

हिमाचल प्रदेश राज्य में निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व यानी 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी सभी हिमाचल वासियों के लिए उपलब्ध रहेगा। निवासी sc.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे। प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, परिवार की उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंधान कार्यों हेतु किया जाता है।

श्रोता हूँ, शुरुआत में हमने आपसे बिना मोबाइल के जीवन की कल्पना करने के लिए कहा था। आप सोच रहे होंगे कि हमारा आज का कार्यक्रम भी आप मोबाइल फ़ोन से ही तो सुन रहे हैं, और आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो बातें हैं बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लगना लाजमी सी बात है, क्योंकि हमारी अधिकतर गतिविधियाँ डिजिटल डिवाइसेस से जुड़ी हुई हैं। सुबह जब आंख भी ढंग से नहीं खुलती, फिर भी सबसे पहले हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को ढूंढते हैं। आसपास की खबरें सुननी हो या पूजा आराधना के लिए भजन, हमारे लिए फ़ोन में ही सारी चीज़ें मिल जाती है। पढ़ाई करनी हो, वर्क फ्रॉम होम हो या फिर ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन, सभी स्क्रीन के साथ ही चलते हैं। हमारा काम तो आसान हुआ है और समय भी कम लगता है, लेकिन इस स्क्रीन के कई नुकसान भी तो है। ये सब इंसान का समय बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय बचाकर भी हम

हो रही है। और ये लगना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लगना लाजमी सी बात है, क्योंकि हमारी अधिकतर गतिविधियाँ डिजिटल डिवाइसेस से जुड़ी हुई हैं। सुबह जब आंख भी ढंग से नहीं खुलती, फिर भी सबसे पहले हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को ढूंढते हैं। आसपास की खबरें सुननी हो या पूजा आराधना के लिए भजन, हमारे लिए फ़ोन में ही सारी चीज़ें मिल जाती है। पढ़ाई करनी हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन, सभी स्क्रीन के साथ ही चलते हैं। हमारा काम तो आसान हुआ है और समय भी कम लगता है, लेकिन इस स्क्रीन के कई नुकसान भी तो है। ये सब इंसान का समय बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय बचाकर भी हम अपना समय इसी पर वेस्ट करते हैं।

श्रोताओं, बहुत अधिक समय तक मोबाइल स्क्रीन पर देखने से बहुत सी परेशानियां हमें देखने को मिलती है और आप सभी इनसे बेखूबी परिचित होंगे। जैसे आंखों में रूखापन, नज़र ख़राब होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, रिटेंशन पावर कम होना और अगर हम बहुत देर तक लैपटॉप या स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो बैक पेन जैसी परेशानियां हमें रोज़मर्रा के जीवन में देखने को मिलती है। अब इनसे बचने का तरीका क्या है? तरीका है बैलेंस, क्योंकि देखिए हमारे काम भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ हमारी सेहत तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दिन का एक समय फिक्स करना चाहिए जब हम मोबाइल और अन्य डिवाइसेस से दूर रहे, हो सके तो हफ्ते में एक दिन बिना फ़ोन के गुजारिए। थोड़ी अजीब पर अब आजमाई गई तरकीब है कि कुछ दिनों के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट सर्विसेज को बंद होने दें। यकीन मानिए दोस्तों, हमारे बिना कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, बेशर्ते आपका ऑफिस या स्कूल कॉलेज का जो काम है वो ऑनलाइन ना हो, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन होता है फिर तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिना टेक्नोलॉजी के भी जीवन सुकून भरा होता है और हमें इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए।

दोस्तों, किसी चीज़ पर डिपेंडेंस बढ़ा देने से हमारे अंदर की सारी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। डिजिटल डिटॉक्स उस क्रिएटिविटी को बरकरार रखने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम शॉर्टकट्स ढूंढना चाहते हैं ताकि अपना दिमाग ना लगाना पड़े, पर ये चीज़ हमारी क्रिएटिविटी और थिंकिंग प्रोसेस को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी हमें पता भी नहीं चलेगा। खुद से कहिए कि आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। अपने लिए जो सही है वो आदत आप अपना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं पूनम आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सही राह पर उसे लाने की कोशिश करेंगे, और अगर सही राह पर है तो उसे सस्टेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। सुनते रहिए 103.7 MHz AIR शिमला के साथ आकाश युववाणी कार्यक्रम। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हमको मोहब्बत करेगा।
0: FM

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। शाम के ठीक 4:01 हो गए हैं और ये वक्त हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। और दोस्तों, संगीत के साथ साथ क्या कुछ खास चल रहा है आपके आसपास, ये भी आपको सब बताएंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन आपको बस इतना सा करना है कि इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए FM शिमला के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं, बात करते हैं मौसम से। हिमाचल में प्री मॉनसून की बुछारें शुरू हो गई है। राज्य में 25 जून तक मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना है। शिमला, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, मंडी, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर और चंबा जिलों में कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। और अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में दिन भर मौसम

साफ रहा और रात 8 बजे के बाद जो है वो गरज चमक और अंधड़ के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया जो देर रात तक जारी रहा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत की बोल लिखी हैं कुमार ने, संगीत दिया है शरीफ तोशी ने।

तो दोस्तों प्रोग्राम में नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि आजकल जो है वो फेस्टिव वाइब्स चल रही हैं। जी हाँ, शिमला में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 2026 चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर के नाम रही। भुल्लर ने पंजाबी गानों पर जमकर धमाल मचाया। बारिश भी इस शाम का जो है वो रंग फीका नहीं कर सकी। लोग बारिश में भीगते रहे और पंजाबी गानों पर नाचते और भंगड़ा डालते रहे।

नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल के तहत शिमला रंग महोत्सव के तीसरे दिन गेटी थिएटर में बिश्तीलाणी नाटक का मंचन हुआ। इस दौरान रिश्तों, जमीन और अहंकार पर तीखा व्यंग्य देखकर दर्शकों ने खूब ठहाके लगाए। तो लीजिए, आप एंजॉय कीजिए इस प्रोग्राम का नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक बादशाह फिल्म से। नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान की आवाज़ों में गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंताशिर ने, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

तो प्रोग्राम में नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में माइक्रोस्कोपिक और साइटोस्पिन मशीन लगाने की मंजूरी मिल गई है। इन मशीनों का इस्तेमाल कैंसर संक्रमण और सूजन से जुड़ी टेस्टों के लिए होता है। इसके साथ पार्किंग की सुविधा भी जो है वो जल्द मरीजों को मिल जाएगी।

और राजधानी के गेटी थिएटर में 13 जून से फॉर्सफन बुक्स पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 प्रकाशकों सहित स्थानीय लेखकों की किताबों का संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा और ये मेला 19 जून तक चलेगा। तो लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का अगला ट्रैक चिए फिल्म से अरमान मलिक की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि विर्क ने और संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। सबसे पहले सुनिए सिरमौरी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ ही FM 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है।

तो सभी श्रीमरी कार्यक्रम सुनना का आकाशवाणी केंद्र शिमला का स्वागत हो सतला हो तू साथी तुम्हारा अपना प्यारा दोस्त अनिल कुमार और अपने श्रीमरी कार्यक्रम सुनना साथी इतला में बातचीत करते प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जिंदे के तहत जो बेरोजगार युवा साथी सो देशों का नौजवान युवा सो तीन के कौशल प्रशिक्षण करने का मौका से भरता लगा और तीन अपुखे और ओकी के रोजगार के अवसर से अपने आप ही तय कर लुए और रोजगार सृजन का काम भी तीन कर लुआ और नए नए रोजगार के अवसर से लोगों को प्रदान भी होने लगे। साथ ही बातचीत करते अपने

कंसर्न हो साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के बारे दे और साथ ही बातचीत करते जनगणना 2024 के बारे दे जे इंडिया का से देशों का क्या फायदा हुआ और कैसे दें नीति निर्माण और जन कल्याण योजनाएं से जनसंख्या देखे से बढ़ाई जा सको। तो ऐसे जो बातचीत की शुरुआत में बहुत बढ़िया लोगों की तो साथी करते हैं।

बहुत ही बढ़िया लोकगीत सुदर्शन नेगी जी की आवाज़ था और बातचीत करते अपने कार्यक्रम सुनवा साथियों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल से देशों की सरकार के द्वारा करित है और अब 15 जुलाई 2015 दे इंदे के से शुरुआत से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के शुरुआत स्किल इंडिया मिशन के तहत बेरोजगार युवा के रोजगार प्रदान करने के तहत इंदे के शुरुआत से करित है। बेरोजगार युवाओं के मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का काम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत से अंदलागा ऐसा जो रोजगार सृजन रोजगार के जो नए नए अवसर से हर प्रकार के क्षेत्र दे रुचि अनुसार से बेरोजगार युवाओं के प्रदान अंदलागा योजनाओं के तहत युवाओं को से किसी भी क्षेत्र दा जिंद तीन के रुचि हो सो तथे बिना किसी शुल्क के से व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से प्रदान होता लगा और रोजगार के अवसर युवाओं के प्रशिक्षण के दौरान से बैठते लगे और नौकरी के ऐसे जो अवसर से बेरोजगार युवाओं के दिन प्रतिदिन बढ़ते लगे जत भी प्रशिक्षण लाती हूँ संस्थान के द्वारा से एक प्रमाण पत्र जारी करा जाला जो प्रमाण पत्र के द्वारा से किसी भी क्षेत्र दा हमें से रोजगार प्राप्त कर सको और कौशल प्रशिक्षण तीनों क्षेत्र दा दिया जाला जिनदे युवाओं के रुचि सो और जैसे किए ना किए फायदा देखीला लाभ देखीला तथे ऐसे जो कौशल प्रशिक्षण करा जाला और सरकारी सहायता से प्रमाण पत्र प्रदान करियो से किसी भी बड़े उद्योग दे और मल्टी इंटरनेशनल जुंजी भी बड़ी बड़ी कंपनियों सो तथे भी रोजगार प्रदान होला ऐसे जो जब आसानी से हुनर सीखे जाइला प्रशिक्षण ला कौशल प्रशिक्षित होला तो रोजगार के अवसर से कथी ना कथी आम खे बैठे जाले और रोजगार सृजन भी प्रदान होला युवा आसानी से अपना रोजगार अपने आप भी तैयार कर सको और रोजगार के अवसर ओकी भी दे सको चाहे पर्यटन सो रिटेल है मनोरंजन है मैकेनिक क्षेत्र सो ऑटोमोबाइल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है तकनीकी है उद्योग है ड्रोन है इलेक्ट्रिसिटी है प्लास्टिक है तकनीक है डायरी उत्पाद है हर प्रकार के क्षेत्र से हमें जो बेरोजगार युवाओं का कौशल प्रशिक्षण से होने लगा और कई प्रकार के उत्पाद प्रदान होने लगे और कई प्रकार की उपलब्धियाँ भी हासिलों दिलागी और कौशल प्रशिक्षण करियो से रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा जो अवसर से बेरोजगार युवाओं के बढ़ते लगे तकनीकी ज्ञान व्यवहारिक प्रशिक्षण और युवाओं के आत्मसम्मान बढ़ता लगा बैंकिंग वित्तीय दूर संचार निर्माण कपड़ा और कई प्रकार के क्षेत्र जैसे ऐसे जो लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ते लगे जैसे भी जियो अवसर दा कौशल प्रशिक्षण कोशिका कोई हुआ जियो क्षेत्र दा भी कुछ की रुचि सती क्षेत्र जैसे ऐसे कई प्रकार के रोजगार मेले भी लगले और जिला और राज्य स्तर जैसे एक बेर मेले सालों दर भी नहीं जैसे लागले और तकनीकी शिक्षा प्राप्त जिन्हें कंप्यूटर दे करे था या साक्षरता करे था कौशल प्रशिक्षण से सरकारी कौशल प्रशिक्षण के साथ ऐसे ऐसा जो रोजगार प्रदान होने लगे छात्राओं के द्वारा किसी भी कारण से जिन्हें भी विद्यालय छोड़े थे तीन खे ऐसा जो रोजगार के अवसर से प्राप्त होने लगे बेहतरीन मौका से बेरोजगार युवाओं के बढ़ता लगा और उचित शिक्षा और बेहतरीन अवसर से बेरोजगार युवाओं के हर क्षेत्र दे बढ़ते लगे चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो रिटेल हो सो मनोरंजन है मैकेनिक क्षेत्र हो तकनीकी कौशल और ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और प्लास्टिक और तकनीकी उद्योग हो सो हर प्रकार के उद्योग दे हर प्रकार के क्षेत्र दे कौशल प्रशिक्षण प्रदान होता लगा कमजोर वर्गों का उत्थान होता लगा और ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन जीवन स्तर का भी कथी ना कथी सुधार होता लगा गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी देशों की जो अर्थव्यवस्था से भी कहती ना कहती मजबूत होने लगे क्योंकि बेरोजगार युवाओं के ऐसे जो अलग अलग क्षेत्र दे अपने कौशल प्रशिक्षण के हिसाब से रोजगार बढ़ता लगा ITS हो स्वास्थ्य क्षेत्र है बिजली है उद्योग है तकनीकी क्षेत्र हर प्रकार के क्षेत्रता से योगदान बेरोजगार युवाओं का होता लगा और कौशल

प्रशिक्षण हर क्षेत्र दा बेरोजगार युवाओं का जब होए जाओ तो एक प्रमाण पत्र भी दिया जाला जिंदा से सालों के या 21 सालों के 2 सालों के और छोई बिने के प्रमाण पत्र से प्रशिक्षण कौशल के तहत प्रदान करे जाले। ऐसा जो कौशल प्रशिक्षण से हर प्रकार के युवाओं के रुचि अनुसार जो भी बेरोजगार युवा सो तीन के हर क्षेत्र का ऐसा जो प्रमाण पत्र से प्रदान करा जाला और कौशल प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर बढ़े और रोजगार सृजन भी हर क्षेत्र का ओंदा लगा। आत्मनिर्भरता बढ़ते लगे और आर्थिक स्थिति भी कहती ना कहती बेरोजगार युवाओं की मजबूत होते लगे। ऐसा जो प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण जो योजना सो से बेरोजगार युवाओं के वरदान साबित होते लगे। ऐसी बातचीत तो अपने कार्यक्रम सुनना साथी जारी होते सुना दे बहुत बढ़िया लोकगीत।

बहुत ही बढ़िया लोकगीत राजेश मलिक जी की आवाज़ दा बातचीत करते अपने कार्यक्रम सुनना साथी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। अपने आसपास के जल जंगल जमीन और पेड़ पौधे वनस्पति जल जंगल जमीन और आसपास का पूरा जो वातावरण सो से पर्यावरण दा आए जाओ और हमारे ज जिंदगी सी अपना जीवन टिकांदा सो हमारे जीव जंतु प्राणी मात्र का जिंदगी जीवन टिकांदा सो से हमारे आसपास का वातावरण और पर्यावरण सो। पर्यावरण जे सुरक्षित रहला शुद्ध रहला तो बेहतर सांस प्रणाली रहले और सांस संबंधित जो बीमारियाँ सो से भी कम मोली और फेफड़े स्वस्थ रहले और फेफड़े और सांसों से संबंधित जुंजे भी संक्रामक बीमारियों सो से कैथी ना कैथी तीन देवी को में देखना के बैठले। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ठीक रहले शरीर सभी प्रकार की संक्रामक जो बीमारियाँ सो तीन देश लड़ने के जो क्षमता सो से शुद्ध वातावरण शुद्ध पर्यावरण दे बढ़िया रहले। पानी जे शुद्ध रो लो तो जल जनित जुंजी भी बीमारियाँ सो चाहे डायरिया है पीलिया है हैजा है कई प्रकार की जो बीमारियाँ सो ते दे भी कथी ना कथी रोकथाम लग जाले। शुद्ध एवं स्वस्थ वातावरण से स्वस्थ जीवन के बहुत ही जरूरी है सो जे तनाव मुक्त जीवन मानसिक संतुलन और शांति वाला जीवन चाहिए तो पर्यावरण भी शुद्ध हुआ चाहिए और प्रदूषण मुक्त हुआ चाहिए। जलवायु नियंत्रण स्वच्छ वातावरण और आसपास का जो पर्यावरण है वनस्पति तीन तभी संतुलन बनाता रहला और निरोगी जीवन हम प्राप्त होला जो हमारे आसपास का वातावरण जल जंगल जमीन पेड़ पौधे वनस्पति पानी मिट्टी सब जो शुद्ध रो लो बढ़िया रो लो तो हमारा जीवन भी से बढ़िया रहला। जो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध नहीं रहला तो कई प्रकार की बीमारियों ली सांसों से संबंधित बीमारियों ली फेफड़ों की बीमारियों ली हृदयघात वाली बीमारियों ली और संक्रामक बीमारी के कारण से कहीं ना कहीं इंसानों के अपना जीवन बचाना मुश्किल हो जाला। ये जी बहुत ज़्यादा जरूरी है सो जब हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध रहला स्वच्छ रहला तब जाके ही हमें अपना जीवन से बढ़िया तरीके से जी सको। जल जनित बीमारियाँ तभी तो उत्पन्न हो जब हमारा जो पानी के स्रोत से गंदे हो जाओ और कई प्रकार के तिंदे से कीटाणु और कई प्रकार के जो रासायनिक खादे तिंदी मिले जाओ तबे तो पीलिया बोलो हैजा बोलो टाइफाइड बोलो और हेपेटाइटिस बोलो और कई प्रकार की संक्रामक जानलेवा बीमारी से शरीर दे सको। प्रदूषण से रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता बीमारी से लड़ने की जो क्षमता से कहीं ना कहीं कमजोर हो जाओ त्वचा रोग चिंता और कई प्रकार के जो मानसिक असंतुलन वाली बीमारी है से बढ़ जाओ और कथी ना कथी जो प्रजनन क्षमता सोचे भी जीव जंतुओं की प्राणी मात्र की और इंसानों की तिंदगे से भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाओ। आखे थे जलन देखने की क्षमता सुनने की क्षमता चलने फिरने की क्षमता से भी कथी ना कथी कम हो जाओ और कई प्रकार की बीमारियाँ से शरीर भी प्रवेश हो जाओ। पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम किसी भी कीमत से बचाना बोलो इंसानों की गतिविधियों के द्वारा ही अपने स्वार्थ पूर्ति करना है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकृति का से शोषण होने लगा और जब हमें प्रकृति का शोषण कर भी तो कितनी ना कितनी खतरा तो आम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैसें से पृथ्वी का तापमान तीन दिल बढ़ता लगा जब धुआं और जहरीले गैसें से धरती सी आकाश की तरफ जाओ तो देखो कथी ना कथी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ला

बड़े बड़े ग्लेशियर भी पिघलने लगले और जो हमारे ओजोन परत सो जो जीवन की सुरक्षा दिन दिले ओंदे लागे तिंदे भी कथी ना कथी छेद होले और सीधी सूर्य से निकलने वाली जो परा बैंगनी किरणें सो जहरीली किरणें सो से इंसानों के चीज़ों पर पड़ ली तो इंसान कोई प्रकार की बीमारी का खतरा मोल लो ले और इंसानी जीवन से संकटता पड़ जाला। आसपास का वातावरण वनस्पति जल जंगल जमीन पेड़ पौधे खेत खलियान हवा पानी सब हम शुद्ध और स्वच्छ थोड़ो पड़ लो तब जाके ही हमारा जीवन भी स्वच्छ रहला। चाहे हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता सो उपजाऊ क्षमता सो पेड़ पौधों की गुणवत्ता वनस्पति की गुणवत्ता सो खान पान की गुणवत्ता सो से तब ही बढ़िया दे रही जब हम ऐसे पर्यावरण से कम नुकसान पहुँचाऊँ भी और तब ही जो प्राकृतिक आपदा सो चाहे सुनामी है भूकंप है बाढ़ है सूखा है इन सभी से भी हमें तभी अपना बचाव कर सको। साथ ही जनगणना के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर भी जनगणना 2026 देशों के विकास की नई दिशा तय करने का एक अहम भूमिका सो और ऐसे जो देशों के विकास की दिशा तय करने का काम से जनगणना 2026 के तहत होने लगा। साधनों के कतड़ा उपयोग करना साधनों की कतड़ी आवश्यकता सो डिजिटल और तकनीकी संसाधनों के द्वारा से तेज और स्टिक जानकारी हासिल करे जाले और बुढ़िया से बुढ़िया जो लेखा जोखा डाटा से घर घर जाए तैयार करा जाला। इन तकनीकी संसाधनों के और साधनों का भरपूर उपयोग करा जाला। जातिगत सामाजिक जनगणना भी अले और ऐसे जो 90 सालों के बाद से देशों के पूरे जातिगत तस्वीरें से पूरे देशों की जनता के सामने आले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार संसाधनों की कतड़े जरूरतों से कैसे दे जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सको तेजी जनसंख्या का जीवी कथी न कथी निर्भर सो। साथ ही लोग समाचार भी सुना दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है मोदी जी के नेतृत्व दे केंद्र सरकार है सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य दे विश्वास के विकास के 12 वर्ष गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रम के हिस्सा लेने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी 12 और 13 जून के से शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर सो। नड्डा जी ये बोलो जो मोदी जी के 4,399 देशों तक प्रधानमंत्री के रूप का जितने कार्य करे से एक कीर्तिमान स्थापित करे ऐसा जो कीर्तिमान से स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाला तीन बोलो जे ऐसा 12 सालों के सरकारी कार्यकाल न थी बल्कि विकसित भारत के मजबूत आधारशिला थे तो मजबूत नींव थे तो और परिवर्तन करने वाला ऐसा जो वर्षों से बहुत ही देशों के फायदेमंद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ये बोलो जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से हिमाचल के हितों के मुद्दे दे उठाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी बोलो जे नीरज भारती के आरोप से सरकार के भ्रष्टाचार उजागर होने लगे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जून 2026 के लिए से प्रवेश पत्र जारी करी हुए और 13 व 14 जून को आयोजित होने वाले प्रदेश भर के 24,000 से अधिक अभ्यर्थी से इन्हें शामिल होने लगे। ऐसे बातचीत तो जारी रहते सुना दे लोकगीत

ये था सिरमौरी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं महास्वी बोली का कार्यक्रम।

आकाशवाणी शिमला 4:50 हो गया। आज 1200 शुक्रवार और हर शुक्र इसी वक्त चालू तुम्हारा अपना पसंदीदा कार्यक्रम नाव सौ महास्वी कार्यक्रम। महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले बद्दे श्रोताओं के सब दुपोल है देविंदर शर्मा दीपोल जी धांधु हाथों जोड़े और ढाल। श्रोताओं हमें आज भी सब दुपोल है भगवान भी प्रार्थना करो है और उम्मीद भी ऐज छाड़ो कि जो श्रोताओं से सब ठीक होने चाहिए, तन साथ रे के माछ रे के प्राणी भी सही होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए। और आज जो कार्यक्रम और रूपरेखा हो तुमको ये तो पता ही हो, पर थोड़ी जे कुछ एक श्रोता हो सको जे नोए भी जुड़ रहे होले तेनो के हमें बोलना चाहो कि हमें तुम सभी श्रोताओं रा लोकगीते करे तो मनोरंजन खूब कराओ। यही साथ है एक ही विषय गाए महत्वपूर्ण विषय हो जरूरी विषय हो तई गाए बातचीत भी करो खबरसार कार्यक्रम रे मुख्य कड़ी रोई रोए। और इंदु अलावा भारत सरकार री धांधु हद सारी योजनाएं चलाई जाओ है तेनो योजना मुझे दू हमें एक योजना कार्यक्रम में शामिल करो है। तो कार्यक्रम रे जो शुरुआत हो अगर एक बढ़िया जे लोकगीत साथ सुने जाओ है तो कहीं ना जो हमारा कार्यक्रम हो से भी बढ़िया रो यो। और यहीं साथ जो श्रोता सुन दे लाग रहे होले से जुन जे भी कोसी काम कर दे लाग रहे होले तेनो भी आनंद आजला। तो शुरुआत बढ़िया जे एक लोकगीत करो हमारे करनी हो।

ताऊ तुए इजो लोक गीत सुनो तेरे थरो चो नीलिया ठंडे पानी रे कुए आवाज थी निशा बाला रे। आमो को पता यो जे आजकल मारे देशों दी जनगणना काम भी चल रहा हो। थोड़ी बातचीत इंदिरा बारे दिमारे कोन्यो जो जनगणना 2027 इंदिरे पोल के चरणों रा जो आयोजनों से मारे प्रदेशों दा यानी हिमाचल दा जो तिंदरे तिथियों से तिंदरे अनुसार 16 जून 2026 दू 15 जुलाई 2026 तई किया जा लगा। ऐ दू ठीक 15 दिसो पोले यानी कि 21 जूनो दू 15 जून 2026 तई अपनी जो गणनाओं से अपुई कौन नेरा विकल्प भी बद्दे हिमाचल वासी के उपलब्ध रोंदाओ। इन देखे मार्च sec.census.gov.in यानी sec.census.gov.in ऐसा पोर्टल हो ऐ का शेड्डे हो आपू अपनी जानकारी बोर सको है। जनगणना 2027 और जो बद्दा कामों से डिजिटल माध्यम में संपादित किया जाता हो जिंदेरे अंतर्गत प्रगणक यानी कि जो गणना करने आए हो तो यो पर्यवेक्षक से मोबाइल डिवाइस या निर्धारित एप्लीकेशनों रे माध्यम में सूचने बोर दियो। पोल के चरणों दी मकानों री जो स्थितियों से परिवारों के उपलब्ध सुविधे तो ही परिसंपत्ति दू संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जान दियो। जनगणना अधिनियम 1948 रे अंतर्गत जनगणने दी देई गोई बद्दी जानकारी गुप्त छाड़ी जान दियो। इंदेरा उपयोग के

केवल नीति निर्माण तोई अनुसंधान कामरी ताई किया जांदा। सुतो यदि जनगणना रे बारे दी थोड़ी जी बातचीत थी और एबे भी शेरी था हमें आग बढ़ो। सुतो जोबे गोरोरी मुंडेरी गाशे चिड़िया चौको जोबे बाल कनिदा लागा निबुरा पौधा मोयको जोबे छोतो गाशे उगी धोनिये करो दाओ दे खुशबू आजो तो समझो असली खुशहाली आज गुइयो और यो ही खुशहाली रा नाओ सो बागवानी। तो आज कार्यक्रम दी भी जो मारे बात करनी हो से बागवानी अपनायो केरे खुशहाल बन सको इंदेरे बारे दी करनी हो जेथी और याली तेथी खुशहाली एजी कहावत आज के वक्त दी और भी ज्यादा सटीक हो गई हो। भाग दौड़ प्रदूषण तोई तनाव बोरी जिंदगी दी बागवानी एक एरी दुआई हो जो बिना पैसे करो सुकून दे हो। फूलो तोई पौधे सिर्फ गौरवी शोभा नहीं बढ़ा दे मनोरी शांति तोई जेबोरी खुशहाली भी लाओ है। बागवानी मतलब पेड़ पौधे फलो फूलो सब्जी लानी अजो तेनोरी देखभाल करनी हो। एजे कामो खेचो दे भी हो सको अजो गौरवी बालकनी छापरो गाशे या दुई गमले देवी किए जा सको छोटी जागा बूढ़ा सुकून। सुतो बागवानी करो खुशहाली के री बढ़ सको थोड़ो जो इंगा से मारे जोपनो इंद्र अंतर्गत पोल का बिंदु है जाओ जो स्वस्थ री खुशहाली भी हो है। केरी कि पौधे दे सके ऑक्सीजन दे कार्बन डाइऑक्साइड सोखो तुलसी एलोवेरा स्नेक प्लांट गौरवी आवे साफ करो है। बिना केमिकल वालो धनियो पीपली टमाटरो नींबू गोरो दे उगाओ ए बजारो दू 10 गुना ज्यादा पौष्टिक तो यो स्वादिष्ट है। माटे दे हाथो पाने करो सेरोटोनिन हार्मोन भी बढ़ो जापान जो देश हो तेथे दे जो डॉक्टरों से गार्डन थेरेपी भी लिखो है। अपने हाथे उगाए होंदे धनिये पुदीने पीपली तो यो टमाटरो दो कोई केमिकल नहीं होंदु ए बाजारो री सब्जी दू ज्यादा स्वादिष्ट तो यो पौष्टिको है। माटे दा काम करने करो तनाव कमो डॉक्टर भी बोलो जे 30 मिनट बागवानी करनी योगोरे बराबर फायदेमंद हो। ऐसा बिंदु तो था स्वस्थ तहत खुशहाली के रिया सको यही दू अगला बिंदु से हो आर्थिक खुशहाली इंदे पोल का बिंदु जे पैसे री बचत हो। अगर रोज 400-500 रुपये री सब्जी भी गौरव दी उगावले तो महीने दे 1500 बचो है। आमदनी का साधन भी ओसो फूल गेंदा गुलाब मशरूम नर्सरी का काम करो 1000 रुपये माछो गौरव दे बोठ्यो कमाओ। हिमाचल दे सेव तो फूलोरी जो बागवानियों ही करो कोई परिवार लखपति भी बन गए। बिजली बिलो दी भी बचत आज गौरव रे चौविधा पेड़ो लाने करो गर्मी दे गौरव 4-5 डिग्री शेर एसी भी कम चलाने पड़ो है। अगला बिंदु पर्यावरण री खुशहाली एक बोड़ा पेड़ सालो दी 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सुख है। पेड़ो बारिश भी लाओ पानी रे जो जल स्रोत तिंदर स्तर बढ़ोतरी भी करो अजो माटा कटने दू भी बचाओ है। पक्षी तितली मधुमक्खी वापस आ जाओ तो प्रकृति का जो संतुलन से भी बनाऊंदा रहो है। रेखा बिंदु सामाजिक भावनात्मक खुशहाली छोटू दी जिम्मेदारी तो धैर्य आज जोबे से बीजो दू पौधे बोंदी भी देखो है। परिवार रे माछो जोबे साथी मिले बागवानी करो तो आपसी प्यार भी बढ़ो है। पड़ोसी के नींबू फूल या धोनियरी पास्टी दे रिश्ते मधुर बन सको। सरकार बागवानी के बढ़ावा देने के नर्सरी लाने गाए सब्सिडी ड्रिप इरिगेशन गाए 90% ताई री मदद अजो राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलांदी लाग रही हो। स्कूलोदा इको क्लब और जरिए छोटू के पौध रोपण सिखाया जा लगाओ। संक्षेप दो बोलो जा

को जे बागवानी कोई खर्चा नाही निवेश असो से तोरा सुकुनरा तोई समृद्धि रा। जस गोरो दे पौधे खिलो होसो तेस गोरो दिजु बीमारियो तोयो गरीबी से कमे आ जाए। कोरोने भी आमोदू शिखाओ जे अपनी जरूरतरा कुछ हिस्सा आपू उगाना केटा जरूरी हो। बागवानी अपनाना केवल एक शौक नहीं बल्कि जीवन जीनेरी एक सुंदर शैली ओसो है। ए आमो प्रकृति रे करीब आनो अजो म्हारे गोरो दी खुशहाली री जो खुशी री हरियाली उस तें भी फैलावे। तो आज ही संकल्प लो जे एक पौधा देशो रे नाओ एक पौधा खुशहाली रे नाओ। जोबे गौर होरा बोरा होला तो भई भारत भी सोतीदा खुशहाल होंदा।

श्रोताओं, तुए एज हारुल सुनुस नाई तुई पजाई करी आवाज थी ब्रिजमोहन भारद्वाजरी। एनिए बोलो जे आज तई के विशु मिले लाओ थे, विशु लाए जाओ थे, खूंदो आप मुझे बाड़े आने जाओ थे। बड़े जोरों शोरों सा थे जो से नाच गानो था, ठूठे खेलो थिए और का इंदू अलावा करो थे से जो बद्दो एनिए अपने लोकगीत माध्यम में विस्तार दो बोलो। पर एबे देसा देसी है जो एज परंपरा हो ये थोड़े कम ओला गया, खत्म तो नहीं भी बोल सकते पर कम ओला गया। और जो तो हमारी पीढ़ी हो आईने वाली पीढ़ी तेनों को है तो अगर ए रही चाल दे रोले हमें तेनों के इस चीज़ों के बारे तो बोल देनी कि किसी किसी विशु होते तो तेनों को है इंदिरा कोई पता नहीं रहता। तो आमो यदि संस्कृति जीवी छाड़नी चाहिए, विशु ला दे रोने चाहिए। पर चलो ये तो वक्त तो साथ है, अबे पता नहीं कैसे तरह डोल दे ले हमें। फिलहाल कार्यक्रम था आगू बढ़ ले और एबे बात कर लेनी हमारे भारत सरकार और धां दू चलाई गई योजना मुझे दू एक ही योजना रे बारे दी। श्रोताओं हमें जानो जे भारत एक विशाल जनसंख्या आला देश ओसो है। भारत री एटी बड़ी जनसंख्या दी हद सारी संख्या गरीब तोयो वंचित वर्ग री ओसो है। ग्रामीण क्षेत्र दी स्वास्थ्य सुविधेरी कमी, मोंगे इलाज तोई प्राइवेट हॉस्पिटल गाए निर्भर रोने आम बात हो गई हो। हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह जई गैर संचारी बीमारी तेजी साथे बढ़ लगी हो। तो गरीब परिवारों मोंगे इलाज दू बचाने के एक बड़े स्तर री स्वास्थ्य बीमा योजना री जरूरत असो थी। उद्देश्य था जे कोई भी परिवार इलाज रे खर्च करो गरीबी री धां नहीं धोकेलना सी। यो ही पृष्ठभूमि करो आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई हो। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार री एक स्वास्थ्य योजना असो जो 23 सितंबर 2018 दी पूरे भारत दी लागू की गई थी। 2018 बजट सत्र दी तुद के वित्त मंत्री अरुण जेटली यो योजना री घोषणा करी थी। यो योजना रा उद्देश्य आर्थिक रूप दू कमजोर मांछो के स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना ओसो है। इंदेरे अंतर्गत आईने आए हर परिवारों के 500 लाख ताईरा जो कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना प्रमुखता ओसो। ए दुनियारी सबिदु बोड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ओसो जिंदेरे तहत गरीब तोयो वंचित परिवारों के सालोरा 500,000 ताईरा कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाओ है। आयुष्मान भारत योजना जो अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करो जानी जाओ इंदेरे 7 मुख्य बिंदुओं 7 खास बातों सो है। पोल का बिंदुओं जे 500,000 ताईरा फ्री इलाज हो। हर परिवारों के सालोदा 500,000 रुपए ताईरा कैशलेस इलाज कराया जाओ, पैसा पोली जमा नहीं करना पड़ता। दूजाओ 10 करोड़ परिवारों यो योजना रे तहत कवर किए जा लगे, यानी 50 करोड़ माछो मतलब भारतों की जो 40% आबादी हो से यो योजना दी कवर की जा लगी हो। चीजा बिंदु 1,350 दू ज़्यादा बीमारी कवर हो, हार्ट सर्जरी, घुटने बदलने, कैंसर, कीमो, डायलिसिस बद्दी फ्री हो। 2,700 दू ज़्यादा सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटलों यो योजना साथे जुड़े होंदे हो। अगला बिंदु हो परिवारों रे साइज या उम्र री लिमिट नहीं, एक ही परिवार देचा दू माँ चोले बा 15, छोटू दू चाले बुजुर्ग माँ छताई बदे इंदे कवर किए होंदे हो। अगला बिंदु हो पेपर लेसो जो पूरे देश दी मान्य हो सो। दिल्ली रा जो गरीब माँच या मजदूर चेन्नई दा भी फ्री इलाज करा सको, सिर्फ आयुष्मान कार्ड देखानु पड़ो। छोटा बिंदु प्रीमियम 0, लाभार्थी 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता हो, बद्दा खर्चा केंद्र तोई राज्य 60 तोई 40 अनुपात दा उठा दे। आखिरी बिंदु पोले दू चाली होंगी।

बीमारी भी कवर होए। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अगर पोली दुचाली होंगी बीमारी होली तबे भी इं योजना के तहत फ्री का इलाज होंगे। श्रोताओं, पोली बोलो जाओ थो जे जान होली तो जहान हो, पर गरीबों के सोची बात ऐसी होती जे पैसा ओसो होला तो इलाज हो। आयुष्मान भारत योजना इं लाइनों ही बदल पाइयो। एबे बोलो जाओ जे आयुष्मान कार्ड ओसो तो इलाज हो। संक्षेप दो बोलो जा सको जे आयुष्मान भारत योजना सिर्फ एक योजना नहीं होती। एक गरीबोरी आमेरी दुआ पितेरा आशीर्वाद और जो छोटूरी मुस्कान ओसो। तो आमो भी संकल्प लौना चाहिए जे अपने गांव रे हर गरीब माँ छोरा आयुष्मान कार्ड चाण दो, क्योंकि अगर स्वस्थ भारत होला तो भाई तो समर्थ भारत भी होंदा हो। एजी बातचीत थी आयुष्मान भारत योजना रे बारे दी। एबे हमें कार्यक्रम रे आखिरी पड़ाव रे जहाँ पहुँच ला गया, एबे खबरसार कार्यक्रम तुम्हारे शामिल जरूर करना। तो पोल की खबर हो जे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे साल 2047 ताई विकसित भारत रे संकल्प पूरा करने के बदे दु सहयोग री अपील करियो। नोडा आज शिमले भाजपेरी धांदू आयोजित 12 सालों विश्वास रे विकास रे जन कल्याण रे अभियान रे तहत शिमले दे आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन संबोधित कर दे लाग रहे थे। जगत प्रकाश नड्डे बोलो जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे नेतृत्व दे केंद्र सरकार रे 12 सालों भारत रे इतिहास दे स्वर्णिम अक्षर दे लिखे जाते हो। रेक खबरो, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डे शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट जून 2026 के प्रवेश पत्र भी जारी कर पाया। 13 तो 14 जून दी आयोजित होने वाली इं परीक्षा दे प्रदेश रे 2400 दू ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आखिरी खबर भी ओसो जे धर्मशाला रे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दा दूत भारत तोई अफगानिस्तान रे बीचोदा चीन देशोरी श्रृंखलेरा पोल काजू एक ही देश वाला क्रिकेट मैच से खेला जाता हो। दुनिया टीम धर्मशाले पहुंच गयो मुकाबले दू लयो, क्रिकेट प्रेमी दा खासा उत्साह देखा जाता हो। श्रोताओं, ये थी खबरसार और डेंदे डेंदे एक क्षेत्र तुई हो।

महास्वी कार्यक्रम अभी आपने सुना, हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश हैं किन्नौरी कार्यक्रम।

किन्नौरिङ प्रोग्राम रञ्जित भाइ है नमस्कार जो आकाशवाणी शिमला केन्द्र तो जो प्रोग्राम कल्पारङ कुल्लू रिले केन्द्र सँग एफएम शिमला रिले आज तो उनको प्रेम प्रकाश ने गीत रोक्छु किन्नौरिङ प्रोग्राम लेखी सारे तो पैसा तो आशा तो के किना चाहे कि राजी खुशी दीज मानिया दुक खेन्टा तोरो जो प्रोग्राम हो कसा दुक दम दम गिथा तरुण चे दुख दुरंग साथ साथ कसा बताया से कि भाई कसा नो तुर मैं जिंदगी कमो तेता जोरी जंजाल दू दुख जू कसा कसा जिंदगी पिंग लेता खत्म ला दूरियो मानिया दुख आई खेन्टा जो तुर मैं जू जनगणना नीस हजार निजो तीस जू तई जू तैयारी का लानो दूस कि भाई दो बार सान्दा जानकारी से तो तो वैसे तो आई तोरो दारो खेन्ता तो जो विश्व बाल शर्म निषेध दिवस तो यानी कि कसा जी छानु कमा मार विमुख सा दो कमा विमुख दो कानून अपराध दुनियो मनिया खेन्ता तो ओमी सुंग जो जाऊ तुम मैं सुकुलो ले काटो तो दोक जो जानकारी के माए तो सो तो जिगिचो इसी छा उन किमो थे सुझा कि बीच हम तक कमंगला नहीं हम तक थे कमा तो दोन रिमाण सोंग कि माज रहा हूँ कमंग या छोड़ो के रहा हूँ कमंग हम हमसे तो दुख छानू नाबालिग छानू ले दुख सुकुलों ने मशे दुख कमा रही हो तो न्यो दुख जूस का छानू दुख जू पंख्या खेई जू पंख छुड़ा हूँ तैं सी दुख जू तैं सी इत सरकारी कानून राष्ट्र न्यो आई दुख तोरो दे आ रही दुख इत विश्व जो बाल श्रम निषेध दिवस रूपो ले मनाया हो दुख न्यो जुपंग तोरो जानी कि सोनिश जून म्याक्स पूरा विश्व कमो जुपंग ई दिवस रूप मनाओ जो दिवसो कसा लाखों छानु खेन्ते ध्यान पंग लानु तैंस की जुपु अवसर कसा तोरो कसानु छानु जी छानु मजदूरी लानु तैंस मजबूर मा लानु तैंस जुपंग जागरूक जराव तैं सी चलावनी हो ठूलो ना जी जी छानु खेन्ता जानु अनेनु खेना जी चो योचिंग दियार नीच हुसुकलो हुसिंग दियार नीच अनु इत यंग मक्स्या सारसिंग स्या योचिंग स्या थेती उन अनेनु सपना तंग मक्स्या यानी कि मनिया दोक अने आए भविष्य तें जो अने जिंदगी पंग निखार लानु या विक्स दोनों तें सी तो जो अने सुनचन से जो दिया नहीं दो दोक मगर जो पंग

ऐसे कशा जू संग रो जिसे कहते दोक सीमा राठौर रंग बाग देवी कलो बंटी नीलमपति दोक डंखर अल्लानो रो मैंने गुदाई गुदाई लानो रो अल्लानो मम मतलब कि अल्लानो रो तो ओमिशन कशा नो दोक फाइलो कहते दोक कशो फाइलो हता तेता ओमी थे धुनले कशा नो फाइलो डंखरा जोदा पगा जोदा टागा दोक कहता आई दोकुन छुआगा दोकुन मुलुक ब्रसा ओलगोगा दो जेई छुआ का कशा पत्नी हो तो उसादा तो लिंगसों सुओ बोधी बनो वे सुओ का नुको चंग कशा सान बोधी खाओ नहीं हो तो नगदी फसल को चंग बोधी खाओ मटर दो गोनो को चंग तो कशा जू मऊ उस छुआ का सा कशा सान दा पी कटो पछुआ तो नहीं मने आ तो अमीशों कहता मना रिंग जा उन चे देशों एक या चीज उन चे मना रिंग जा कोनी जा कहता एक या चीज या जाएगा एक या चीज तो रो ईदू पश्चिम विंग्सा नासुम आईदू पश्चिम से या अल्लानु विंग्सा तो सुसुरंगे खांगो वाल गीथंगा लानो तो छुरंग का दाल कामंग ले लाइन तो अनेक नो मनोरंजन ले दो रंग साथ या चिन्ह तो को तेता दम हदी तो को कशो किनो रिंग फाइल कहता तो जो इत हिमाचल प्रदेश जो हिमालय पर्वत को मो जानो ते एक कशो ज्वाल सारे मतलब कि सारे देशंग दुष नहीं हो कशो फाइलो तो का वाल सारे नहीं हो कशा जो शिमला डेन डेन बिरंग कहता डेन डेन बिरंग हता डोंगाओ मजाओ तो कुन देशंगा डोंगाओ मजाओ तो को डोंगानु डोंगानु कटे दो सोरो के दुता दो तंडा डांगे दो वो खेंदा दो तेता दो कुन दो मुछुए दो हदी दो कुन कशा बाबा वेली को चंग बीमा दोस को मो तेता शरे शरे वेली का निचार को चंग बीमा कशा थोआ खेंदा दो तेता जंगला स्वा भी हो वाल हम तो कशा आए चाहे मस्की सोरो को भी हो तो भाई हदे चाहे मस तो हदी खेंदा कशा दो कुन आई डेन डेन बीमा दो खेंदा कशा संगला वेली छितकुल को चंग बीमा दंग मा दो रक्षम छितकुल तेता दम दो कुन टूरिस्ट ओले वाल बीच दो वाल पुष्पा नदी रंग साथ साथ कशानों जो इत वाल ते जो दम जगा दी हो वा शरीर जगा दू मनिया तो खरी कशान डेन डेन भी दुख सारा करो दुख सौरा करो दुख सारा कशान दुखुन तेता खुला स्वर्गंग दुखुन दंग ओम चंख्यामा किन्नर।

किनोरिंग कैलाश डोंगकांग किला कैलाश डोंगकांग दो कैलाश पर्वत कशना दर्शन लनु भी दो उन तो पर्यटक वाले भी सुनता सुविधा का मुलुक तो दियो और भी सुनता है तो कशा नु खेंदा दो थी सुविधा का हरी प्रक्रामंग को चंग खेंदा दो थोड़ा कशा उन तोर में आप मशहूर अच्छी सी जन्माष्टमी मशहूर अच्छी सी दंगले थोड़ा पवाओ भी रंग तेता पवाओ तेता शारे हरी हमले संगला उन कशा थोड़ा खेंदा रंग रंगे रंगों भी आतंक मा ब्रसा उलगो हुआ तेरा दम टाइम बस तेरा ब्रसा उलगो पुष्प पुष्प मटरे पुष्प है खुला जगह की पवंगा दे से रिमा दो खुदे बाल दम जगह दुनियो हरी माओ कशो फाइलो खिंदा हमने डेन डेन भी आदो खुदी हे डेन डेन भी कशो सान सान दो खुन बोठा कठुआ चार तंग मारे दोखले माओ दे देशंग ता देश ही दम नहीं हो दोखले तो दो हे दे जगह ताई माओ तो हम तो कशानो भाई ईसा वशोंग दो खुन दुम छुआती का वाल दम बदनियो ऐसा दम बदामे दो को कैंसियो का उन थोड़ा तो अभी आते के में री का दो तेता दम दम हचिन्यो तो कशो इतु देशंग ले इत स्वरक मनियो जो सारा कि ईसा वशोंग खेता जो कशानो संस्कृति पंगले कशान बच जाता था कशानो जामुक तो पहनावा से कशानो कहता ओमिक्स उस चीज़ों कशा मा मा पी पी आए रहता था नहीं हो तो हर एक चीज़ों कशा माते बारंग नेशपंग आईपंग भी आमाते हैं बदने कशो किनोरिंग टाइम बदो कि भाई उन्हें कशा कहता हे वापिस कशा सिर्फ जो सांदा जनकानो सा सांदा जो टाइम बदो कि भाई जो शोंगचु चीज़ों ले कशा लानो किनोरिंग चु चीज़ों लानो जो सांदा जो सांदा मो दोस्त कशानो मो किनोरिंग चु कशानो संस्कृति पंग सा कशा गटो लानो दोस्तों तो इतना खोरताली बोधी तो ईद खेद तो ना कशा जो सोंगचु शादी देश ना रिंगचू शादी देश दो दिन दो कशो फैलो चु कशा हला शादी तो और कशा नो पंग मा मा मा पी मुख से नहीं तो न्यूक माचुमुख से मा पी से मन तो कशो ईद संस्कृति जो कशो ट्राइबल संस्कृति नो रहस्य नहीं हो जो ट्राइबल ईद कशो निशानी नहीं हो जो कशा नो फैलो चु तो पंग मा मा मा पी मंग तो आई मैं कहता कशानो ट्राइबल नो थू पड़े तो ट्राइबल रो कशानो जो कशानो संस्कृति जामू तुमू पहनावा वैसा विशी कशानो जो ट्राइबल पड़े नो अगर कशा सोनचु कथा ही ताशिन हदे रूप खुला हदे फुंच क्यों रुपया कशानो हुन तो रिंग खुला पाई लोग को रुपया कमी थी मान्य हाथी मान रुपया मगर कशा दुख सांदा माओ संस्कृति माओ शिक्षा तो थू बोलना कशा बच्चा कशो पीढ़ी पंग ले पता लगे कि भाई माओ उस संस्कृति का रहे उस कश जाने का त्योहारंगा दियो दोगा हलानी तो अरे उन ईपा कहता संतान वो लेखन था ओमिशोंग डोले बजाओ उन गिथा मनारिंग जा वाल गिथा लें उस गिथा वाल लें उन तो लिंग कहता है डी जे गा रो दोनों माओ बस्किंग से माओना डी जे गा दो कशो तो सांदा कशानो संस्कृति पंग खत्म आ चुकी हो तो जेता कशानो उन किनोरिंग ले उन गायको गायिका का वाल मशहूर आ चुके दो घंटा तो उन वाल दम दम की थाने लाने दोष तो दो रंग साथ साथ दो कशानो जो कल्चर जो ले चाहिए ताम से जरूर दो मानिया तो जूसी कशानो तो को चीज़ों आए हैं तेम तो कशो किनो सु पेना वालों से कशानो ठेपंग खेल किनोरिंग जो ठेपंग उन तेता मशहूर दो कशानो किनोरिंग जो ठेपंग उन हमले में पूरा हिमाचलो कशो किनोरी ठेपंग नो दो तेत मशहूर वाल नहीं हो दो तो मशहूरी पिंग कशा जुड़े तांग से दो मानिया वैसे तो जूदेन ची तो कशा आयत की थंगे हेमावती का तो कचता

Parece que allá yo, que tengo un chiste, que va a tener con el cuadro que tengo. Doctor, me cuenta pura de eso como it batang du ki charcha du ki bai ju janganna nishazaro nizau tishu bare hoy batang ju charcha du nyo thulo sha ju janganna maina ju du ki bai it etiasi khachi da du ye da thulo na ju batang du ki bai bharat ju jan oms berang toro juna ju janganna purai tara du digital madhyami sachi da du ye जो जनगणना कर्मी मोबाइल ऐप रंग डिजिटल तकनीकी उपयोगी सी कशानु जानकारी जानकारी इकट्ठा लानती छ दो जू जूबे रंग खेता नारिको नु कशानु ये कशानु खेता ऑनलाइन जो जानकारी पंगु पड़े तो यानी कि कशानु सेल्फ एन्यूमेरेशन रो जो सुविधा ले पड़े तो ये जू प्रक्रियाओं कमो जुवा सरल दू आए हसली रंग पारदर्शिता जो ये जो जनगणना निशार निजाओ टिशू इत आयत तेक जो विशेषता जो दू कि भाई आई जोर खेदा तोरिंग जो जनगणों को जातिगत गणनाले जनगणनाले हचो ये शामिल दू यानी कि जो सरकारी जो समाजों सही विभिन्न वर्गों जो दोगों थे हला दू बारे हो आकलन अनु तैं ही सहता पर तो ये रंग तो जो पंग विकास योजना गानु बड़ी प्रभावी ढंगी जो चलामु सके तो

हिमाचल प्रदेशो कमो जिंग खेदा जु हम हम पोम से शेतारा दो दंग जनगणना कमांगुंग समय दिन पूरा लानु ताई सी जुपंग मी गानु जो आसानी स्तंग पहुंचनु ताई सी जुपंग जागरूक कराओ दुश जो जनगणना केवल मी गानु संख्याओ गिनती कमंग मधु बल्कि जो देश शु विकास आधार ले दू शिक्षा दियो स्वास्थ्य दियो रोजगार दियो आवास दियो रंग दो आए जन कल्याणकारी योजना अनु रूपरेखा ले जो आंकड़ा अनु मुताबिक आधार देनी दो तैयार है चोयो जो तंगे सही नागरिकों नु कर्तव्य आदु यानी कशानु चाहिए को कर्तव्य आदु कि भाई जोर कशाओं सही जानकारी रंग पूरा जानकारी प्रदान रनु सके तो तिथि चीजों जो जनरलों को मामा उंगली हो जो गोपनीय नहीं जो हम कशानु चीजों नो बारंग आईपा आईपंग मतलब नहीं हो जो चाहिए गोपनीय नहीं दियो कशा नु ज्ञान से के कत्या जो कशा ज्ञान से तो के बीच जो जनगणना निशादार निजाव तीस जो जो कशा सही भागीदारी पंग निभाएंगे साधु इत हजीस जो पंग विकसित रंग डिजिटल भारत निर्माणों इत कशानो योगदान रंग साधु मनिया तूलो ना खेंता जो जनगणना सी कशानो विकासु तंगे जो दोको गवर्नमेंट इस खेंते योजना का जरा हूँ जो फायदा चिन्हो दोकु मदद पर इन्हों थोड़ा ना अगर जो हमले कशा इत की मुको खेन कशा पेरा तेता तो ने तो कशा हम समझन साधु तो ता तो ने कशा किम तेता दो खर्चा तेता बच्चा दो तो किम तेक निवा दो दोर खेन खर्चा ले आता बुद्धि बस मी बोधी निवा आता खर्चा ले बुद्धि बस तो खुद होते हैं इस कशा उन बोशों को मो तेता गया शो बोशों को ऐसा तेता थी चीज होगा हो तो इत योजना जरा होते हैं इसी तो खुद ही देश को मोले जनगणना लालनियो तो ताकि आम जनता अपन खेंदा तो फायदा पूरा परतनु होते हैं इसी दुकान नौकरी वाला रहने से दुकानों रोजगार रहने से दुकानों दुख थे सुविधा का रहने से दुख देशो जनसंख्या अपन या आई चीज़ों होते हैं तरक्की होते हैं थे जो विकास होते हैं जो योजना लाने शो दो होते हैं जो जनगणना हो कशा थे चीज़ों मावाएंगे सारे आई मावाएंगे सा बेंगलुरु मावाएंगे सा कि भाई कहीं का जो अंगचे जानकारी कहीं हम शुभ पता आई दिन पता रहे तो कहीं मी गानों खेता कुन मो जानकारी का मंगू आदत नहीं जो भी रंग सा करते मांगो इत खेता इत कशानो इत कावद में वकील दियो या डॉक्टर दियो इत जो जनगणना से आ दें कशानो थे मामा साफ साफ चाहिए लोन दियो तो कह दो चीज़ से कशानो था फायदा नहीं बनिया वैसे तो कुन जो दिन बीमू लिखा मोदू तो बीमू का हम साइट कितने चेक करता।

अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी बोली का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीत।

ये लोकगीत आपने सुना लीलावती की आवाज में। लीजिए सुनिए सरिता वर्मा का गाया ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। बीडीएमएफ 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12 सालों में उस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।
1: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा है। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये 12 वर्ष जहाँ हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
0: नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जन विश्वास को मजबूत किया है। प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को रैत कोहला बल्ला सड़क की टारिंग का कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पठानिया ने विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ इस सड़क के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में स्थानीय शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आए, लगभग आधा महीना बीत चुका है, लेकिन इन निकायों में

0: अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में नवनिर्वाचित पार्षद अब जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न करवाने की मांग कर रहे हैं। नाहन नगर परिषद के लिए नवनिर्वाचित पार्षद संजय चौहान का कहना है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं होने के कारण नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त नाहन को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद नाहन के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव तुरंत करवाने की मांग की है।
1: की डेट मांग रहे हैं, जो चुनाव होना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो उसके लिए हमें समय दिया जाए और तारीख दी जाए, यही हमारी जो है मांग है।
0: बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास विषय में पीएचडी के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शिमला की छात्रा विपाशा श्रीवास्तव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पीएचडी करने के लिए उन्हें संस्थान की ओर से फेलोशिप भी दी जाएगी। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के पहले चरण के छठे दिन किन्नौर जिला के प्रतिभागियों ने भारत तिब्बत सीमा के उच्चतम क्षेत्र शिपकिला का दौरा किया। ये दौरा सीमांत क्षेत्रों के प्रति इन युवाओं में जागरूकता, राष्ट्र भावना और आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है बिलासपुरी कार्यक्रम।

बिलासपुरी कार्यक्रम सुनने वाले मेरे सारे साथी और भाई बंधुओं, जो मेरी यानी कि तुम्हारी रेडियो दोस्त सुनीता परमार री प्यार भरी नमस्कार। साथियों, स्वागत है तुम्हारा अहारे बिलासपुरी कार्यक्रम च। अजकने कार्यक्रम री रूपरेखा जी तो सह इं कि एक गल तो करनी अहें बेरोजगारी री समस्या री, और दूजी गल करनी बरसाती रे दिन च नदी नालियां ते दूर रहने री, लोक गीत और खबरां रा मज़ा भी लेना। तो आवा पहले करें थोड़ी जी गलबात जनगणना 2026 और 2027 री। जनगणना 2027 रे पहले चरण च मकान सूचीकरण और मकाना री गणना रा आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य च इन्हां तारीखां रे अनुसार 16 जून 2026 ते 15 जुलाई 2026 तक कित्या जाना। इस ते ठीक 15 दिन पहले यानी कि 1 जून 2026 ते 15 जून 2026 तक स्वगणना रा विकल्प भी सभी हिमाचल वासियों जो उपलब्ध रहना। निवासी sc.census.gov.in पोर्टल पर जाई ने अपू भी अपनी जानकारी भरी सकें। जनगणना 2027 रा काम डिजिटल माध्यम ते कित्या जाना। पहले चरण च मकाना री स्थिति, परिवार जो उपलब्ध सुविधा, परिसंपत्तियां ते संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाने। जनगणना अधिनियम 1948 रे अंतर्गत जनगणना च दित्ती गई सारी जानकारी जी से गुप्त रहनी, और इसा जानकारी रा इस्तेमाल सिर्फ योजना बनाने और अनुसंधान कम्मा खातर ही कित्या जाना। तो ये गल तो है जनगणना बारे च कीती। तुहां जो कुछ खबरां भी सुनानियां और कुछ लोकगीत भी सुनाने, तो आवा पहले सुनी लो ये लोकगीत।

सैरे बारे च। बेरोजगारी अजकने वक्तारी सभी ते ज्यादा गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या चते एक ही तांजे कोई आदमी कम करने योग्य होने रे बावजूद अपनी योग्यता और क्षमता रे अनुसार रोजगार प्राप्त नहीं करी पांदा तां तिसजो बेरोजगार बोले जावां। ए समस्या सिर्फ आदमी जो ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देशा रे विकासा जो प्रभावित करें। भारत जे विशाल जनसंख्या वाले देशा च बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी चुकी रही। आहरे देशा च जनसंख्या च दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई थी। साला भरा च जितने लोकां जो जे रोजगार मिला उससे ज़्यादा बेरोजगारां की संख्या भी बढ़ी हुई। बढ़ती जनसंख्या सीमित रोजगार रे मौके और तकनीकी बदलाव रे कारण ये समस्या लगातार बढ़ती जाएगी। बेरोजगारी रे कई कारण है, सभी ते खास जनसंख्या च बढ़ोतरी। जनसंख्या जी सतेजिया ने बढ़िया दी जबकि रोजगार रे मौके तीसा गतिया ने नहीं बढ़िया दे। इसरे अलावा शिक्षा व्यवस्था च व्यवहारिक ज्ञान और कौशल री कमी भी बेरोजगारी रा एक खास कारण आ। कई बच्चे डिग्री तो ले लुए पर तिना गे रोजगार खातर जरूरी कौशल नहीं हुंदा। खेतिया पर भी कितना निर्भर रही सकें, गवां च ज़्यादातर लोग खेती करें पर पूरा साल तिना जो पूरा कम नहीं मिली पाता। इसरे अलावा औद्योगिक विकास री धीमी गति, आर्थिक असमानता और मशीना रे बदलने लग रहे उपयोगों ते भी रोजगार रे मौके घट होते जाए थे। बेरोजगारी आदमी रे आत्मविश्वास जो कमजोर कर दुआई। लंबे टाइम तक रोजगार ना मिलने ते माणू निराश और तनाव च आई हुआ। इसते टबररी स्थिति भी खराब हुई हुई। बेरोजगारी रे कारण गरीबी, अपराध, भ्रष्टाचार और नशाखोरी जी सामाजिक बुराइयां जी से बदईयां। जे देशा री युवा आबादी बेरोजगार रोई तो ये राष्ट्रीय विकास च बाधा बनाई। बेरोजगार जवान बच्चों री ऊर्जा और प्रतिभा रा ठीक इस्तेमाल नहीं होंदा और इसते देशा री उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई। बेरोजगारी री समस्या जो दूर करने खातर सरकार और समाज दुई जो मिली ने कुछ एड़ा करने पौना तिसते जे बच्चों जो व्यवहारिक कौशल, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा जो बढ़ावा मिले। लघु और कुटीर उद्योगों रे विकास ते ग्रामीण क्षेत्र च रोजगार रे नए मौके पैदा किए जा सके। स्वरोजगार योजना जो बढ़ावा देने युवा बच्चों जो अपना रोजगार शुरू करने खातर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। युवकों जो एड़ी शिक्षा देनी चाहिए सहजती ना जो कम धंधा दिलाने च सहायक सिद्ध हो सके। औद्योगिक शिक्षा रे पासे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तिसते जे पढ़े लिखे बेकार बैठे बच्चों की संख्या जो रोके जा सके। आहारी शिक्षा रा सभी ते बड़ा दोष ये आ कि इसा शिक्षा ते युवक स्वावलंबी नहीं बनते, तिना च हत्था ने काम करने री भावना पैदा नहीं होंदी। ज़्यादातर नौकरी री तलाशा च ही भटकते रहे और हर साल बेरोजगारां री लाइन और लंबी होई जावी। हुण वक्त आई गया कि अहां जो इसा समस्या ने निपटने खातर कम करना पौना और योजनाबद्ध तरीके ने कम करने ते बेरोजगारी ते छुटकारा पाया जा सका। गलबात जारी रहनी, उन सुन लो एक और लोकगीत।

तां जे लोक गीत सुने तुसें यशपाल होरी दी आवाज़ च। हुण असें गल करनी बरसाती च नदी नालियां ते जे असें दूर रहना चाहिए। बरसाती दा मौसम प्रकृति आरी सुंदरता और हरियाली लई ने आवां, बरखा ते खेतां री फसल लह लहाई जावें, जल स्रोत पूरी तरह भरी जावें और वातावरण भी

तां जी प्रकाश चंद शर्मा होर इस लोक गीता कन्नै आहरे बिलासपुरी कार्यक्रम आरा वक्त जैसे खत्म होया था। देवा इजाजत, नमस्कार।

ये था बिलासपुरी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश हैं कुल्लवी बोली का कार्यक्रम।

हे आकाशवाणी रा शिमला केन्द्र से सौंस के ठीक 6:35 और 40 सेकेंड रा वक्त हुआ तो सुना तुसे वे अपना कुलवी कार्यक्रम।

सब इन पहले कार्यक्रम सुनने वाले आम तमाम श्रोताओं वे प्रेमचंद की तरफ नमस्कार। तो हेरा जी उस के कुल भी कार्यक्रम सा गपशप लाणी सहकारिता संघ विकास सेरे बारे न तो संघ भारत सरकार री एक खासम खास योजना आयुष्मान भारत रे बारे में भी थोड़ी जानकारी साझा करनी और देशा प्रदेशा री उस की नवी ताज़ा खबर भी लाणी। तो संघ बेई बेई आस है बांके बांके मीठे मीठे लोग गीत भी सुनना और मज़ा लेना है ना जी। तो ऐसा उसके कुल भी कार्यक्रम मेरी रूपरेखा। तो हेरा जी उसके कार्यक्रम सा सभी पहले एक शोभला जी लोग गीत कृष्ण कपूर वाली आवाजन सुनना। तो लिया जी सुना तुसे शोभला जी लोग गीत।

एथरा सबिन बड़ा उदाहरण छ हस्तशिल्प और हस्तकर्घा। कृषि और बागवानी तसंगे दूध उत्पादन। हस्तशिल्प और हथकरघा रा सबिन बड़ा उदाहरण बुट्ठीको सहकारी समिति सा, जून की वर्ष 1944 शुरू हुई थी। इथे स्थानीय बुनकर एक मंच दीना बिचौलिया ना बचाए और कुलूरे हैंडलूम आवे देशा दुनिया ने एक पहचान दिलाई। कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन और कोल्ड स्टोर जरी व्यवस्था भी सहकारी समिति का बड़ा योगदान स। इथे अलावा दूध उत्पादन काम देनु जेंडी सहकारी समितियाँ ग्रां ग्रां री बेटड़ी और किसाना वे रोजगार दीना जे तसेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था वे मजबूती मिली। इना सहकारी समितियों का एंडा फायदा हुआ कि ये तसेंगे महिला सशक्तिकरण वे बढ़ावा मिलू जे तसेंगे शोरी बेटड़ी आत्मनिर्भर लागी दीसी बन दी तसेंगे रोजगार रे नवे नवे अवसर भी लागे देसी मिल दे संगे संगे लोके रे जीवन स्तर भी काफ़ी सुधार हुआ। तेरा जी आसरे पहाड़ा ना दौड़ी बुरशोरी नोरे अस एक ही दूजे रे होत थामिया आग बैठने री परंपरा रोई दी सा। चाहे छेता खोला न कौम करना हो गौरबार बनाना हो या सुख दुख साझा करना हो आसे हमेशा मिलिया कौम के रू सा। हौज आसा है भावना सहकारी समिति रे रूपन भी मजबूत करनी जेवे आसरा होछा किसान आसरी बुनकर बहने और आसरे नौजवान संगी मिलिया एक समिति बनाने तत्ते बे बैड़ी न बैड़ी चुनौती आसान होनी। ए थी थोड़ी सी गलबात की सहकारिता संगे विकास केंडे लगा दसौंदा तो एवे कार्यक्रम तुस असेंगे एक जरूरी जानकारी साझा करनी जनगणना 2027 रे बारे न। हिमाचल प्रदेश ने जनगणना 2027 रे पहले चरण रा आयोजन निर्धारित तिथियों रे तहत 16 जून न फेटे 15 जुलाई तक करना। ये थाना ठीक 15 रोज पहले यानी कि 1 जून न 15 जून तक स्व गणना रा विकल्प सभी हिमाचल वासियों वे उपलब्ध रहना। लोका sescensex.gov.in पोर्टला पेंदे आपू जाइया अपनी जानकारी भरी सका सी। जनगणना 2027 रा कौम डिजिटल माध्यम संगे होना जूनी रे तहत प्रगणक और पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस या निर्धारित एप्लीकेशन रे माध्यम संगे सूचना इकट्ठे करनी। पहले चरण घरेरी स्थिति परिवार वे मिलती सुविधाएं और जायजाता न संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछने। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना ने दीनी दी सब जानकारी गुप्त रखी दी ओसी और इथरा उपयोग केवल नीति निर्माण और अनुसंधान रे कौम रितई ओस। तो ऐसी थोड़ी सी जानकारी जनगणना 2027 के बारे न। तो वे वक्त हुआ एक होर शोभले जी लोक गीत तरह मोतीला ठाकुर वाली आवाज़ा न सुना तुसे शोभला जी लोक गीत।

शुणू तू से शोभला जी लोकगीत मोतीलाल ठाकुर आवाजन। तायरा जी एबे गलबात केनी आसा भारत सरकार रे खासम खास स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत रे बारे ना जुणीवे की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोला सी। है एक एंडी योजना सा जुणीरा मकसद समाज रे आर्थिक रूपन कमजोर वर्ग री मदद करना सा। जुणीवे की स्वास्थ्य सुविधा री बड़ी जरूरत हो सा। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार री एक प्रमुख बीमा पहल सा जो कि तृतीय और द्वितीयक हॉस्पिटल भर्ती होने रे खर्चे री तय कवरेज दिया सा। आयुष्मान भारत योजना भारत वर्ष रे प्रधानमंत्री हो रे 23 सितंबर 2018 वे शुरू करी थी। यह स्वास्थ्य बीमा योजना भारत ने लगभग 50 करोड़ लोका यानी कि 12 करोड़ ज़्यादा परिवार वे कैबर किया सा। यह पूरी योजना दुई पहिए पेंदे लागी दिस चलती। पहली प्राथमिक स्तर देशा ने लगभग 1.5 लाख ज़्यादा उपकेंद्र और प्राथमिक केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदले सी। इथरा मुख्य मकसद बीमारी बे शुरुआत न रोकना सा। औखे मुफ्त दवाइयाँ 13 प्रकार री बुनियादी जाँच तसेंगे कैंसर शुगर और ब्लड प्रेशर जंडी गंभीर बीमारी री शुरुआती जाँच हुआ सी। ता दूजा सा अस्पताल स्तर जेबे बीमारी गंभीर सा और अस्पताल भर्ती होने री नौबत तेजा सा तेबे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो सा जुणी रे तहत एक पात्र परिवार वे प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख रा मुफ्त इलाज मिला सा। एक फैमिली फ्लोटर योजना सा यानी कि ऐसा राशि रा उपयोग परिवार रा कोई एक सदस्य या सभी सदस्य मिलिया खेरी सका सी। ये थरा यह भी फायदा सा कि मरीजा वे अस्पताल भर्ती होने रे वक्ता पेंदे कोई एडवांस नगद या सिक्योरिटी जमा नहीं केनी पड़ती। लाज सर्जरी दवाई और डॉक्टरी फीस सब किस ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम संगे सरकार सीधा अस्पताल चुका स।

अस्पतालना भर्ती होने ना त्राई रोज पहले तक री जांच दवाइयाँ और अस्पतालों छुट्टी मिलने रे 15 रोज बाद तक री दवाइयाँ रा खर्च भी इना 5 लाख रे कवरा ना हिजा सा। ए वे जाना सा ऐसा योजना री पात्रता और चयन री प्रक्रिया रे बारे न। यह योजना एंटाइटल बेस्ड यानी कि इथरी तइए कोई भी अलग प्रीमियम या फॉर्म नहीं भरना पड़ता, बल्कि सरकार पात्रता पहले न तय करी दी सा। इथरा मुख्य आधार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 रे आंकड़े सी। ग्रामीण क्षेत्र ने डे परिवार जो कि कच्चे घर रो असी जूनिना 16 न 59 वर्ष कोई भी कमाने वाला नहीं थी, जो जमीन जगह नहीं दा दिहाड़ी मजदूर सी या जो अनुसूचित जाति जनजाति संबंध रखा सी। इतने अलावा शहरी क्षेत्र ने डे परिवार पात्र सी जो कि संगठित क्षेत्र ना कौम के रासी जेंडे कि कूड़ा चेकनू वाले रेहड़ी पैटड़ी वाले निर्माण किरनू वाले मजदूर। एबे इस योजना के तहत देशहरी सब आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कवर केरी दिसी और तीन वे भी इस योजना का लाभ लगातार मिलता। सभी शुभली और सभी बड़ी गल ऐसा कि हाल ही सरकार इस योजना ने एक बदलाव के रूस जूनी के तहत 70 वर्ष या तेथाना ज़्यादा उम्र रे बुजुर्ग इस योजना में शामिल कर रहे सी, चाहे तिन्हरी आर्थिक स्थिति केतरी भी हो या ते कोई भी वर्ग रे होले। इना बुजुर्गरी तई एक विशेष पहचान वाला आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जारी ला हो सकेरना। इतने अलावा आयुष्मान कार्ड कैंडे बनना यह भी आसा जरूर जाना। इतने तई आसे अपने आप लाभार्थी राष्ट्रीय पोर्टल या आयुष्मान ऐप के जरिए अपनी पात्र तेरी जांच करिया EKYC करी सकसी। इतने अलावा नज़दीकी लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाए भी आधार कार्ड या राशन कार्ड के जरिए यह कार्ड बनाई सका सी। हरेक सूचीबद्ध अस्पतालन भी आयुष्मान मित्र तैनात करे दे वासी जो कि मुखिया गेटा पेंदे या काउंटर पेंदे बैठे दे वासी। मरीजा का कार्ड वेरीफाई किन फेटे डॉक्टर संगे समन्वय के नेरी तइए पूरी जिम्मेवारी इनरी हो सी। इतने अलावा कोई भी शिकायत या जानकारी री तइए लोका 1455 नंबर पेंदे 24 घंटे कॉल करी सका सी। इथा संगे वे बोक्त हुआ देशा प्रदेश री औज की नवी ताज़ी खबर री। औज की नवी ताज़ा खबर भी आई सी। पहली खबर स विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह बठाणी होरे डोणू की जाचा जणीचा और त्यौहार आसरी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपरारा अभिन्न अंग सा। एंड आयोजन न केवल लोका वे मनोरंजन रा अवसर प्रदान के रासी बल्कि समाज आपसी भाईचारा सद्भाव सहयोग और सांस्कृतिक मूल्य वे भी सुदृढ़ करने रा एक बड़ी भूमिका निवास। कुलदीप सिंह औज बटियात विधान क्षेत्र री सिंहवा पंचायत न छिंज मिले रे अवसर पेंदे बोलदे लागे दिती। तीन बोलू कि नौजवान प्रतिभा वे प्रोत्साहित करने बोक्ते री जरूरत सा और खेल रे माध्यम संगे उसके नौजवाना वे अनुशासन आत्मविश्वास और स्वस्थ स्वर तेरी प्रेरणा मिला सा। तीन ही मौके पेंदे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कुश्ती प्रतियोगिता न ग्राम पंचायत खरगट निवासी नवीश कुमार वे स्वर्ण पदक जीतना पेंदे 51,000 रुपये री प्रोत्साहन राशि देया सम्मानित किरे। अगली खबर से प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2026 तइए प्रवेश पत्र जारी करे। 13 और 14 जून में आयोजित होने वाली इस परीक्षा ने प्रदेश भर रहे 24,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होने। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा और दसू की TGT आर्ट्स TGT मेडिकल JBT और TGT संस्कृत विषय की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 2017 में आयोजित होनी। तीन है भी डूणू की परीक्षा वे लिया बोर्ड सभी तैयारी पूरी करी सा और अभ्यर्थियों वे बोलन बोक्ता ना पहले परीक्षा केंद्र ना पूजना जरूरी सा। ता धर्मशाला रे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ना कल भारत और

अफगानिस्तान रहे बीच सन। 3 दिवसीय मैचरी श्रृंखला रहा पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेलना। दुए टीम धर्मशाला पुजी सी मुकाबले वे लिया क्रिकेट प्रेमियों ने खासा उत्साह सा। क्रिकेट प्रेमियों वे उम्मीद सा कि धर्मशाला रे मैदान पेंदे दुए टीमें रे बीच सन रोमांचक मुकाबला हेरने वे मिलना। तो अगली खबर मौसम रे बारे न प्रदेशन मौसम एक बार दोबारा करवट बदली। बीती रात राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों ने तेज आंधी तूफान संगे गश भी पाऊ। मौसम नाव दे बदलाव संगे लोगों में भीषण गर्मी ने राहत मिली। मौसम विभाग आज कुल्लू मंडी सिरमौर और शिमला जिले ने ओलावृष्टि गाश आसमानी बिजली और आंधी तूफान रा अलर्ट जारी करू सा। जैवे कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में छोड़िए बाकी जिले ने येलो अलर्ट रहना। एती औस की नवी ताज़ी खबर आ। तब सुना सा एक होर बांकाजी लोकगीत कृष्णा ठाकुर वाली आवाज़ न। तो सुना जी तुसे बांकाजी लोकगीत कृष्णा ठाकुर वाली आवाज़ न।

0: time. In FIFA World Cup 2026, co-host Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। इस समय शाम के 7:10 हुए हैं और ये वक्त है कृषि जगत कार्यक्रम का।
4: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा
5: नमस्कार।
4: किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ हरी शर्मा।
5: और मैं हूँ अश्विनी शर्मा।
4: अश्विन जी, सुनाए कैसे हैं आप?
5: जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान बागवान भाई बहन भी स्वस्थ होंगे।
4: अश्विनी जी, इस कार्यक्रम में हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए कई तरह की जानकारियां लेकर के आते हैं। आज इस कार्यक्रम में, यानी कि कृषि जगत कार्यक्रम में, क्या कुछ खास जाने वाला है उसकी जानकारी हम उनको दे देते हैं।
5: जी, काम की बातों में हम अपने किसान भाइयों से बात करेंगे सेब में निमाटोड यानी सूत्रकृमि के विषय पर।
4: जी,
5: हमेशा की तरह सुनाएंगे पहाड़ी लोकगीत और सुनाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत।
4: जी, जिसका विषय रहेगा ग्रीष्मकालीन एवं खरीफ मौसम की आलू की खेती। और डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी से बात करेंगे अश्विनी। अश्विनी जी, शुरू करते हैं आज काम की बातों में। हमारा विषय है सेब में निमाटोड सूत्रकृमि के बारे में।
5: जी
4: किसान भाई, वैसे तो आप जानते हैं कि सेब में कई तरह के रोग और कीट पनप जाते हैं। अगर समय रहते इन रोगों व कीटों से अपनी फसल का आप समय रहते उपचार नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
5: हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। सेब यहाँ के बागवानों की मुख्य फसल है। शीतोष्ण फलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में इसका उत्पादन किया जाता है। सेब को विभिन्न प्रकार के कीट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। इनके प्रकोप से पेड़ या तो सूख जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। इससे उनकी फल उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता प्रभावित होती है।
4: किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं सेंजो स्केल के बारे में। इसकी पहचान आपको कैसे करनी है? ये एक रस चूसने वाला छोटा सा कीट है जिसका शरीर गहरे स्लेटी रंग के कवच से ढका रहता है। कवच को हटाने पर पीले रंग का सुई नुमा मुंह वाला छोटा सा कीट जो है वो आपको उसमें नजर आएगा। नर और मादा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नर 1 मिलीमीटर लंबे व 2 पंखों वाले होते हैं, जबकि मादा प्राय गोलाकार व 2 मिलीमीटर व्यास की होती है। मादा जो है वो पंख रहित होती है तथा शरीर हल्के भूरे रंग के ढाल रूपी छोटी सी टोपी के नीचे छुपा रहता है। इसके जो शिशु होते हैं वो छोटे पीले तथा 0 से 2 मिलीमीटर आकार के होते हैं, जो प्राय स्केल रहित होते हैं।
5: जी बात करें इनसे होने वाले नुकसान की, तो यह सेब का एक मुख्य कीट है जो पौधों के तनों, शाखाओं और फलों के रस को चूसता है, जिससे पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है।
4: जी
5: इस कीट के प्रकोप से पौधों की छाल पर सुई की नोक के जैसे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं। अधिक प्रकोप होने पर कीट ग्रसित भाग गहरे स्लेटी रंग की परत से ढक जाता है तथा ऐसा लगता है जैसे टहनियों पर राख छिड़की हो।
4: किसान भैया, इसकी रोकथाम की अगर हम बात करें, यानी कि सेंजो स्केल की रोकथाम, ये जो कीट है कैसे आप करेंगे? तो स्केल के उचित उपचार हेतु बागीचों की सफाई की ओर आपको विशेष ध्यान देना होता है। इस कीट से ग्रसित टहनियों की कांट छांट कर उन्हें आप जला दें और बागीचे लगाने से पहले पौधशालाओं से लाए गए पौधों की जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर लें तथा स्वस्थ पौधे ही आप अपने बगीचे में लगाएं। नया बगीचा पुराने स्केल ग्रसित बगीचों से दूर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और पूर्व स्थापित बगीचों में डोरमेट तेलों का छिड़काव पेड़ की सुसुप्त अवस्था में ही आपको करना होता है, क्योंकि इसमें स्केल की मोमनुमा परत पर बहुत पतली होती है।
5: जी इन तेलों के छिड़काव में विलम्ब ना करें, क्योंकि हरी पत्ती विकसित होने पर स्केल अपने आप को मोम

0: की मोटी परत द्वारा ढक चुका होता है, जिस कारण तेल स्केल तक नहीं पहुंच पाता और इनकी रोकथाम मुश्किल हो जाती है।
1: और अधिक समस्या वाले बगीचों में 2 से 3 वर्ष तक निरंतर छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि स्केल की जनसंख्या को अधिक नुकसान की स्थिति तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सके।
0: जी, अब बात करते हैं वूली एफिड यानी रोएदार तेला की। तो इसकी पहचान की अगर हम बात करें, इस कीट से ग्रसित सेब के पौधों की शाखाओं, पौधों की छाल में पड़ी दरारों और कटी हुई टहनियों से रुई को हटाकर देखा जाए तो इसके अंदर गहरे लाल और भूरे रंग के छोटे छोटे कीड़े नजर आएंगे, जो अक्सर 1.5 से 3 मिलीमीटर लंबे होते हैं। यह कीट हमेशा समूह में ही रहते हैं। इनके शरीर पर रुई अथवा बर्फ के फाहे के समान पदार्थ निकलता रहता है, जिसके कारण इन्हें दूर से पहचाना जा सकता है।
1: जी किसान भाई, अगर वूली एफिड के नुकसान की बात करें तो इस कीट का प्रकोप पेड़ की शाखाओं, मूल वृत्त और भूमि के बाहर निकली हुई जड़ों पर अधिक होता है, जिससे फल कम लगते हैं। कीट का पौधशालाओं से अधिक प्रकोप रहता है तथा पौधे जो है वो पूरी तरह से मर जाते हैं। इस कीट के प्रौढ़ व शिशु दोनों ही झुंडों में रहते हैं और पौधों के ऊपरी भाग जैसे कोमल टहनियों, कटे भागों तथा भूमि के अंदर जड़ों से रस चूसते हैं। प्रभावित स्थान पर गांठें बन जाती है और जड़ों में गांठें बनने से पौधों को जमीन से पानी व अन्य पोषक तत्व लेने में जो है वो कठिनाई आती है। इसकी रोकथाम की बात करें।
0: जी, तो रोकथाम के लिए बागीचों का उचित रखरखाव इस कीट की जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी,
0: चूसक जड़ों को, जो कि इन कीटों की पसंदीदा जगह होती है, पेड़ों के तनों के निचले भागों से हटा दें। यहीं से यह कीट अपने जीवन काल की शुरुआत करके पेड़ के अंदरूनी भागों में प्रवेश करता है।
1: जी, और किसान भाई, तने से निकलने वाली शाखाओं पर उग रहे चूसक तथा वाटर स्प्राउट को हटा दे, ताकि पेड़ों को स्प्रे से ठीक प्रकार से ढका जा सके। ये कीट पौधों के कटे भागों अथवा फटी हुई छाल व दरारों पर आक्रमण करते हैं और कांट छांट के बाद कटे हुए भागों को चौपटिया या अनुमोदित किसी भी पेस्ट अथवा पेंट लगा करके आप इसको अच्छी तरह से ढक सकते हैं।
0: जी, कीट ग्रसित फलदार पौधों पर जून से अक्टूबर में क्लोरीपाइरीफॉस 0.04%, 400 मिलीलीटर डर्मेट 20 cc प्रति 200 लीटर पानी के घोल में मिलाकर छिड़काव करें। कीट से प्रकोपित प्रत्येक पौधे में अप्रैल और अक्टूबर में फॉरेट 25 से 30 ग्राम थीमेट 10 g या कार्बोफ्यूरॉन, 70 से 80 ग्राम फ्यूडॉन 3 g तने के चारों ओर 5 सेंटीमीटर गहरी नाली में बनाकर डाल।
1: और किसान भाई, ये दवाइयों का छिड़काव मई और जून में ना करें, ताकि मित्र कीट सुरक्षित रह सके। क्योंकि देखिए, आजकल जो है वो मित्र कीट हमारे बगीचे में आए होते हैं, इसलिए इन दिनों जो है कीटनाशक का छिड़काव हमारा बागवान कम करे।
0: जी,
1: अब बात करते हैं तना छेदक कीट के बारे में। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इस कीट के व्यसक मटमैले रंग के तथा 3.5 से 5.0 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिनके एंटीने प्राय शरीर से लंबे होते हैं और जिस स्थान पर ये कीट होते हैं वहाँ पर तने से बुरादा निकालते रहते हैं और आप उनको वहाँ पर बुरादा निकालते हुए देख सकते हैं।
0: जी, नुकसान की बात करें तो यह कीट नई शाखाओं तथा टहनियों पर मार्च से नवंबर तक आक्रमण करता है। छाल के नीचे के तंतुओं को खाना आरंभ करके धीरे धीरे मुख्य तने और बड़ी शाखाओं के अंदर पहुँच कर उनमें सुरंगें बना देता है। इन नालियों से गीला बुरादा बाहर निकलता है, जिसके फलस्वरूप पौधे खोखले तथा कमजोर हो जाते हैं। यह कीट तब तक पेड़ में सक्रिय रहता है जब तक इन पेड़ों में रस का प्रवाह रहता है। इस कीट द्वारा ग्रसित पौधा कुछ ही समय में सूख जाता है।
1: और किसान भाइयों, इस तना छेदक कीट की रोकथाम की अगर हम बात करें तो इस कीट की रोकथाम के लिए पेड़ों का स्वस्थ होना जरूरी है और पेड़ों में पानी तथा खाद की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और सुंडियों द्वारा बनाए गए छेदों को किसी सिलाई अथवा लचीली तार से साफ करके उसमें पेट्रोल या मिट्टी के तेल में रुई भिगो करके आप डाल सकते हैं और छेदों को बाहर से गीली मिट्टी से आप बंद कर सकते हैं। पेड़ की छंटाई के समय ग्रसित टहनियों को काट करके आप उन्हें जला दें।
0: जी, बात करें छर्रेदार तना या टहनी छेदक कीट की, तो इसके पहचान और लक्षण इस प्रकार होते हैं कि यह कीट तने और टहनियों पर छोटे छोटे गोलाकार बंदूक की गोली के छर्रे द्वारा बनाए गए छेदों की तरह छेद बनाता है। इस कीट के शिशु छाल के नीचे सुरंगें बनाकर खाते हैं और छाल को खोखला कर देते हैं। इससे पौधा बीमार दिखाई देता है और टहनियां सूख जाती है और अंत में पौधा

0: जाता है। यह कीट अक्सर कमजोर पौधों को अपना शिकार बनाता है।
1: और किसान भाई, इसके प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इस कीट की रोकथाम के लिए ग्रसित टहनियों और तने पर मिथाइल पैराथियोन 0.2% या मेटासिस्टॉक्स 50 EC से किसी कपड़े को भिगो करके मले अथवा पूरे पेड़ पर मिथाइल पैराथियोन 0.1% का छिड़काव आप उस पर कर सकते हैं। और बगीचों में पेड़ों की नियमित देखभाल आप करते रहे और उनको स्वस्थ रखना इस कीट से बचाने के लिए अति आवश्यक है। तो अश्विनी जी, ये तो हुई जानकारी काम की बातों में सेब के सूत्रकृमि के बारे में। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं किसान और बागवान भाई बहनों को किशन वर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: ने किशन वर्मा की आवाज में सुना ये पहाड़ी लोकगीत।
1: किसान भाई, अब इस लोकगीत के बाद बारी है एक महत्वपूर्ण जानकारी की, जिसका विषय है ग्रीष्मकालीन एवं खरीफ मौसम के आलू की खेती के बारे में। और डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी से बात कर रहे हैं अश्विनी।
0: किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार जी।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हमारा मुख्य विषय है कि ग्रीष्मकालीन एवं खरीफ मौसम के आलू की खेती, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ग्रीष्मकालीन आलू और खरीफ आलू से क्या तात्पर्य है और ये हिमाचल के किन क्षेत्रों में लगाया जाता है?
2: जैसे कि सर ने पूछा है कि ग्रीष्मकालीन और खरीफ आलू क्या है, ये कोई अलग किस्में नहीं है। ये है कि अगर गर्मियों में अगर आप आलू लगाते हैं, जैसे हमारा हाई हिल्स का जो एरिया है, जो वेट टेम्परेट रीजन है, जो कि 1600 से 2400 मीटर तक की हाइट के एरिया है, वहां पर हम लोग मार्च और अप्रैल महीने में 15-20 अप्रैल तक जो आलू लगाते हैं उसको हम लोग ग्रीष्मकालीन आलू बोलते हैं। और जो हमारा ड्राई टेम्परेट है, जो 2400 से मीटर है, जो जहां पर बर्फ पड़ा होता है, जैसे हमारा लाहौल है, किन्नौर है, स्पीति का एरिया है, जैसे बर्फ पिघलती है उसके बाद उस आलू को हम लगाते हैं। और अमूमन वो अप्रैल के एंड और मई के महीने तक, इवन कई बार तो अगर ज्यादा बर्फ पड़ी हो तो हम लोग जून के, मई पूरा महीना और जून के पहले हफ्ते तक भी उस आलू को हम लोग बीजते हैं। उसको हम लोग खरीफ आलू कहते हैं क्योंकि उसके बाद वो खरीफ का सीजन शुरू हो जाता है। तो ये जो ग्रीष्मकालीन आलू और ये जो आपका खरीफ आलू है, इन क्षेत्र में लगाया जाता है। मौसम के हिसाब से इसका एक वर्गीकरण किया गया है।
0: जी डॉक्टर साहब, फिर सवाल ये आता है कि भारत में आलू का कुल क्षेत्रफल, उत्पादन और इसकी पैदावार ये कितनी है और कहां कहां पर कितना आलू जो है वो पैदावार के तौर पर उगाया जाता है?
2: बड़ा अच्छा सवाल किया है सर। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आलू भारत की एक बड़ी प्रमुख फसल है। मक्का, धान और गेहूं के बाद अगर चौथी कोई बड़ी फसल है वो आलू ही है। और ये सबका पेट पालने वाली फसल है, हमारे हिमाचल में बहुत बड़ी फसल है ये।
0: जी
2: भारत में इसका लगभग 2.18 मिलियन हेक्टेयर, ये जिसको हम लोग बोल सकते हैं 22 लाख हेक्टेयर में लगता है। और इसकी जो पैदावार है वो आपकी 52.6 मिलियन टन है, जो कि हुई आपकी 526 लाख टन। और अगर इसकी उपज की बात करें तो 24 टन पर हेक्टेयर जो है इसकी उपज है, मतलब 25 कनाल में या 12.5 बीघे में इसकी जो है 24 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से यील्ड आती है, पैदावार आती है।
0: जी डॉक्टर साहब, हिमाचल के परिदृश्य में आलू की खेती कहां पर है?
2: अगर हम लोग हिमाचल की बात करें तो मोटे तौर पर हिमाचल में हमारे पास लगभग 15,000 हेक्टेयर एरिया है। पहले बहुत ज्यादा एरिया था लेकिन समय के साथ जो है बहुत ज्यादा फसल विविधीकरण हुआ है।
0: जी।
2: दूसरी कैश क्रॉप्स और सब्जियों की तरफ हिमाचल के किसानों का रुझान हुआ है। फिर भी क्योंकि इसको अच्छी कीमत मिलती है आलू के नाम पे, तो 15,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। और हमारी जो उत्पादन है इसका वो है 2,05,000 टन के करीब हमारी पैदावार है। और उपज की बात करें तो 10.2, अब तो लगभग 11 टन पर हेक्टेयर के करीब उपज है, क्योंकि हम लोग खरीफ में लगाते हैं, ग्रीष्म में लगाते हैं, तो इस सीजन में थोड़ी पैदावार हमारी थोड़ी कम आती है।
0: जी आलू के उत्पादन में जब हिमाचल की बात आती है तो हिमाचल का जैसे कि वातावरण है कई तरह का है, कहीं पे काफी ज्यादा गर्मी होती है तो कहीं काफी ठंडे इलाके भी पाए जाते हैं। ऐसे में हिमाचल के लिए आलू की उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है?
2: किसान भाइयों, क्योंकि हिमाचल में जो हमारा आलू लगता है, अगर लो और मिड हिल्स की बात करें, जो कि 800 मीटर लो हिल्स एरिया आ गया, और जो मध्य पहाड़ियां वहां 800 से 1600 मीटर है, फिर मैंने आपको ड्राई टेम्परेट और वेट टेम्परेट 1600 से 2400 और मोर देन 2400 जो आपके एरिया थे, वहां ग्रीष्मकालीन और खरीफकालीन आलू की बात की। इन सारे क्षेत्रों में जो है हमारी जो उपयुक्त किस्में हैं, एक तो कुफरी ज्योति हम लोग बड़े समय से लगाते रहे हैं।
0: जी
2: कुफरी चंद्रमुखी हमारे ऊपरी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बहुतायत में लगती है और इसकी मार्केट में अच्छा किसानों को उपज का दाम भी मिलता है। उसके अलावा कुफरी हिमालयनी है, जिसमें जो हमारा जो झुलसा पिछेता झुलसा लोग है उसके लिए अच्छी प्रतिरोधकता है। उसके अलावा एक कुफरी करण है, कुफरी गिरदारी है। ये जो वराइटीज है ये हमारे ग्रीष्मकालीन और खरीफकालीन आलू के लिए जो क्षेत्र है उनके लिए अनुमोदित है और अच्छी पैदावार देती है ये।
0: जी डॉक्टर साहब, आलू की खेती की जब बात आती है तो आलू में कई तरह की खाद और उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है, तो आलू के लिए देसी खाद और उर्वरकों का अनुमोदन क्या है?
2: किसान भाई, ये देसी खाद, क्योंकि आलू एक तरह का ट्यूबर क्रॉप है और ये जमीन में जितनी मिट्टी में दोमट, या तो मिट्टी अच्छी हो, हल्की मिट्टी हो, या उसमें गोबर वगैरह अच्छा डाला हो, बायोकंपोस्ट डाला हो, तो उससे क्या होता है कि भुरभुरापन रहता है, उसकी फिजिकल कंडीशंस बहुत अच्छी रहती हैं, उससे क्या होता है कि आलू की भड़वार अच्छी होती है। तो अमूमन तौर पर हम लोग एक हेक्टेयर में 20 से 25 टन जो है वो हम लोग गोबर पर कनाल बोले तो हम लोग 1 टन जरूर डालें गोबर की खाद। अगर हम लोग बीघा के हिसाब से डाल रहे करें तो 2 टन जो है पर बीघा के हिसाब से जरूर डालें। उसके अलावा हमारे जो

0: क्षेत्र है इसमें 120 से लेके 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें और 100 किलो जो हमारा फास्फोरस है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें और 100 ही किलो पोटाश जो है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग डालें। और अगर आप एक या दो बीघे में लगाते हैं या दो कनाल में लगाते हैं उसी तरीके से आप लोग उसको कैलकुलेट करके डाल लें। तो ये जो है आप लोगों ने डालना। और दूसरी मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ग्रीष्मकालीन मौसम में लगाते हैं या खरीफ में लगाते हैं तो बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो क्या करना चाहिए हमें, फास्फोरस और पोटाश पूरी मात्रा और आधी मात्रा जो है हमारी नाइट्रोजन की जो यूरिया के थ्रू आप देते हैं तो आधी मात्रा डालनी है। जो आधी मात्रा बचती है वो पहली गुड़ाई जो हम लोग 30 से 40 दिन के बीच देते हैं उसमें हम लोग इसको नाइट्रोजन को डालें।
1: जी डॉक्टर साहब, भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी आलू की फसल जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से तैयार हो सके?
0: बहुत अच्छा सवाल है। अच्छे पानी निकास वाली दोमट और हल्की मिट्टी आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। आलू की भड़वार, आलू की जड़ों की बुरबार, बुस्तारी लगने के लिए और आलू का साइज बनने के लिए हल्की मिट्टी बहुत जरूरी होती है। तो क्या करें, अगर मिट्टी आपकी भारी भी है तो उसमें गोबर डालें या दो तीन बार उसको जुताई करें। जहां ट्रैक्टर है वहां एमबी प्लो से करें, जहां बैल हैं या सीढ़ीदार खेत हैं वहां पर आप बैलों से दो तीन जुताइयां करें और अच्छी गहरी जुताइयां करें, उसके बाद पाटा चला दें।
1: जी डॉक्टर साहब, आलू के बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए?
0: अगर हम लोग पर हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, अगर बीघा के हिसाब से बात करें तो 160 से 200 किलो प्रति बीघा आएगा। और कनाल के हिसाब से बात करें, कांगड़ा और हमीरपुर में छोटे छोटे खेत हैं तो उन क्षेत्रों में 80 से 100 किलो आप लोग आलू, एक आलू का साइज 30 ग्राम हो मिनिमम और इसमें दो से तीन आंखें हों, तो आलू का बीज इस तरीके से रखें और साथ में उसको ट्रीट भी करें। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो आप लोग डाइथिन M45 या इंडोफिल M45 जो है 0.05% का जो है वो आप घोल बनाएं और उसमें आप फिर ट्रीट करके लगाएं ताकि उसमें बीमारियों वगैरह का प्रकोप कम हो।
1: जी, हर तरह की फसलों में खरपतवार जो है एक प्रमुख समस्या मानी जाती है, इसी तरह आलू में भी खरपतवार की समस्या आती है, तो खरपतवार की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए?
0: किसान भाई, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आज आपके साथ ग्रीष्मकालीन और खरीफकालीन के लिए और इस मौसम में जो गर्मी भी होती है, तो खरपतवारों से बचाने के लिए जो है पहले तो आप जहां पर आपको मल्च कर सकते हैं, अगर आपके पास पशु हैं और उसका कोई जूठा चारा बच जाता है या आपके पास कोई ऐसी फसल है या आपके खेत की मेड़ों पे अगर घास पास है तो उसको जो है आप उसकी मल्चिंग कर दें, इससे मॉइस्चर भी कंजर्व रहेगा और घास भी कम आएंगे। ठीक है, तो इसको 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इतना मल्चिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है और लेबर भी नहीं है तो आप जो है वो एक पेंडीमेथिलिन दवाई आती है, इसका आपने 1.2 किलो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से आपने लेना है, 800 लीटर में मिलाना और पीछे की तरफ आते हुए स्प्रे करनी है। अगर कनाल के हिसाब से करें तो 160 ml और प्रति बीघा के हिसाब से करें तो 320 ml जो है प्रति बीघा 60 लीटर पानी में अपना इसकी स्प्रे करनी है। एक और बहुत अच्छी दवाई है मेट्रीब्यूजन, जिसका आप 1 किलो सक्रिय तत्व जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर, जैसे आपने आलू बिजाया उसके 48 घंटे के बाद आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक आइसोप्रोचरोन भी दवाई है, एट्राजिन भी है, इसको भी आप लोग एज पोस्ट मर्जेंस स्प्रे कर सकते हैं 1 kg AI पर हेक्टेयर के हिसाब से 800 लीटर पानी में मिला के।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई जो है वो खरपतवारों की रोकथाम नहीं करते, तो ऐसे में कौन सी हानियां हैं जो कि उनकी आलू की फसल में हो सकती है?
0: जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो मल्चिंग करें या खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें। उसके अलावा हम लोग जो है निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं 30 से 40 दिन में, फिर दूसरी निराई गुड़ाई हम लोग 50 दिन में करते हैं, इससे भी घास जो खरपतवार है वो खत्म हो जाते हैं। और इनसे जो हानियां होती हैं वो एक तो नमी को आप सोख लेंगे, प्रकाश के लिए कंपटीशन होगा, पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन होगा और स्थान के लिए भी प्रतिस्पर्धा होगी। इससे क्या होती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और साथ में आप लोगों का जो क्वालिटी आलू की वो भी कम होती है। मोटे तौर पर एक हेक्टेयर में कुछ 40 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस और 15 से 50 किलो जो पोटाश है उसका नुकसान जो है खरपतवारों की वजह से हो जाता है और 10-80% तक आपकी आलू की पैदावार भी कम हो जाती है, बीमारियां ज्यादा आती हैं, क्वालिटी कमजोर होती है और आपका वीड्स का जो बैंक है खरपतवारों का सीड वुड बैंक भी बिल्डअप होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त इंट्रोक्रॉपिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं?
0: ये भी सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आजकल हम लोग क्योंकि केमिकल्स को जो है वो कम कर रहे हैं, खरपतवार नाशी में कम डाल रहे हैं, एक और एक आपका इसको बोल सकते हैं इको फ्रेंडली एक टेक्निक है जिसमें आलू के साथ आप कुछ ऐसी फसलें लगाएंगे जो कि आपके नीचे के खेत की जो जगह है उसको घेर लेते हैं और खरपतवारों को नहीं आते। जैसे आप आलू के साथ गर्मियों में या खरीफ सीजन में फ्रेंच बीन ले सकते हैं
1: जी,
0: एक और एक रेशियो में, एक लाइन आलू की और एक लाइन आपकी फ्रेंच बीन की।
1: फ्रेंच बीन की
0: वैसे ही अगर हम लोग ब्रोड क्षेत्र में बात करें, ब्रोड और कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में, तो वहां मक्का में आलू को लेते हैं एक और एक ही रेशियो में, एक लाइन आलू की और एक आपकी मक्का की होती है। और सिरमौर की बात करें, सोलन के

0: पिछले एरिया की बात करें तो आलू के साथ वो ये गार्लिक भी लेते हैं, लहसुन भी लेते हैं, पर ये रबी सीजन में लेते हैं। और कुछ एक जो है वो जो आप लोगों का जनवरी फरवरी में लगता है, वहां भी एक लाइन आलू की और एक लाइन आपकी लहसुन की लगाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी पैदावार भी आ जाती है और आपका जो है खरपतवार भी कम आते हैं। तो ये इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हमारे इन क्षेत्रों के लिए अनुमोदित है।
1: जी, आलू की खेती में हमारे किसान भाइयों को जल प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए?
0: क्योंकि गर्मियों की फसल है, एक तो हम लोगों को मल्चिंग बहुत जरूरी है,
1: जी
0: और क्योंकि बरसात में भी ये टच करती है फसल, तो हमें पानी का निकास भी रखना है। और जहां पर पानी की हमें कुछ स्ट्रेस होती है, बारिश नहीं होती है, तो हमें इरिगेशन देनी, चाहे आप चैनल्स के थ्रू दो या पाइप के थ्रू दो। अगर पानी आपने भंडारित किया है तो जैसे बुस्तारी आती है, इसमें ट्यूबर फॉर्मेशन होती है, उसमें पे आपने इसमें पानी देना है। और दूसरी जो क्रिटिकल स्टेज है, जब आपके आलू का बढ़ान होता है, और अमूमन मोटे तौर पर जो आपने गर्मियों में जो है या खरीफ में जो है 10 से 12 दिन के अंतराल के बाद जो है रेगुलरली आपने, अगर बारिश नहीं होती है, तो पानी को देना है। और कोशिश ये करनी है कि खेत में फ्लडिंग ना करें, क्योंकि इससे मिट्टी जो है वो भारी हो जाती है और आलू का जो विकास है वो रुकता है।
1: जी, डॉक्टर साहब, आलू की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है?
0: किसान भाई, अगर हम लोग हिमाचल की बात करें तो सबसे बड़ी हमारा जो एक बीमारी है वो है पछेता रोग, और कुछ क्षेत्रों में अगेता रोग भी लगता है। तो जो पछेता झुलसा रोग लगता है, उसके लिए हम लोग जो है पहले तो ऐसी वैरायटीज लें जैसे कुफरी हिमालयनी है, कुफरी करना है, इनमें प्रतिरोधक क्षमता है। और दूसरा है हमें सीड को ट्रीट करना, मैंने आपको सीड ट्रीटमेंट बता दी। और तीसरा है रिडोमेल, एक तो हमने मोनकोजेब की स्प्रे करनी है, 2 ग्राम पर लीटर में डालना है और एक स्प्रे कर देनी है जब हमारा पत्तियों का अच्छा विकास हो जाता है। और दूसरा रिडोमिल MZ78 जो है वो 0.15% की 15 दिन के अंतराल पे 2-3 स्प्रेज करनी है। और जो तीसरी चीज है वो है डाइथेन M45 या इंडोफिल M45 का 0.2% का आपने 4 स्प्रेज करनी है 7 डेज के इंटरवल। इससे आप पछेता रोग से बच जाएंगे। कुछ एक कीड़े भी हैं, उसके लिए इमिडाक्लोपीड 3.3 ml/L के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और टर्माइट्स के लिए हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस भी कर सकते हैं, फिप्रोनिल भी कर सकते हैं। माइट्स के लिए डाइकोफोल है 2 ml/L के हिसाब से। इस तरीके से आप बीमारियों से और जो इसमें लगने वाले कीड़े हैं या टर्माइट्स हैं, माइट्स हैं, ग्रब्स है, इससे आप बच सकते हैं और एक अच्छी आलू की पैदावार ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने ग्रीष्मकालीन एवं खरीफ मौसम के आलू की खेती के विषय पर हमारे किसान भाइयों को बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: धन्यवाद सर।
2: किसान भाई, अभी आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी सुनी। विषय था ग्रीष्मकालीन एवं खरीफ मौसम के आलू की खेती के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी से अवश्य ही लाभ उठाएंगे। अश्विन जी, अब बारी है एक और लोकगीत की, तो आइए सुनते हैं बिमला देवी की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, बिमला देवी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये पहाड़ी लोकगीत। अब इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है।
1: कल हम फिर मिलेंगे एक नया विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
5: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
4: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली देश की राजनीतिक संस्कृति, जन विश्वास को किया मजबूत। पशुपालकों की आजीविका में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने चराई नीति 2026 को दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से धर्मशाला में, दोनों टीमें तैयार। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। नड्डा आज शिमला में भाजपा द्वारा 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के अभियान के तहत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं बल्कि विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले परिवर्तनकारी वर्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन तक प्रदेश के प्रधान सेवक के रूप में काम करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता के विश्वास, समर्थन और आशाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल का आह्वान करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा था और पिछले 12

0: सालों में इस संकल्प की मजबूत नींव रखी जा चुकी है।
1: और ये 12 वर्ष मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ये विकसित भारत की आधार रखने वाले 12 साल, जिस विकसित भारत को 2047 में देखने के लिए आतुर है, उस विकसित भारत का आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 12 सालों में रखा। कोरोना के दौरान जब भारत अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 12 वर्ष जहां हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
0: नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है।

0: अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि अब अगले 25 साल वह अमृत काल होगा और उस अमृत काल के लिए हम विकसित भारत की कल्पना को पूरा करें। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये 12 वर्ष जहाँ हमारे को आधार बन के रूप में मिले हैं, वहीं हम पूरी संकल्प के साथ आगे की लंबी छलांग लगाते हुए देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए हम आतुर हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं।
1: नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को विकास की नई रफ्तार दी है और स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों से हिमाचल की तस्वीर बदली है। नड्डा ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास योजना से हिमाचल के लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदलकर जन विश्वास को मजबूत किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव नतीजे प्रदेश की जनता के भाजपा के प्रति बढ़ते विश्वास और कांग्रेस सरकार के प्रति असंतोष का स्पष्ट सबूत है। बिंदल ने आज शिमला में पार्टी के बुद्धिजीवी सम्मेलन और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि जनता विश्वास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ खड़ी है। बिंदल ने यह भी कहा कि नड्डा के प्रदेश दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह अतुलनीय और भारत के पुनरुत्थान का स्वर्ण काल रहा है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 12 साल की अवधि पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में सशक्त नेतृत्व मिलने से वर्षों से रुके हुए काम संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चराई नीति हरियाली भी खुशहाली भी की सोच को साकार करती है। ये नीति हमारे चरागाहों की रक्षा करती है, पशुपालक परंपराओं का सम्मान करती है और पशुधन पर निर्भर परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीति पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करते हुए राज्य में एक समावेशी, टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास विषय में पीएचडी के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शिमला की छात्रा विपाशा श्रीवास्तव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पीएचडी करने के लिए उन्हें संस्थान की ओर से फेलोशिप भी दी जाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्सेंडल एट द रेट AIR न्यूज़ _ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजन न केवल लोगों को मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुलदीप सिंह आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की सिहुंता पंचायत में छिंज मेले के अवसर पर बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकास खंड बसंतपुर में आयोजित 3 दिवसीय आपदा रक्षक कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी अमित टुटेजा ने की। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और सामुदायिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में स्थानीय शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे

0: आए लगभग आधा महीना बीत चुका है, लेकिन इन निकायों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चयन नहीं हो पाया है। ऐसे में नवनिर्वाचित पार्षद अब जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न करवाने की मांग कर रहे हैं। नाहन नगर परिषद के लिए नवनिर्वाचित पार्षद संजय चौहान का कहना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं होने के कारण नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त नाहन को ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद नाहन के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव तुरंत करवाने की मांग की है।
1: की डेट मांग रहे हैं जो चुनाव होना है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो उसके लिए हमें समय दिया जाए और तारीख दी जाए, यही हमारी जो है मांग है।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल ने कहा है कि विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी की अनुपस्थिति टीम को खलेगी। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर भी है। उन्होंने कहा कि आगामी विश्व कप और दक्षिण अफ्रीका दौरे को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन तेज गेंदबाजी में अधिक से अधिक विकल्प तैयार करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज कांग्रेस के पांचवें स्तंभ कार्यक्रम की राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभ्रा जंटा ने शुरुआत की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए शुभ्रा जंटा ने कहा कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया में सक्रिय युवाओं को इस कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है।
2: ऐसे युवाओं को जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर आम जन की आवाज और आम जन के मुद्दों को रखा है, उन लोगों को अपने साथ या फिर मैं ये कहूँ कि उनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ नाहन में, तो ये संविधान लीडरशिप प्रोग्राम जो है भारतीय युवा कांग्रेस ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए लॉन्च कर रहा है, जो निडरता के साथ, निर्भयता के साथ असली मुद्दों को जो है ग्रास रूट लेवल पर आई है।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम वर्षा से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान सोलन जिला के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने अगले दो दिन तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रखने की संभावना जताई है।
3: हिमाचल प्रदेश में WD कल 11 जून से हुआ है और ये जो है रुक रुक के इसका असर हमें 13 जून तक पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिड हिल्स लोअर निचले मैदानी इलाकों में दो दिनों तक हमें देखने को मिलता रहेगा। हवाओं की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज के टाइम पे 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है इन सभी जिलों में। सिरमौर जिला, शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जैसे जिलों में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है 12 जून को, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिले में ऑरेंज जारी किया हुआ है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली देश की राजनीतिक संस्कृति, जन विश्वास को किया मजबूत। पशुपालकों की आजीविका में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने चराई नीति 2026 को दी मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, मेले, उत्सव और त्यौहार हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से धर्मशाला में, दोनों टीमें तैयार। और प्रदेश में वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। वन ही धरती मां के रक्षक, करो ना इनका नाश निरर्थक।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत हैं केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष परिचर्चा। विषय है केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा 12 वर्षों में आम आदमी का सुरक्षा कवच बनाती केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं। प्रतिभागी हैं पद्मश्री से

0: मानित और रेबीज स्नेक बाइट व उपेक्षित ट्रॉपिकल डिजीज़ के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश भारती और देवेंद्र कुमार, उपनिदेशक सह नोडल अधिकारी हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी। इनसे भेंट कर रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अर्जना फुल। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश प्रमुख रितेश कपूर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ ही FM 103.7 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुना जा सकता है।
1: आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अर्चना फुल। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बहुत से क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत सरकार ने पिछले 12 वर्षों में अतुलनीय कार्य किया है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे ही पूरे विश्व में एकमात्र सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत है, जिसका मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण एवं कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJ भी कहा जाता है। श्रोताओं, आज की हमारी चर्चा का विषय है आम आदमी का सुरक्षा कवच बनती केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं। चर्चा के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री देवेंद्र कुमार, जो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी में डिप्टी डायरेक्टर कम नोडल अफसर हैं, और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमेश भारती जी, जो नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश में डिप्टी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर भारती रेबीज स्नेक बाइट व उपेक्षित ट्रॉपिकल डिजीज के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी हैं। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: सबसे पहले देवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत योजना है क्या, ये कब शुरू हुई और इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
2: देखिए अर्चना जी, इस योजना के बारे में बताने से पहले मैं वर्ष 2008-09 में जाना चाहूंगा। जो योजना है हमारी 2008-09 में केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, क्योंकि सरकार को ये लगा हमारे पास जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, इतनी हमारी 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लेकिन कोई ऐसी योजना नहीं थी जो कि जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध करवा सके। वैसे जो हमारी प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज वाली है, प्राइवेट मेडिक्लेम पॉलिसीज है, वो बहुत सी योजनाएं चल रही है, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं होता है गरीब आदमियों के पास कि वो जाके प्राइवेट मेडिक्लेम पॉलिसी को वो ले पाए या 10,000-20,000 का वो प्रीमियम दे पाए। तो भारत सरकार ने 2008-09 में एक योजना शुरू की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उस योजना में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष एक परिवार को दाखिल होने पर 30,000 रुपए तक का सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया, और उसमें सबसे पहले वो BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हमारे, उनको लेके आए। उसके बाद मनरेगा वर्कर जिन्होंने कम से कम 15 दिन काम किया वो मनरेगा के अंदर में, उनको लेके आए। फिर इसमें रेड़ी फड़ी वाले को इसमें शामिल किया उन्होंने, रेड पिकर, रिक्शा पुलर जो हमारे हैं उनको शामिल किया, इस तरह कुछ कैटेगरीज उन्होंने टैक्सी ड्राइवर वगैरह को इसमें शामिल किया। तो आते आते वर्ष 2014 के बाद 18-19 आ गया, और हुआ ये कि क्योंकि 30,000 रुपया जो था एक परिवार को एक साल में, 2008-09 में शुरू भारत सरकार ने किया था, तो 30,000 रुपया एक परिवार के लिए कम लगने लगा। भारत सरकार ने फिर ये निर्णय लिया 2018 में आके कि क्यों ना इस जो बीमा कवर है, जो सुरक्षा कवर है, उसको बढ़ा के हम कुछ और ज्यादा करें। तो इस संदर्भ में जो है भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू करने का निर्णय लिया, और एक परिवार को प्रति वर्ष 5,00,000 रुपए तक का सुरक्षा कवरेज में उपलब्ध करवाया अस्पताल में दाखिल होने पर। और 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को पूरे भारत में शुरू किया, और हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना को 23 सितंबर 2018 को आरंभ किया गया। वैसे ये देखा गया है जो भारत सरकार का जो मानना है इस योजना को शुरू करने के पीछे, कि एक गरीब इंसान अपने परिवार के सदस्यों को अस्पताल में दिखाने के लिए नहीं ले जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दिहाड़ीदार है जो कि दोपहर को कमाता है और शाम को जाके अपने परिवार का पेट पालता है, उसको खिलाता है, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल में लेके नहीं जाता है। कारण क्या है? डर। उसको सबसे पहला कारण ये होता है कि उसको ये डर रहेगा कि पता नहीं कौन सी बीमारी निकलेगी या डॉक्टर कौन सा, मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, और उस दिन वो अपने परिवार को कुछ खिला भी पाएगा कि नहीं, जब वो दिहाड़ी नहीं लगा पाएगा वो गरीब आदमी। और भारत सरकार और प्रदेश सरकारों ने इस दर्द को समझा, तब वो इस योजना को लेके आए कि कम से कम उसके पास ये अगर आयुष्मान भारत का कार्ड है उस परिवार के पास, तो उसको अस्पताल में जाने का डर नहीं है कि कितना खर्चा आएगा, और इसका इलाज जो है निशुल्क जो है चयनित अस्पतालों में किया जाता है। तो ये कारण था इस योजना को लागू करने का, जो भारत के गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाए।
1: तो इसमें जो एक आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है, क्या जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, कोई फीस है इसकी?
2: जी नहीं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनाने के लिए किसी तरह की कोई फीस का भुगतान इसमें नहीं करना पड़ता है।
1: जी देवेंद्र,

0: कृष्णा जी, तो इस योजना के पात्र कौन लोग होते हैं और पात्रता के लिए क्या करना पड़ता है? क्या इसके लिए कोई आय की सीमा भी है?
1: इस योजना के अंतर्गत देखिए, हमारा जो सेंसस का जो सर्वे होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो सर्वे हुआ था, उसमें कुछ डेप्रिवेशन क्राइटेरिया था। जो भी अभी सेंसस का सर्वे चला हुआ है, तो उस डेप्रिवेशन क्राइटेरिया के आधार पर D1 से लेके D7 तक जो डेप्रिवेशन क्राइटेरिया है, उसमें D6 को भारत सरकार ने नहीं लिया है। जैसे किसी का कच्चा घर है, किसी के पास घर नहीं है, ये D1 क्राइटेरिया में आते हैं। डी डेप्रिवेशन का जो 2 क्राइटेरिया होता है, जिसमें अगर परिवार में 18 से 59 साल का कोई एडल्ट मेंबर नहीं है, मान लीजिए 18 से कम साल के बच्चे हैं। डेप्रिवेशन 3 क्राइटेरिया जो है, उसमें फीमेल हेडेड जो हाउस होल्ड है, मतलब परिवार का मुखिया जो एक महिला है, और 16 से 59 साल का उसमें कोई भी मेल परिवार का सदस्य नहीं है। D4 का जो हमारा क्राइटेरिया है, अगर हम कहें विशेष पर्सन या स्पेशली एबल्ड अगर हम बात करते हैं, अगर परिवार का मुखिया स्पेशली एबल्ड है उसमें और वो कमाने के लायक नहीं है। D5 जो क्राइटेरिया है हमारा, वो SC ST हाउसहोल्ड से रिलेटेड है। D6 क्राइटेरिया वैसे लिटरेसी रेट से रिलेटेड है, तो इसको एक्सक्लूड किया गया है। और D7 का जो क्राइटेरिया, जो हमारा मेजर जो लेबर क्लास जो लोग होते हैं, जैसे दिहाड़ीदार की हम बात करते हैं, तो डेप्रिवेशन का 7 क्राइटेरिया इसमें ये रखा गया है। और इस योजना की जब दिशा निर्देश बनाए जा रहे थे, गाइडलाइन बनाए जा रहे थे, तो SECC 11 को भारत सरकार ने लिया, लेकिन कुछ राज्यों में उस दौरान की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही थी। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया इसमें कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत लाभार्थी हैं, चयनित लोग हैं, उनको भी इसमें डेप्रिवेशन SECC 11 के साथ साथ उनको भी इसमें डाला जाए। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो SECC 11 का जो डेप्रिवेशन क्राइटेरिया है, प्लस जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के 2014-15 के जो लाभार्थी थे, उनको भी इस योजना में डाला गया।
0: तो इसकी पात्रता के लिए क्या करना पड़ता है?
1: इसमें पात्रता के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास माननीय प्रधानमंत्री जी से आया हुआ पत्र है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेप्रिवेशन क्राइटेरिया के बेस पे है, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का 2014-15 का जो कार्ड है, अगर किसी परिवार में वो है, तो वो इस योजना के लिए पात्र है। इसमें मैं एक और बात बनाना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत जैसे पात्रता की आपने बात की, तो कार्ड कैसे बनाया जाता है? जब योजना को शुरू किया गया था, तो इसमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भारत सरकार ने एक बनाया था, BIS जिसको हम कहते हैं, 1.0 था वो। उसके अंतर्गत किसी भी लोक मित्र केंद्र में जाके या पंजीकृत अस्पताल में जाके व्यक्ति अपनी पहचान बता के कार्ड बनवा सकता था, और उसमें व्यक्ति के नाम के आधार पे, उनके डेमोग्राफिक डिटेल हम कहते हैं जिला गांव का नाम, उसके आधार पे, राशन कार्ड के आधार पे और मोबाइल नंबर के आधार पे अपने वो आंकड़े डिटेल सर्च करवा सकता था, वहां पे कार्ड बनवा सकता था। लेकिन भारत सरकार ने 2 वर्ष पहले बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम 2.0 लागू कर दिया है। अब उसके आधार पे आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना आधार नंबर डाल के भी कार्ड बनवाया जा सकता है, वो व्यक्ति खुद भी बनवा सकता है। अगर उसके परिवार के सदस्यों का किसी का कार्ड पहले से ही बना है, तो व्यक्ति उस ऐप को डाउनलोड करके आइडेंटिफिकेशन डाल के EKYC करवा के अपना कार्ड बनवा सकता है। और अगर उसमें कार्ड नहीं बना है, जो भी नजदीकी लोक मित्र केंद्र है या आशा के थ्रू या नजदीकी अस्पताल में जाके वो कार्ड बनवा सकता है।
0: तो उसका सरलीकरण जो है भारत सरकार ने किया है, जो कार्ड बनवाना होता है। तो आयुष्मान भारत के लाभार्थी जो हैं, वो कहाँ कहाँ अपना इलाज करा सकते हैं और इसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, और क्या अगर कोई अस्पताल में एडमिट होता है तभी इसका बेनिफिट मिलता है?
1: इस योजना के अंतर्गत 1949 तरह की स्पेशलिटीज के अंदर बीमारियां कवर है, जिसमें की 3227 तरह की अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं कवर है, और इसमें हमारा मेडिकल मैनेजमेंट से लेके सर्जरी तक सारी बीमारियां इसमें कवर की गई है। फिर भी अगर कोई सर्जरी इसमें कवर नहीं होती है इस योजना के अंतर्गत, तो भारत सरकार ने अनस्पेसिफाइड करके एक बीमारी का नाम दिया है, उसमें वो अस्पताल अपनी डिटेल डाल सकता है पेशेंट का इलाज करने के लिए, उसमें वो कवर किया जा सकता है। तो जिस भी राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने योजना के अंतर्गत किसी अस्पताल को पंजीकृत किया है, वहां पर जाके पूरे भारत का लाभार्थी, पूरे भारत से कहीं से भी, जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश का लाभार्थी कहीं पे भी जाके पंजीकृत अस्पताल में, चाहे वो निजी अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है या भारत सरकार का अस्पताल है, वहां पे जाके वो इलाज करवा सकता है। और अगर मैं बात करूं कि कितने अस्पताल इस योजना के अंतर्गत भारत में पंजीकृत है, तो लगभग 29,000 अस्पताल इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में पंजीकृत है, जिसमें से कि लगभग 12,500 अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं और लगभग 16,000 के करीब जो अस्पताल है वो सरकारी क्षेत्र के हैं। इसके अलावा हमारे लगभग 250 के करीब जो अस्पताल हैं, वो एम्स जैसे हम मिलाते हैं, या भारत सरकार के जो अस्पताल हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो अस्पताल हैं, वो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है।
0: तो अगर कोई व्यक्ति पहले सरकारी अस्पताल में जाता है और फिर जैसे रेफर करने का एक प्रोसीजर रहता है, तो उसके बाद वो प्राइवेट में जा सकता है उसी कार्ड।
1: और दूसरा, आपने जो अभी रेफरल की मुझसे बात कही, तो इस योजना के अंतर्गत क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है कि जो लाभार्थी है वो किसी भी अस्पताल में जाने के लिए स्वतंत्र है, तो इसमें किसी तरह का रेफरल की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर व्यक्ति चाहे तो किसी भी पंजीकृत निजी या सरकारी अस्पताल में, जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल समझता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा इलाज मिलेगा, वहाँ पे जाके वो इलाज करवा सकता
0: है। नहीं, लेकिन अगर एक व्यक्ति एक अस्पताल में जाता है ये सोच के कि मेरा पूरा इलाज वहाँ हो जाएगा, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स को लगता है कि यहाँ नहीं हो पाएगा, तो इन्हें किसी बड़े अस्पताल

0: जाना चाहिए, निजी या सरकारी, तो ऐसी स्थिति में उसको वो सुविधा मिलेगी?
1: बिल्कुल मिलेगी जी, किसी भी अस्पताल में जा सकता है। अगर उसको रेफर भी करते हैं तो वहाँ पे जाके वो पंजीकृत अस्पताल होना चाहिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वो अस्पताल पंजीकृत होना चाहिए, तो वहाँ पे जाके उसको वो सुविधा मिलेगी।
0: तो ये आपकी वेबसाइट जो आयुष्मान भारत की है उस पे पंजीकृत अस्पतालों का ब्यौरा रहता होगा?
1: जी, उसमें पंजीकृत अस्पतालों का पूरा ब्यौरा रहता है और किस स्पेशलिटी के लिए वो अस्पताल पंजीकृत है उसके साथ उसका ब्यौरा रहता है। कि अगर कोई व्यक्ति उस वेबसाइट पे जाके या आयुष्मान ऐप पे भी जाके भी अगर वो अस्पतालों की सूची देखना चाहता है तो वहाँ से भी वो सूची देख सकता है।
0: जी देवेंद्र जी, एक विषय जो हिमाचल जैसे ग्रामीण राज्य में बहुत महत्व रखता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो है एनिमल बाइट्स व सर्पदंश। तो बहुत सारे लोग इससे पीड़ित भी रहते हैं, तो क्या इस तरह की इमरजेंसीज भी आयुष्मान भारत में इंक्लूडेड है?
1: इस योजना के अंतर्गत लगभग 3227 प्रक्रियाएं शामिल की गई है, तो उसमें सभी कुछ शामिल किया गया है। एनिमल बाइट्स, डॉग बाइट्स भी और सर्पदंश की जो आप बात कर रहे हैं ये भी इस योजना में शामिल किया गया। अगर किसी को ये समस्या आ जाती है, कोई दुर्घटनावश, अगर तो हम दुर्घटना ही कहेंगे ना, अगर किसी को डॉग काट दे या सांप किसी को काट दे, अगर वो अस्पताल में जाते हैं तो उनका इलाज जो है योजना के अंतर्गत निःशुल्क करने का इसमें प्रावधान।
0: डॉक्टर भारती, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में एनिमल बाइट्स, खासकर डॉग बाइट्स और स्नेक बाइट की समस्या कितनी गहन है?
2: देखिए, हमारा जैसे कहा कि 80% जो भाग है वो रूरल एरिया में है, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और गांव में हमारे एनिमल बाइट की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि डॉग बाइट के अलावा हमारे पास लंगूर बाइट या दूसरे जो जंगली एनिमल हैं, चीता का अटैक जो है या भालू का अटैक जो है वो हमारे गाँव में होता है, तो ये एक बहुत ही भयावह समस्या है एनिमल बाइट। और सिमिलरली स्नेक बाइट भी एक बहुत बड़ी आबादी जो है गाँव में रहने की वजह से, जंगली एरिया होने की वजह से स्नेक बाइट भी बहुत ज्यादा हिमाचल में प्रेवलेंट है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ समय पहले तक, मान लो कुछ साल पहले तक, ये दो समस्याएं जो थी वो किसी के, कोई ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट का इसमें कोई प्लान नहीं था, तो लोग अपने भरोसे पे थे और ज्यादातर लोग जो है खुद ही इलाज कराते थे। लेकिन अभी कुछ समय से, पिछले 4-5 सालों से भारत सरकार ने इन दोनों समस्याओं के लिए नेशनल प्रोग्राम बनाए। नेशनल प्रोग्राम बनाने से इसमें कई चीजें जुड़ गई, इसकी मॉनिटरिंग शुरू होगी, इसमें ट्रेनिंग शुरू होगी, इसमें दवाइयां आनी शुरू होगी, इसमें मुफ्त इलाज शुरू हो गया। तो ये जो दो समस्याओं के लिए भारत सरकार ने जो दो नेशनल प्रोग्राम बना दिए, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट, तो ये दो बड़े प्रोग्राम जो हैं अभी पिछले 5 सालों में जो हैं रिलीज हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, और उससे जो है लाखों लोगों का जो गांव में रहते हैं खास करके उनका भला हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि पिछले जो हम पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे कि हमारी एनिमल बाइट से दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, 20,000 के करीब मौतें होती हैं, और स्नेक बाइट से 50,000 से ज्यादा जो भारत में जो है मृत्यु दर है स्नेक बाइट से, तो वो जो एक टैग था कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो है एनिमल बाइट और स्नेक बाइट से भारत में होती है, तो वो दर बड़ी शार्पली कम हुई है। और जब ये दो नेशनल सर्वे हुए हैं उसमें से हम देखें तो 20,000 से हम एनिमल बाइट में डेथ जो है लगभग 6,500 के करीब आई है, और इसी तरह से स्नेक बाइट की 50,000 जो डेथ होती है उनकी भी लगभग इतनी 6-7,000 के आसपास जो है इस वक्त जो सर्वे कराए हैं ICMR ने, उसमें डेथ जो है 3 गुना कम हुई है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा उल्लेखनीय काम जो साइलेंटली हुआ है, जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों ने नहीं दिया है, और पूरे वर्ल्ड के भी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस पे अभी तक ये इसको अप्रिशिएट इतनी ज्यादा नहीं किया है। लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारा एक टैग था कि भारत जो है वो एनिमल बाइट की डेथ में और स्नेक बाइट की डेथ में विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो वो टैग शायद इन योजनाओं की वजह से कम हो जाए।
0: देवेंद्र जी, माइग्रेंट वर्कर्स और वृद्ध लोग, माइग्रेंट वर्कर्स की भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो दूसरी स्टेट में जाके काम करते हैं, तो वो अपना कार्ड कहाँ बनवाएं, और क्या वृद्ध लोग जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं इस बेनिफिट के लिए?
1: इस योजना के अंतर्गत एक सुविधा ये दी गई है कि माइग्रेंट लेबरर हो या वर्कर हो जिसका नाम SECC-11 जो डेटाबेस है उसके हिसाब से, या RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अगर उसका नाम भारत सरकार के डेटाबेस में उपलब्ध है, वहाँ पे पाया जाता है, तो व्यक्ति पूरे भारत में कहीं पे भी जाके कार्ड बनवा सकता है और कहीं पे भी जाके वो इलाज ले सकता है। दूसरा, आपने वृद्ध व्यक्तियों के लिए बात कही, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में एक निर्णय लिया गया था भारत सरकार के द्वारा जिसमें कि 70 वर्ष या उससे अधिक के आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल, इसका मतलब ये है कि उनकी इनकम लेवल चाहे कुछ भी हो, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं और कार्ड वो बनवा सकते हैं उस योजना के अंतर्गत। और अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हमारे हिमाचल में लगभग 1,05,000 ऐसे 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक है जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनवाया।
0: जी, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक कितने परिवार आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं?
1: कि हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसने 100% सैचुरेशन, हम इसको वर्ड बोलते हैं, कि जो टारगेट भारत सरकार ने दिया प्रदेश को कि इतने परिवारों को आपको योजना में शामिल करना है, तो हिमाचल प्रदेश ने परिवारों

0: और व्यक्तिगत
1: जी
0: परिवार के अंदर व्यक्ति होते हैं, तो लगभग हमारा यहाँ टारगेट था कि 14,66,000 के करीब व्यक्ति थे जो इस योजना के अंतर्गत जिनको पंजीकृत करना था, तो उनका हम हिमाचल प्रदेश ने 14,66,000 से ज्यादा लोगों को इसमें ई केवाईसी कर दिया है, शत प्रतिशत इसमें लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया है।
1: जी
0: और मैं आपको एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा कि 2024-25 में ही भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया था कि जो आशा है हमारी स्वास्थ्य विभाग की, आंगनवाड़ी वर्कर है और आंगनवाड़ी हेल्पर है, इन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाए। तो आशा 6,711 आशाओं ने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनाया है, 18,128 आंगनवाड़ी वर्कर ने बनाया है और 22,167 आंगनवाड़ी हेल्पर ने इस योजना के अंतर्गत कार्ड बनाया है। तो अलग अलग कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हमारे CAPF के अंतर्गत जो आते हैं हमारे सेंट्रल आर्म जो पुलिस फोर्सेज है उसके अंतर्गत, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उन्होंने ये निर्णय लिया था कि इन्हें भी आयुष्मान भारत योजना में लाभ दिया जाए, तो भारत सरकार ने इनको भी आयुष्मान भारत योजना में चयनित कर लिया है।
1: तो हिमाचल में तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ है
0: हाँ
1: इसमें।
0: जी,
1: कितना खर्च अभी तक भारत सरकार इस योजना पे हिमाचल प्रदेश में कर चुकी है?
0: हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, इसमें जो खर्चा होता है हिमाचल सरकार का और भारत सरकार का मिला के होता है, तो
1: जी
0: अभी तक जो इलाज जो लोगों ने लिया है लगभग 600 करोड़ का इलाज हिमाचल प्रदेश के लोगों ने प्रदेश में और प्रदेश के बाहर जो पंजीकृत अस्पतालों में वो ले लिया है इस योजना के अंदर
1: अभी तक
0: जी।
1: 2018 के बाद
0: हाँ जी,
1: तो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में आयुष्मान भारत लागू करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे रास्तों की दिक्कत है, यहाँ पे इंटरनेट की दिक्कत है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए जो आती थी वो थी ई केवाईसी करवाना,
1: जी
0: कि कोई भी लाभार्थी है जिस व्यक्ति का डेटाबेस में नाम है। अगर हम बात करते 2022 तक की जो कोविड का भी टाइम था, कोविड के बाद 22-23 की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी जो मैंने सेचुरेशन की बात करी, हम 68% सेचुरेशन पे थे, जो हमारा टारगेट था उससे लगभग 68% लोगों को हमने इस योजना में कवर किया था। 22 के बाद थोड़ा अभियान स्तर पे ये प्रदेश में किया गया, जब प्रदेश में सरकार बदली यहाँ पे, तो उसके बाद अभियान स्तर पर यहाँ पे काम किया गया कि सभी लोगों को यहाँ पे कवर करना है। तो 23-24 में जो है घर घर जाके लोगों को आइडेंटिफाई करके लोगों को हमने भेजा और वहां पे उनका ई केवाईसी करवाया। तो थोड़ी इंटरनेट की भी समस्या आती है, जैसे अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति किन्नौर, जो हमारे ट्राइबल एरिया है, चंबा के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे पहुंचना मुश्किल था, लेकिन वो टीमें घर घर गई, उन्होंने लोगों के कार्ड बनवाए और 2025 में हम ये सैचुरेशन, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हम ये सैचुरेशन अचीव कर पाए कि हमने 100% लोगों को इसमें आयुष्मान भारत में कार्ड दिया। दूसरी जो प्रदेश को जो समस्या आ रही है, जो हम बात करते हैं फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत आपने अभी पूछा था कि कितना खर्चा भारत सरकार ने इस योजना में किया है, 90-10 भारत सरकार 90% वहन करती है, प्रदेश सरकार 10% वहन करती है। लेकिन उसके लिए अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार ने प्रति परिवार एक सीलिंग लगाई है इस योजना में, कि भारत सरकार प्रदेश को प्रति परिवार 1,052 रुपए एक सीलिंग है जिसका 90% भारत सरकार देती है। योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह है कि प्रदेश को भारत सरकार से लगभग 50 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आ रहा है, लेकिन हमारा जो प्रदेश सरकार का जो खर्च इस योजना पे हो रहा है वो लगभग 120 करोड़ रुपया 1,20 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रतिवर्ष होता जा रहा है। तो भारत सरकार से केवल 50 करोड़ आ रहा है और प्रदेश सरकार से लगभग 80 से 90 करोड़, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो 154 करोड़ रुपया खर्च 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत हुआ है और प्रदेश को 50 करोड़ प्राप्त हुआ है, तो लगभग 100 करोड़ प्रदेश ने अतिरिक्त इस योजना में वहन किया है।
1: डॉक्टर भारती, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हिमाचल की मैं बात कर रही हूँ, क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं डॉग बाइट या स्नेक बाइट के मरीज, खास कर मैं कहूंगी, उनको टैकल कर पाती है?
2: देखिए, अब तो क्योंकि राष्ट्रीय योजनाओं की भी सपोर्ट है और नेशनल हेल्थ मिशन से भी फ्री ड्रग इनिशिएटिव की सपोर्ट है और हमारी लोकल परचेजेस जो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है उसकी भी सपोर्ट है, तो कभी एक समय था जबकि ये दवाइयां उपलब्ध नहीं होती थी और लोग बाजार से भी खरीद नहीं पाते थे, महंगी भी होती थी। तो अब जो ऐसी स्थिति है कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ये दवाइयां उपलब्ध हैं और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो डॉग बाइट है वो 10 गुना बढ़ गया है पिछले 5-7 सालों में, यानी कि यदि 10,000 डॉग बाइट होते तो अब लगभग 1 लाख के आसपास जो है एनिमल बाइट हो रहे हैं और स्नेक बाइट भी बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह कि क्योंकि दवाइयां उपलब्ध हैं, उनका उपचार उपलब्ध है, डॉक्टरों की और दूसरे पैरामेडिकल की ट्रेनिंग्स हुई हैं, आशा वर्कर की ट्रेनिंग्स हुई हैं, तो वो हमारे हिमाचल में भी वो डेथ रेट जो है वो काफी कम हुई है।
1: देवेंद्र जी, हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इतनी सुविधाएं हैं जो आयुष्मान भारत में, आपने कहा कि हम बहुत सारी बीमारियां कवर करते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जो है हिमाचल में आयुष्मान भारत कार्ड का पूरा लाभ उठा सके?
0: इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में नहीं थी
1: जी।
0: अभी अगर हम बात करते हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बात करते हैं, तो हमारे पास लगभग 6 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ प्रदेश में हमारे मेडिकल कॉलेजेस में दी जा रही हैं, तो यहाँ पे सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं जो कि लोग यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो है तो लाभ उठा पा रहे हैं या उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जो अगर हम प्रदेश के बाहर की भी बात करते हैं, तो PGI चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, हमारे जो यहाँ के हिमाचल के लोग हैं उनका सबसे ज्यादा फेथ भी PGI चंडीगढ़ पे रहता है, हमारा वैसे सबसे ज्यादा इलाज हिमाचल के सरकारी

0: अस्पतालों में हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है कि लोगों को इस योजना के अंतर्गत निशुल्क चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जा सके। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि अस्पतालों में इलाज करने के लिए लाभार्थी को क्या करना पड़ता है, कि जब भी कोई लाभार्थी अस्पताल में जाएगा तो उसको कहाँ पे जाना है, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत से लोग इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए लाभार्थी को कि कहाँ पे उसको जाना है। जब भी कोई लाभार्थी अस्पताल में इलाज करने के लिए जाता है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र इस योजना के अंतर्गत जो अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा लगाया गया इस कार्य के लिए जो भी उनके चिकित्सक होंगे उनके पास दिखाएंगे। अगर उनको लिखा जाता है कि आपका सर्जरी होनी है, एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी है और उसका अल्ट्रासाउंड करवा दिया उन्होंने और चेक किया कि 20 mm का एक स्टोन निकल के आ गया उसको, तो उसकी सर्जरी होनी है, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड कर देते हैं कि आप सर्जरी करवाइए। वो आयुष्मान भारत का कार्ड दिखाता है और डॉक्टर के पास कोड अवेलेबल है इसका, कि ये कोड इस सर्जरी का है, वो कोड उसको लिख के देगा, आरोग्य मित्र के पास वो व्यक्ति जाता है। आरोग्य मित्र के पास वो लाभार्थी जब जाता है तो आरोग्य मित्र उसकी एंट्री करेगा, उसका बायोमेट्रिक आधार से उसका EKYC मैच किया जाता है और व्यक्ति का पंजीकरण योजना के अंतर्गत कर दिया जाता है और उसके सारे कागजात जो है अपलोड कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है इसका, सारा रियल टाइम बेसिस पे है और अपलोड करने के बाद प्री ऑथोराइजेशन पैनल डॉक्टर के लॉगिन में वो चले जाता है, वो उसको चेक करेगा, उसको वो अप्रूवल दे देगा उसके बेस पे कि ट्रीटमेंट कर दिया जाए। अस्पताल के द्वारा उसका निःशुल्क इलाज कर दिया जाता है। निःशुल्क इलाज करने के बाद वो दोबारा से डिस्चार्ज पे वही आरोग्य मित्र के पास जाएगा और अब बायोमेट्रिक अपना अंगूठा का निशान लगाएगा और अपना डिस्चार्ज वहां से करवाएगा। साथ में वो आरोग्य मित्र उसके क्लेम फाइल जो भी उसके OT नोट्स हैं या अलग जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं, जो भी डॉक्टर ने प्रोसीजर किया है उसका 3-4 दिन वो रह के उसको जो इलाज करवाया है वो उसकी फाइल वो अपलोड कर देगा, फिर वो क्लेम के लिए भेज देगा, तो वो क्लेम पैनल डॉक्टर के पास चले जाता है, वो उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ से शिमला से SHA से उसको पेमेंट कर दी जाती है। तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन रहता है, लाभार्थी के कार्ड बनवाने से लेके अस्पताल में इलाज करवाने तक और अस्पताल को पैसा जाने तक सारा सिस्टम ये ऑनलाइन रहता है।
1: लेकिन हम सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग जो है वो अनअवेयर रहते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, कि डिफिकल्ट एरियाज में वो रहते हैं, जानकारी उन तक पहुंचती नहीं है, तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और जैसे कि आपने बताया कि अस्पताल जाकर उनको क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपका क्या प्रोग्राम रहता है?
0: अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस योजना के अंतर्गत एक चीज रहती है, सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस का है वो हमारी आशा होती है, स्वास्थ्य विभाग की आशा होती है, उसको इस योजना की पूरी जानकारी दी गई है क्योंकि वो घर घर जाती है सभी के पास और वो लोगों को इस योजना के बारे में बताती है कि आपकी ये योजना है। सबसे बेस्ट जो रहता है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की बात अंगत, मान लीजिए मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, मैं अपना इलाज निशुल्क करवा के आता हूँ, तो मैं अपने पड़ोसी को जरूर बताऊंगा जाके कि मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड था, मैंने अपना निशुल्क इलाज करवाया, मुझे अस्पताल में पैसा न लगे, तो पड़ोसी भी देखेगा कि मेरा इसमें नाम है कि नहीं है। BMO लेवल पे जो मंथली मीटिंग्स होती है और पंचायत स्तर पे जो मीटिंग्स होती है उसमें हमारे BMO ऑफिस से व्यक्ति जाते हैं, जो फीमेल हेल्थ वर्कर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अगर हम बात करते हैं आशा जाती है, वो भी पंचायतों में इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं इस योजना के बारे में। हिमाचल के जो नागरिक है वो बहुत अवेयर है इस योजना के बारे में, अगर हमारे 100% सैचुरेशन अचीव की है हिमाचल जैसे राज्य ने यहाँ पे और इतना लोगों ने इलाज लिया है, एक पहाड़ी राज्य की बात है, 600 करोड़ पिछले 8 साल में छोटे से राज्य के लिए इतने बड़ा इलाज लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि इतने लोगों को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इसमें लाभ लिया है।
1: जी बिल्कुल, ये वाकई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन ने भी बहुत सी चुनौतियां खड़ी की हैं, खासकर हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं?
0: मुश्किलें आती है, हमें भी मुश्किलें आई थी, जो मैंने आपको बात बताई की हमने घर घर लोगों को भेजा। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो सर्दियों का जो समय आता है जो 6 महीने वो बर्फ से कटा रहता है, कुछ हमारा जो स्पीति का जो एरिया है वो लोग कुल्लू आ जाते हैं या रामपुर चले जाते हैं, तो हमने लोगों को ढूंढ ढूंढ के कि आपका नाम आयुष्मान भारत में है वहाँ पे उनके हमने कार्ड बनवाए। मुश्किलें आई हमें क्योंकि इंटरनेट की समस्या रहती है, पहाड़ी एरिया है, क्योंकि ये योजना बिल्कुल ही ऑनलाइन चलती है।
1: नहीं, लेकिन इसमें सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपने बताया कि अस्पताल जाके भी ऑनलाइन ही सब कुछ अपलोड होता है, तो उसमें जो समय काफी बर्बाद होता है लोगों का, तो उसको चेक करने के लिए आपके पास क्या समाधान है?
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अगर हम बात करते हैं, डिजिटाइजेशन भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है जिसमें की आभा बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जा रहे हैं, लगभग 65 लाख लोगों के आभा हिमाचल में चुके हैं। अभी जो समय की अगर हम बात करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हमारे 53 अस्पताल हैं प्रदेश के जिसमें कि QR कोड्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें आभा ऐप कितने रखी है अपने पास, उसमें QR कोड स्कैन करेगा, उसमें लाइन को लगने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पर्ची उसकी आ जाएगी और टोकन नंबर के थ्रू उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, इसमें डिजिटल होना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी योजना चलाई जाती है तो ऑफलाइन मोड पर योजना नहीं चल सकती है, व्यक्ति के जो इलाज के कागजात है वो सारे डिजिटली रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इतना समय भी नहीं लगता है, बट ये आसान चीजें कर दी गई है, क्योंकि इसमें देखिए व्यक्ति का प्री ऑथराइजेशन से लेके उसका इलाज होने तक और अस्पताल को पैसा जाने तक सारी चीजें ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं करना होता है।

0: ट्रांसपेरेंसी पूरी है इस योजना के अंतर्गत
1: जी।
0: कि सारी चीजें ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही सब कुछ जाता है, जो पैसा है उस अस्पताल के बैंक अकाउंट में चला जाता है। और तीसरी मैं एक चीज और बात करता हूँ, अगर हम निजी अस्पतालों की बात करते हैं तो इनकम टैक्स क्लॉज 194J है इसमें, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम किसी निजी अस्पताल को इन योजनाओं के लिए अगर हम पैसा देते हैं तो 10% TDS काटने का, जब निजी अस्पताल को पैसा जाता है तो ऑटोमेटिकली वो 10% TDS कट के चला जाता है और जो 10% है वो सरकार के खाते में जमा हो जाता है।
1: जी डॉक्टर भारती, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे डॉग बाइट पे जो खर्चा होता है वो तो लगभग सारे अस्पताल जो है वो फ्री में अब उपचार उसका कर रहे हैं, चाहे एंटी रेबीज वैक्सीन हो या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जो गांव में लगाई जाती है, लेकिन स्नेक बाइट पे लोगों का बहुत खर्चा होता है। और देवेंद्र जी ने जैसे बताया कि आयुष्मान भारत में वो कवर्ड है, तो आपको क्या लगता है कि स्नेक बाइट विक्टिम्स जो हैं क्या वो आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं हिमाचल प्रदेश?
2: डेफिनेटली हमने कभी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि कोई डॉग बाइट का विक्टिम है या एनिमल बाइट का या स्नेक बाइट का विक्टिम है उसको कोई बड़ा ज्यादा खर्चा अपनी जेब से करना पड़ा, ऐसी कोई हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट आई नहीं है। इसका मतलब यही है कि लोग जो है इन योजना का फायदा उठा रहे हैं और अपने आप को जो है वो मौत के मुंह से बचा रहे हैं।
1: जी डॉक्टर भारती, आपको हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के एक्सपर्ट ग्रुप का भी सदस्य बनाया गया है। भारत सरकार ने विभिन्न ऐसी बीमारियां जो नेग्लेक्टेड हैं उनकी रोकथाम और निदान के लिए क्या कदम उठाए हैं और उससे पूरे भारत में और हिमाचल में उसका क्या असर हुआ है?
2: देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले डॉग बाइट स्नेक बाइट एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम नहीं था, तो ना तो इन बीमारियों की कोई मॉनिटरिंग होती थी ना ही कुछ पता चलता था। तो इसी तरह से जो बाकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं उसमें मान लो मलेरिया है, लिशमेनियासिस है, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है और रेयर सेल डिजीजेज हैं, इस तरह की जितनी भी डिजीजेज हैं उन सबके भारत सरकार ने प्रोग्राम बनाए हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि उन सब प्रोग्राम्स का जो है वो लाभ गाँव तक गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुँच रहा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उन सारी प्रोग्राम्स की, उन बेनिफिशियरी की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग हो रही है। आज हम ये कह सकते हैं कि थैलेसीमिया से कितने बच्चे जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं, कितनों की डेथ हो रही है, प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो 20 से अधिक राष्ट्रीय प्रोग्राम भारत सरकार के बने हैं उन्होंने लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा गांव-गांव तक पहुंचाया है। और जैसे हमारी इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है या इमरजेंसी सर्विसेज अब भारत सरकार जो है वो लॉन्च करने जा रही है सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी अप टू CSC लेवल तक, जबकि लक्ष्य PSC लेवल तक है। तो मैं समझता हूँ जो ये रोड एक्सीडेंट है और जो इस तरह की इमरजेंसीज है ताकि गोल्डन आवर में इमरजेंसी सर्विस में लोगों को ले जाया सके या उनकी जान बचाई जा सके, तो एक बहुत एम्बिशियस जो प्रोग्राम भारत सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों के बेनिफिट के लिए चलाया है और आगे भी चला रहे हैं, दैट इज इन प्लान।
1: जी देवेंद्र जी, योजना से संबंधित जो शिकायतें आती हैं, जैसे कुछ लोग निश्चित रूप से करते होंगे और जिनको लाभ नहीं मिलता, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रावधान है, वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं?
0: भारत सरकार का टोल फ्री नंबर है 1455
1: जी,
0: वहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं। और एक CGRMS पोर्टल भारत सरकार के चलता है और एक PMO पोर्टल है, PG पोर्टल है, उस पर भी वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन मैं हिमाचल की अगर बात करूं तो हिमाचल में हमने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए, अस्पतालों में वो नंबर फ्लैश होते हैं, अगर किसी को कोई भी समस्या आती है तो वो उस ग्रुप के माध्यम से हम तक अप्रोच कर सकते हैं और इमीडिएटली उसकी समस्या को हम सुलझा देते हैं। और ग्रीवेंसीज की अगर हम बात करते हैं, ग्रीवेंसीज तो आइडली वैसे नहीं आती है, ये आती है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आती है कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो हम उसको रियल टाइम बेसिस पे ऑन द स्पॉट हम उसको रिजॉल्व करते हैं।
1: जी जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि लोगों के मन में ये डर रहता है कि जब उनको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनका खर्चा होगा, तो हमें लगता है कि जो आयुष्मान भारत है उसने लोगों के मन से ये डर भी खत्म किया है। और जो लोग एक्सीडेंट विक्टिम्स को पहले उठाते नहीं थे अब वो भी उठा के ले जाते हैं कि उनको लगता है कि हमें अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा, तो इस दिशा में भी आयुष्मान भारत का एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो पूरे भारत में रहा है और हमारे प्रदेश में भी खासकर रहा है।
0: जी जैसे आपने एक्सीडेंट की बात करी, भारत सरकार ने एक और योजना मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड एंड हाईवे है PM राहत योजना अभी शुरू की है, उस योजना के अंतर्गत अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो 1.5 लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क उस योजना के अंतर्गत हो रहा है।
1: जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। श्रोताओं, इस चर्चा को अब हम यही विराम देते हैं। देवेंद्र जी और डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी स्टूडियो में आए और आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।

0: लीजिए सुनिए, प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य पर लोक कलाकार कमर सिंह से सपना ठाकुर की भेंट वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी ने न केवल समाचार और विचारों को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि संगीत, संस्कृति और कला को भी नई पहचान दी। आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार जिन्होंने लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, दिलरुबा वादन जैसी अनेक विधाओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कमर सिंह जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: कमर सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रेडियो में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई, कब से आपने रेडियो सुनना शुरू किया?
2: हाँ, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब से समझ लीजिए कि जब से मैंने होश संभाला है, क्योंकि हमारे पिताश्री ने एक रेडियो खरीद रखा था और मुझे याद है कि वो एक निप्पन कंपनी कोई जापान की थी, वो रेडियो उन्होंने खरीदा था और पूरे गांव में सिर्फ हमारे घर में ही रेडियो था। और उसमें कार्यक्रम जो भी आते थे वो कान में पढ़ते रहे। जब थोड़ा होश आया तो मुझे याद है कि शिमला रेडियो तो था नहीं उस ज़माने में, और ये 60s की मैं बात कर रहा हूँ
1: जी,
2: तो वहाँ से एक कार्यक्रम चलता था पर्वत की गूंज, और वो पर्वत की गूंज पूरा गांव इकट्ठा होता था उस सुनने के लिए, क्योंकि हिमाचल के कार्यक्रम उसमें ज़्यादातर, उस कार्यक्रम में हिमाचल के जो लोक गीत हैं वो प्रसारित होते थे, और बस वो कान में पढ़ते रहे, क्योंकि उस ज़माने में हम लोगों ने स्कूल में उर्दू 6ठी क्लास से हमको शुरू हो गई थी, तो उर्दू का, क्योंकि पिताजी हमारे उर्दू पढ़ाते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई उर्दू मीडियम से ही की थी, चाहे वो गणित हो, चाहे समाज हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, वो उर्दू उनका मीडियम था, तो उनका तलफ़ुज़ जो था वो बहुत अच्छा था, तो हमको बहुत अच्छा वो अट्रैक्टिव लगता था, और मेरी भी रुचि उर्दू में बहुत अच्छी थी, और 3 साल उर्दू हमने का अध्ययन किया स्कूल में 8वीं तक। उसके बाद शायद उर्दू बंद हो गई, तो होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गई
1: जी।
2: स्कूल में, तो उर्दू की वजह से हमारा जो उच्चारण जो था वो कुछ एक अदबी ज़ुबान कह लो आप, वो उस वैसा एक बनने लगा कुदरती
1: जी।
2: तो कभी कभी रेडियो से गज़लें आती थीं तो वो भी अच्छी लगी, हालांकि समझ नहीं थी इतनी, क्योंकि अरबी फारसी के शब्द तो नहीं समझ आते, लेकिन वो एक लहजा जो था वो हमारे मन को भाने लगा धीरे धीरे। फिर क्योंकि हमारे घर में पिताजी को संगीत का बड़ा शौक था, रामलीला हुआ करती थी वहाँ, तो रामलीला हुआ करती, तो उसकी वजह से हम में और भी थोड़ी रुचि उसमें होने लगी, तो कभी हारमोनियम बजाते, तो घर में हमारे हारमोनियम और तबला पिताजी ने रखा, तो वही था कि रेडियो में ये कैसे प्रसारण होता है, कैसे इसका क्या होता है तो मालूम नहीं था ये, तो फिर जब मैं शिमला आया पढ़ाई करने, तो धीरे धीरे तब जाके पता लगा कि ये रेडियो का बहुत योगदान है। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे संसार में रेडियो आया तो लोगों तक ये, जन जन तक ये पहुँचा है, और हर तरह की सूचनाएं, हर तरह का संगीत, हर तरह की विधाएं जो है ना, फिर एक जुड़ाव हो गया।
1: पहली रिकॉर्डिंग और पहला प्रसारण का कुछ अनुभव आपको याद हो? आकाशवाणी शिमला का?
2: जी जी, तो जब मेरी नौकरी हो गई शिमला में पढ़ाई करने के बाद, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मुझे अब थोड़ा रेडियो की तरफ जाना चाहिए, तो मैंने फॉर्म भर दिया। उस ज़माने मुझे लगता है कि 50 रुपये शायद फीस हुआ करती थी ऑडिशन फीस, या कम थी पता नहीं, ऐसा कुछ था, भर दिया गया। तो उस वक्त गज़ल, गीत, भजन, ये तीनों एक ही विधा में गिने जाते थे, अब तो अलग अलग हो गया, गीत भजन अलग हुआ और गज़ल अलग हो गई। तो फॉर्म भर दिया और मेरे को आकाशवाणी ने पास कर दिया, पर उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू हो गए, तो बड़ा योगदान है रेडियो का, फिर उससे मुझे पहचान भी मिली
1: जी।
2: पहचान मिली धीरे धीरे, पर ग्रेजुअली मैं करता रहा उसको, क्लासिकल की तरफ रुझान हुआ, फिर वही सीखा है ना, और

0: बाकी भी चीज़ें सीखी, सितार
1: जैसे अब हाँ
0: सीखी,
1: जी
0: दिलरुबा सीखा
1: हाँ
0: थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा तो नहीं सीखा, पर लेकिन मेहनत करने से फल उसका मिल गया, ऐसा हुआ।
1: कमर सिंह जी, कहा जाता है कि संगीत साधना, समर्पण और धैर्य मांगता है,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आप लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सेमी क्लासिकल,
0: जी जी जी
1: सुगम संगीत,
0: जी जी
1: इन विधाओं में पारंगत हैं, तो किस तरह से संतुलन आप बनाते थे?
0: हाँ
1: अलग
0: तो
1: अलग धाराएं रही हैं ये, तो किस तरह से ये संतुलन बनाया, किस तरह से आप रियाज करते थे?
0: हाँ, ये पारंगत तो खैर इस विधा में कोई हो ही नहीं पाया आज तक, जितने भी बड़े बड़े हुए हैं वो सब यही कहे कि हम सीख रहे हैं, तो स्टूडेंट ही बनकर रहना ज़्यादा अच्छा है और सीखते रहना चाहिए, जितना सीखें अच्छा है।
1: जी
0: हाँ टाइम देने की जहाँ बात है, क्योंकि ये सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो लाइट म्यूजिक हो, सेमी क्लासिकल हो, कोई भी संगीत जो कनेक्टेड है, क्यों, ताल और सुर दो चीज़ें हैं, और नृत्य भी बीच में ही आ जाता है, कि तीनों जो विधाएं हैं ना, इन तीनों कलाओं को समावेश है, तीनों को हम संगीत बोलते हैं, तो संगीत में ये सारी ही चीज़ें हो जाती, चाहे फोक हो, सुर तो वही साथ हैं, कुल मिला के वो 12 हो जाते हैं शुद्ध और
1: जी
0: विकृत करके,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उसी में ही घूमना है सब, उसी में ही वो
1: तो
0: है
1: जब
0: ना।
1: आप आकाशवाणी में पहली दफा आए रिकॉर्डिंग के लिए, आपको तब कैसा महसूस हुआ?
0: हाँ थोड़ा हल्का सा भय तो होता ही है, क्योंकि माइक को जब फेस
1: कोई
0: करता
1: ऐसा
0: है आदमी,
1: अनुभव हो जो आप साझा करना चाहें?
0: हाँ बिल्कुल, जब माइक को फेस करता है आदमी थोड़ी घबराहट तो होती है, लेकिन फिर दो चार रिकॉर्डिंग जब हो जाती है आदमी की, तो फिर वो उसका हौसला अफजाई हो जाती है, और ख़ास करके जितने भी यहाँ रेडियो स्टेशन में स्टाफ आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, वो भी सीखना ही होता है, क्योंकि
1: जी
0: सीनियर
1: बिल्कुल
0: कलाकार जो है जूनियर को जब सिखाएगा, उसके साथ सामंजस्य करेगा, तो फिर वो कलाकार सीखता ही है, पनपता ही है,
1: जी
0: ये
1: जी
0: तो इसमें होता ही है।
1: आप काफी लंबे अरसे से आकाशवाणी शिमला से जुड़े रहे हैं, तो संगीत के क्षेत्र में और संस्कृति संरक्षण में क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की, और कलाकारों के लिए क्या योगदान रहा है
0: बिल्कुल, ये
1: आकाशवाणी शिमला
0: बहुत
1: का?
0: अच्छा प्रश्न है, ये आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है, मुझे लगता है कि इसके बराबर कोई दूसरा योगदान है नहीं, तो हर कला को विकसित करने में आकाशवाणी का बड़ा रोल रहा है और रह रहा है और आगे भी रहेगा, है ना।
1: आकाशवाणी ने अनगिनत कलाकारों को मंच प्रदान किया
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी के इसी मंच से बहुत से कलाकारों ने अपना नाम कमाया है जी,
0: बिल्कुल, हाँ
1: तो आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी ने आपको किस तरह से प्रोत्साहन दिया इसमें
0: हाँ
1: आगे बढ़ने के लिए?
0: हाँ आकाशवाणी ने मुझे इतनी पहचान दी, मुझे माइक को फेस करना आया, माइक के सामने कैसे गाना स्टूडियो में, उसके साथ साथ फिर हौसला जब आदमी का खुल जाता है, तो वो स्टेज पे भी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगता है, और इसी आकाशवाणी की वजह से जो पहचान मिली है वो देश विदेश, मैं करीब करीब मुझे लगता है 7-8 देशों में जा चुका हूँ, और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत बड़ी देन है आकाशवाणी की
1: जी,
0: कि मैं इतना आगे तक जा पाया।
1: आकाशवाणी से जुड़ा संगीत जीवन का कोई ऐसा यादगार अनुभव जो आज भी आपके दिल के करीब हो?
0: हाँ आज तक जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ आए हैं शिमला रेडियो पे, जिन्होंने अपना कार्यकाल निभाया है, वो इतने प्रसन्न हुए मेरी इस प्रस्तुति से, तो काफ़ी मुझे उनसे प्यार मिला, सबसे ही मिला, और ये था।
1: अच्छा, गायकी के साथ साथ जैसे आप लोकगीत भी गाते हैं
0: हाँ
1: आकाशवाणी के माध्यम से,
0: जी
1: और आपने एक दिलरुबा
0: जी
1: वादन,
0: जी जी
1: जिसे हम कहते हैं कि वाद्य,
0: जी जी
1: उसमें भी आप निपुण हैं, तो इसकी क्या विशेषता रही और कहाँ से आपके मन में आया कि इसे भी सीखा जाए?
0: हाँ, ये जो जितने भी ये बोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें एक अलग ही कशिश होती है, चाहे वो सारंगी हो चाहे वायलिन हो, तो और दिलरुबा क्योंकि सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है, और इसराज और दिलरुबा सिर्फ थोड़ा सा ही उसमें आकृति में ज़रा सा कहीं फर्क होता है, वैसे वो एक जैसा ही है, और वो दोनों की पूर्ति कर देता है, सारंगी का आभास हो जाता है हल्का सा, तो क्योंकि उसमें फ्रेट्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, सारंगी में पर्दे नहीं होते, वो थोड़ा मुश्किल वो है, निपुणता जहाँ तक निपुण तो

0: मुश्किल है निपुण होना, और कहना भी नहीं चाहिए कोई निपुण हो गया, सब यही कह के गए हैं।
1: शिक्षार्थी बनकर रहे
0: हाँ,
1: जी, बिल्कुल
0: हमेशा
1: बिल्कुल।
0: एक बस,
1: अगर हम
0: हाँ
1: शिक्षार्थी बनकर रहते
0: हाँ
1: हैं तो हम बहुत कुछ सीखते
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ हाँ
1: जी।
0: हाँ क्योंकि बस उसकी निपुणता ये है कि वो अच्छा काम करके जब जाता है तो वो जो काम है ना वो अपने आप में निपुण होता है, लेकिन कलाकार कभी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं निपुण हूँ।
1: लोकगीतों की ओर आपका रुझान कैसे रहा? जैसे आपने कहा कि मेरा उर्दू का वो लहजा रहा
0: जी जी
1: था,
0: जी
1: आप कैसे जुड़े
0: हाँ
1: लोकगीतों की
0: हाँ
1: ओर?
0: तो हमारे यहाँ पैक्स थे मिस्टर भारद्वाज जी, तो उनको लगा कि ये आवाज़ जो है हम अगर हम इसको थोड़ा लोक संगीत की तरफ वो डाइवर्ट करें तो कैसा लगेगा, एक तजर्बा किया गया। तो जब मैंने गाया तो वो लोगों को भी पसंद आया, श्रोताओं को पसंद आया, चिट्ठियाँ आने लगी, तो भारद्वाज जी बड़े खुश हुए कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, आप इसको करिए।
1: जी,
0: हाँ तो फिर मेरा रुझान इस तरफ भी हुआ,
1: लोकगीत की तरफ हुआ
0: लोकगीत तरफ
1: जी।
0: भी हुआ, और अब क्योंकि हमारी संस्कृति है लोकगीत, तो कहीं का भी लोकगीत है वहीं के लोगों को वो गाना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक
1: हमारी
0: एक
1: पहचान है, हमारी
0: पहचान
1: धरोहर
0: है,
1: है,
0: हमारी एक इसको क्या कहते हैं कि
1: पहचान भी
0: मूल
1: कह
0: पहचान
1: सकते हैं
0: हमारी
1: जी।
0: लोकगीत है, क्योंकि उसमें संस्कार गीत आ गए सारे ही आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत के गीत भी हैं,
1: जी,
0: प्रकृति के गीत भी हैं,
1: सावन के गीत
0: सावन
1: आपने
0: के,
1: लिखे
0: हाँ हाँ
1: हैं,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: इस मास का गीत हमारे आकाशवाणी से प्रसारित होता था, जैसे कि आपने कंपोज भी किए हैं गीत।
0: जी, तो मुझे ये भी लगा कि मुझे थोड़ा कंपोज करना चाहिए, जो जो कंपोज किया वो पसंद आने लगा, फिर मुझे कहा गया कि आप इसमें फॉर्म भर दीजिए, तो मैंने फॉर्म भर दिया तो फिर हो गया, फिर वो अप्रूव हो गया।
1: हम आपसे यही तो कह रहे हैं,
0: जी, हाँ जी,
1: लोक संगीत, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूजिक, इन अलग अलग धाराओं में आप कैसे बहे?
0: जी, हाँ जी,
1: आपने मेहनत की, आपने रियाज किया, आपकी रुचि इसमें पैदा हुई, तभी आपने नाम कमाया।
0: जी, आकाशवाणी शिमला का ही योगदान था ये,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ
1: है ना?
0: उसको करने में, क्योंकि अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर वो बात वहीं दब जाती है,
1: दब
0: ख़त्म हो
1: जाती
0: जाती है।
1: रहती है।
0: हाँ
1: कमल सिंह जी, जैसे कि लोक संगीत हमारी मिट्टी की खुशबू है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आज की युवा पीढ़ी को लोक संगीत और पारंपरिक वाद्यों से जोड़ने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अपनी लोक विधाओं को कभी मत छोड़ें, आप सारा म्यूज़िक सुनें, चाहे वो पाश्चात्य हो, चाहे वो अपना हमारे देश के अलग अलग हिस्सों का हो, लेकिन जो हमारी एक पृष्ठभूमि है उससे अलग नहीं होना चाहिए,
1: जी
0: उससे अलग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है ना,
1: जी
0: और हमारा वजूद भी वही है,
1: जी
0: बाकी सब करिए आप, वो कोई मनाही नहीं है,
1: जी
0: वेस्टर्न भी अच्छा है, हिंदुस्तानी तो खैर वो है ही अच्छा है ना,
1: जी
0: उसके बाद बाहर का संगीत भी आप करना चाहें तो करें आप, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस करके करें, खाली अगर ड्रम की बीट बहुत ज़्यादा तो कान भी फिर ख़राब हो जाता है ना, तो
1: जी
0: ये हर चीज़ को बैलेंस करके उसको एक कितना क्या होना चाहिए उसी हिसाब से चिंतन करें, उसी हिसाब से उसको रखें।
1: 90 वर्षों की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं आकाशवाणी की?
0: हाँ ये बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव है, और ये निरंतर चिरकाल तक चलता रहना चाहिए बराबर,
1: लोक संगीत में, संगीत में क्या आकाशवाणी का योगदान रहा
0: बहुत
1: है?
0: बड़ा योगदान रहा, सारे जितने भी हमारे यहाँ के कलाकार हुए हैं हिमाचल के, उन्होंने एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है रेडियो के ही माध्यम से, आकाशवाणी के ही माध्यम से, और ये पहचान है हमारी,
1: बिल्कुल सही
0: और ये
1: कहा।
0: चलता रहना चाहिए, निरंतर प्रवाह चलता रहना चाहिए।
1: आजकल के युवा कलाकार हैं और संगीत सीखने वाले जो युवा हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
0: उनको ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, बहुत जल्दबाजी ना करें, हाँ जल्दी जल्दी में तो फिर ऐसे ही होता है कि गर्म
1: वही
0: गर्म
1: समर्पण
0: खाएंगे तो
1: और
0: जीभ
1: धैर्य
0: जल
1: की
0: जाएगी।
1: आवश्यकता
0: हाँ
1: है
0: हाँ हाँ धीरे धीरे धैर्य रखें, धीरे
1: जी।
0: धीरे टाइम जब आएगा तो अपने आप वो रंग लाएगी चीज़।
1: कमर सिंह जी, आज आपने अनुभव, विचार और संगीत यात्रा की सुंदर बातें आज हमारे साथ साझा की। आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य पर लोक कलाकार कमर सिंह से सपना ठाकुर की भेंटवार्ता। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।

0: अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे News@9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए

0: इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर

0: पर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
4: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
5: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब चलिए आपको सुनवाते हैं आज के प्रोग्राम में लव स्टोरी फिल्म से कुछ खास म्यूजिकल नंबर, एंड ऑफ कोर्स शेयर करेंगे हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी हमसफर भानुप्रिया वर्मा।

तो जी लो हम भी आ गए एक बार फिर से FM शिमला 103.7 MHz पर इस मूवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस लेकर के। देखिए कितना ब्यूटीफुल इमेजिनेशन है, कितनी खूबसूरती के साथ इस गीत को लिखा गया है। और यू नो मैं बचपन से जब से ये सॉन्ग सुनती आ रही हूँ ना, तो इसकी जो इमेजिनेशन है, वहाँ झरोखा है, वहाँ झरना है, वहाँ पर नेम प्लेट है, ये हमारा घर है, ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत है कि जितनी बार इस सॉन्ग को सुनते हैं ना, तो आंखों के सामने वो एक तरीके से वो पिक्चर, वो इमेजिनेशन जो है ऐसा लगता है बिल्कुल रियल कन्वर्ट होने लगी है। यही तो जादू था इन सारे सॉन्ग्स का, और ख़ास तौर पर वो सॉन्ग्स जो कि आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किए, या फिर मैं कहूँ आनंद बख्शी ने जो है लिखे हैं। वैसे देखा जाए तो आनंद बख्शी के हाँ टचिंग जो लिरिक्स हैं ना, उसे जितनी बार भी सुना जाए ना, वो सीधा आपकी रूह को छू जाते हैं। एनी हाउ, बात होगी और भी इस फिल्म से रिलेटेड। मैं आपको बात बता दूं कि आज प्रोग्राम एक फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आए हैं मूवी लव स्टोरी। ये वही फिल्म है जो कि आई थी 1981 में। और इस फिल्म का क्या था ख़ास, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए रही है हमारे साथ।

0: तेरी कसम। 1981 की फिल्म लव स्टोरी, जिसमें नजर आए कुमार गौरव और विजेता पंडित, ये एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म से इन दोनों ही स्टार्स ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। मूवी के सॉन्ग सुपर डुपर हिट, स्टोरी, कॉस्ट्यूम, जिसकी भी आप बात करें तो सुपर डुपर हिट ये रहे। बहुत ही प्यारी फिल्म है दोस्तों, जिसमें इमोशंस हैं, ड्रामा है, जज्बात हैं, थोड़ा बहुत थ्रिल है, कॉमेडी है, मासूमियत है। ज़रूर देखिएगा ये फिल्म, अगर आपने पहले कभी देखी है तो एक बार फिर से मेमोरीज रिवाइज कीजिएगा इस फिल्म के साथ, और नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम वॉचर हैं तो ज़रूर ये फिल्म देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। और उस टाइम की अगर मैं 80s की बात करती हूँ तो अपने तरह की एक अलग सी ये फिल्म बनी और सभी का दिल जीता। ख़ास तौर पर लव स्टोरी है तो लव स्टोरी ने ऑटोमेटिकली जितने भी जवान दिल थे उनका दिल तो ज़रूर जीता ही। खैर, FM शुभला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर, सुनते रहिए यूं ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

9:30 हो चुके हैं। एक बार फिर से आपको हम ये रिमाइंड करवा दें कि 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपके लिए हम लेकर आते हैं खास प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन। तो अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं एकदम लाइव, तो आपको क्या करना है जी? आपको करना ये है कि आपको हमें एक मेल टाइप करना है जिसमें आपको लिखना है अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट विद योर नेम एंड एड्रेस, और भेज देना है airfmshimlamusicmail@gmail.com पर। हमारे रेगुलर लिसनर्स को ये मेल आईडी याद है, हमारे टेलीफोन नंबर्स याद हैं, लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूँ कि अभी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेल करना है, फ़ोन नहीं करना है, राइट? तो 10 बजे तक इंतज़ार कर रही हूँ आपके मेल्स का। एक बार मेल करें, फिर इंतज़ार करें। देखिए भाई, आज कौन लकी लिसनर्स हैं जिनके मेल्स यहाँ पर शामिल होने वाले हैं।

0: लास्ट मेल है जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है मध्य प्रदेश से जो आया है हम तक नेपा नगर, जगह का नाम पद्मा टॉकीज इन्होंने लिख करके भेजा है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह जी ने ये सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है। कपिल भारद्वाज, ज्योत्सना भारद्वाज, आदि भारद्वाज और रितु नेगी ने संजौली शिमला से हमें मेल किया है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत सारे मेल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आज। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरभ, साइना शर्मा, निवान शर्मा जी का भी यहाँ पर प्रेजेंस आ गया है। हालांकि बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो कि 9:30 से पहले भी हमें मेल कर रहे थे। मैं आपको रिमाइंड दिला दूं कि ये जो प्रोग्राम है मैं इसमें उन्हीं मेल्स को शामिल कर पाऊंगी जो कि 9:30 के बाद हमें यहाँ पर रिसीव हुए हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। एनी सॉन्ग रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास आया है मेल छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, दो मेल्स और लेते हैं फिर हम जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है डॉन मूवी के लिए हमारे पास आई थी जो उसके लिए आपको वो सुनवाएंगे। खैर आप कैसे हैं जी? हम बिल्कुल ठीक हैं। कीर्तनपुरी गोस्वामी जी पूछ रहे हैं, ये नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से इनका मेल आया है और इन्होंने लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का नाम शामिल किया है। कहते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाज़ में इन्होंने सॉन्ग सुनना है जो सॉन्ग रिक्वेस्ट इन्होंने किया है। लेट्स सी हमारे पास है कि नहीं। फिलहाल डॉन मूवी से खाई के पान बनारस वाला किशोर कुमार की आवाज़ में आपके लिए हम भेज रहे हैं।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा

तो जी हमने बात की थी कि कीर्तनपुरी गोस्वामी जी ने हमें एक सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा था, 90s की मूवी है ये बंदिश, और इस फिल्म का सॉन्ग बोले मेरा कंगना ज़रूर आपको सुनवाएंगे, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये सॉन्ग। बाकी के मेल्स भी पढ़ेंगे हम ऑफकोर्स इस सॉन्ग के बाद।

दिल की आवाज़ भी सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूरा सॉन्ग नहीं आपको सुनवा सकते हैं, बट आई नो, आई होप कि आपने इतना सॉन्ग इंजॉय किया है होपफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नसीब मूवी के लिए हमारे पास नेक्स्ट सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है जो है ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, लोगों की जान लेती है। आपको सुनवाएंगे ये सॉन्ग, और इसके लिए सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है हमें कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल ने, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल। इनके अलावा धमदाग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल, यानी पूरी जंगेल फैमिली है जो कि ये सॉन्ग को सुनना चाहती हैं, राइट। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार का भी मेल हम तक पहुंचा है, कहते हैं जी किसी भी सॉन्ग में हमारा नाम आप शामिल कर दें प्लीज़। सहसपुर लोहारा दुनिया खुर्द ज़िला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से गुनी राम राज

संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत और इनके अलावा। चलिए नेक्स्ट मेल ले लेते हैं जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा और लोभाराम गुंजेटा जी हमें मेल कर रहे हैं अपने पूरे फैमिली के साथ चुपाड़ी रोडू से। जमीता गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, तारा सिंह गुंजेटा कहते हैं कोई भी मूवी सॉन्ग में आप हमारा नाम शामिल करें, तो जी हो गया है नाम शामिल। वैसे मुझे लगता है जब आप लोग इतनी मेहनत करते हो मेल लिखने के लिए तो एक सॉन्ग रिक्वेस्ट तो भेज ही दिया कीजिए, क्या पता आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ पर प्ले ही हो जाए। हम आप लोग तो बिल्कुल ही हथियार डाल देते हैं, सीधा नाम भेजा और ख़त्म कहानी, है ना। अपने आप कोई सा भी गाना चलाओ भैया, गाने से मतलब नहीं है, सिर्फ नाम से मतलब है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा जब आप कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं तो ढंग से कंट्रीब्यूट कीजिए। आफ्टरऑल ये प्रोग्राम आपका अपना है तो थोड़ा तो हमें भी एफर्ट्स दिखने चाहिए आप लोगों के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया और इनके अलावा दो मेल्स फिलहाल अभी और ले लेती हूँ मैं। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत कहते हैं दिल फिल्म का कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए। तो डेफिनेटली दो सॉन्ग्स आप लोग सुनेंगे, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और पहला गीत जिंदगी इम्तिहान लेती है फ्रॉम नसीब।

और अब एफएम शिमला पर दिल से सुनिए दिल मूवी का ये सॉन्ग। प्रोग्राम है दिल की आवाज़ भी सुनिए।

एफएम शिमला पर दिल की आवाज़ भी सुन सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लास्ट सॉन्ग कोशिश करेंगे चलाने की चिराग फिल्म से आप सभी लोगों के लिए। सॉन्ग रिक्वेस्ट है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू और इनके अलावा प्रेम पूर्वक आदाब लिख करके भेजा है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरू, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। और कहते हैं किसी भी सॉन्ग में आप हमारा नाम शामिल ज़रूर कर लें। और सहसपुरा लोहारा दुनिया खुर्द ज़िला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से ये मैं मेल पढ़ चुकी हूँ और अगेन एंड अगेन आपने हमें मेल नहीं करना है, मैंने आपको कहा था। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल वर्मा, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, ये हमें कुरावली से इनका मेल आया सदर बाज़ार से। और किशोर कुमार की आवाज़ में कोई भी सॉन्ग सुनना चाहते थे ये। एनी हो, दो चार मेल अभी मैं और पढ़ लेती हूँ। उदय भान पाल की मेल से हमारे पास आया है एक मेल, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और उनकी पूरी फैमिली ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। राजेश वर्मा जी के मेल से भी आया है एक मेल, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से। मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपका धन्यवाद। फिलहाल आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेल किया, अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ भेजी और ये लास्ट म्यूजिकल नंबर आप सभी के लिए।

हैं और रात के जैसे ही 10 बजते हैं जनाब, आप सभी को मालूम है वक्त हो जाता है थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई में खो जाने का, इस रात के अंधेरे में खो जाने का, वो भी कुछ खूबसूरत चुनिंदा गज़लों के साथ। जी हाँ, ये सफ़र हमारा हर रात तय होता है FM शिमला पर 10 बजे से लेकर 10:30 तक। इस सफ़र में होते हैं बहुत सारे जज्बात, इस सफ़र में होते हैं बहुत सारे ख्यालात, और इस सफ़र में होती हैं कुछ ऐसी बात जो बहुत ही खूबसूरती से शायराना अंदाज में बयां की जाती है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ।

बाकी सब गजल में इश्क लिखते हैं तो चाहत सांस लेती है, हमारी धड़कनों में खुद तेरी मोहब्बत सांस लेती है। आप सुन रहे हैं गजलों का ये खूबसूरत प्रोग्राम FM शिमला पर भानु प्रिया वर्मा के साथ। सुनते रहिए।

पाने से खोने का मज़ा और है, बंद आँखों से देखने का मज़ा और है। आंसू बने लफ्स और लफ्स बने गज़ल, यादों के साथ जीने का मज़ा ही कुछ और है।

हुस्न के कसीदे तो पढ़ती रहीं ये महफिलें सारी, लेकिन जब उम्र के साथ झुरियाँ भी प्यारी लगने लगे तो मान लेना बस यही इश्क है। आप सुन रहे हैं गज़लों से सजा ये खूबसूरत प्रोग्राम FM शिमला पर अपनी हमसफर भानुप्रिया वर्मा के साथ।

इसी उम्दा गज़ल के साथ फ़िलहाल गज़लों के इस खूबसूरत सफ़र को यहीं पर थामते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10:30 हुए हैं। ये वक्त है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का।

सारा दिन गुजर जाता है खुद को समेटने में, फिर रात को उसके याद की हवा कुछ यूं चलती है कि हम फिर से बिखर जाते हैं। आप सुन रहे हैं एवरग्रीन सॉन्ग्स एफएम शिमला पर, मेरे यानी भानु प्रिया वर्मा के साथ, सुनते रहिए।

0: फिलहाल इसी सॉन्ग के साथ आज इस सफर में इतना ही। अब समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय

0: सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken Snake Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work.